आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

ये तो मानता हूँ कि सच में आना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जिस तरह की आंधी और बारिश चल रही है, ऐसा लगता है कि घर से निकलना ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। एंड लिटरली भाई, कल से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और जो तेज़ हवाएं हैं ये काफ़ी हमारे लिए रिस्क बन रही है, क्योंकि रिस्क इसलिए है, कहीं पे भी डाल टूटी हुई है, कहीं पे भी तार छूटे हुए हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें। इसलिए प्लीज़ निकलने के वक्त ज़रा ख्याल ज़्यादा रखिए। और वैसे भी आपको हम विश करने वाले हैं आज की सैटरडे मॉर्निंग, क्योंकि कुछ भी हो शो तो होना है। तो चलिए, आरजे उत्नान आ गए हैं आपके साथ आपके स्टूडियो में, और आज है सैटरडे और सैटरडे मॉर्निंग को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने वाले। फ़िलहाल मौसम ने तो अपना जो है रुख साफ कर दिया है, को फ़िलहाल तो ऐसा ही रहने वाला है। तो चलिए हम भी फिर रोमांटिक से सॉन्ग आपको सुनाने वाले, आने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आज का सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट क्या है।

0: सो फिलहाल आपने इस शिद्दत से याद किया कि मुझे तो आना ही था और मैं आ भी गया। एक बार वापस से आपका वेलकम करता हूँ आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुबह आने के साथ ही साथ अब आपको हम ले चलने वाले आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ, जिसको तूफानों से बचा करके लाए थे। क्यों? क्योंकि बाहर तूफान है और इस तूफान में चाहे खुद को आना हो या उसको बचा के लाना हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, मानते हैं ना? यस ऑफ कोर्स। और मैं तो कहता हूँ कि भाई आज जहाँ पे भी जैसे भी आप निकलने वाले हैं, प्लीज़ प्लीज़ अपना ख्याल रखते हुए निकलिए, बहुत देखकर संभलकर आराम से, क्योंकि कहाँ गड्ढा है। अगर कहीं किसी नए रास्ते पर जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि लाओ ये काम निपटा लें, अभी आज थोड़ा सा वक्त है, तो ऐसे किसी नए रास्ते पर मत, नई गलियों में मत जाइएगा जहाँ का आपको अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ रोड नीची है, कहाँ स्लोप है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ नाली है, कहाँ चैम्बर बना हुआ है। इसलिए ऐसी जगहों से बचिएगा और कोशिश करिए कि घर से अगर नहीं निकल सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। और वैसे भी ऐसा वक्त जो है, जैसे कोविड के टाइम पे हम लोग परेशान हो गए थे, लेकिन भाई फ़ायदा उठाने वालों ने बुक्स पढ़ करके भी और स्टार्टअप्स करके भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था, है ना? याद है? यस। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए हम इस तरह से इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो घर में रह करके भी आज काफ़ी कुछ हम पढ़ सकते हैं और काफ़ी कुछ आज भी हम जान सकते हैं। तो भाई अब वक्त है फ़िलहाल आपको ले चलने का किधर? आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ। ऑफ कोर्स आज का थॉट ऑफ द डे क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं, प्लस थॉट जो है वो आखिर किस तरह से इतना ख़ास है, इतना बेहतरीन, इतना लाजवाब थॉट है कि आप कहने वाले वाह क्या बात है। कुछ चीज़ें वाकई हमको पता तो होती है, लेकिन जब तक हम उस एंगल से नहीं देखते तब तक उसकी इम्पोर्टेंस को उस कदर नहीं समझ पाते जिस कदर वो होता है। यानी बहुत कुछ जानते तो है लेकिन समझते हैं नहीं उसको इतना जितना हम सिर्फ जानते हैं कि हाँ ऐसा है, यानी सुनी सुनाई बातें होती है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं ये बताने की तरफ कि भाई आज का मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे, जो कि सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल है, वो आपके लिए क्या लेकर के आया है और किस तरह आपको ये थॉट आज काफ़ी ज़्यादा, यस काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो मुझे लगता है आप स्टार्टिंग करनी चाहिए और आपको फाइनली ले चलना चाहिए इस थॉट ऑफ द डे की तरफ, नहीं तो आप सोचेंगे क्या आया है आंधियों के बीच में, आज थॉट तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। बट ऐसा नहीं है, थॉट तो अब दिल में सीधे उतरने वाला है।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो फिर आज का थॉट कह क्या रहा है? चलिए ले चलते हैं आज के थॉट की तरफ। आज का थॉट कहता है कि चाहे मशीन हो, घर हो या फिर रिश्ता, थोड़ा सा ऑड कॉम्बिनेशन है ना। हाँ ऑफ कोर्स, मुझे भी लगता है, पर अगर पूरा थॉट सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑड कॉम्बिनेशन है क्या। चाहे मशीन हो, घर हो या रिश्ता, मरम्मत से रखरखाव हमेशा सस्ता पड़ता है। जी हाँ, यानी मेंटेनेंस इज ऑलवेज चीपर देन रिपेयरिंग। अब वो चाहे मशीन की मरम्मत हो, घर हो या रिश्ता हो, मरम्मत से जो रखरखाव है वो हमेशा सस्ता पड़ता है। कहते हैं ना कि भाई हम लोग ऐसा पहले से ही मेंटेनेंस रखे ताकि वो चीज़ें इतनी ख़राब क्यों ना हो। अब देखिए कपड़ों पे अगर हम बात करें तो अगर कपड़ों भी को भी हम ऐसे ही भिगो के रख दे या ऐसे ही डाल दे कि कई दिन तक गंदा पड़ा रहे किसी एक साइड में कोने में, तो उस पर कुछ धब्बे होने लगते हैं, उसका रंग उतरने लगता है, बेजान सा हो जाता है उसका रेशा, फिर पहनने के बाद वो मज़ा नहीं आता है। मशीन की बात करें कि अगर लड़खड़ा रही, खड़खड़ा रही है, कैसे भी उस पर सामान रखते जा रहे हो, लगेगा कि जब रुकेगी तब देखा जाएगा, इसको बनवा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। फिर वो खड़खड़ाते खड़खड़ाते बंद होती है, फिर जब कोई बनाने वाला आता है तो कहता है इसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं ख़राब है बल्कि इसकी ये भी चीज़ ख़राब है और इसकी ये भी चीज़ ख़राब है, आप देख लीजिए। फिर आपको अंदाज़ा होता है यार कि अगर पहले इसको ठीक कर लिया होता, मेंटेन करा लिया होता, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों की ज़रूरत ही ना होती, है ना। तो इसी तरह से रिश्ता भी होता है। रिश्तों में भी क्या बात होती है, यही अगर हम समझे कि रिश्ता हो, अगर मरम्मत की ज़रूरत ना पड़े, रखरखाव अगर हो, यानी उसको वक्त पे सारी चीज़ें हम उसको निभाते रहे बड़ी खूबसूरती से, थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी केयर, रिस्पेक्ट, अपनापन और थोड़ा सा लव। लव तो बिल्कुल नमक की तरह है, उसके बिना काम ही नहीं चलता। तो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, मशीन हो या घर हो, क्योंकि बाकी चीज़ों के बारे में हमको पता है, मशीनों को लेकर के हम जानते हैं कि हाँ भाई मेंटेनेंस अच्छी रखेंगे तो उसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, और अगर पड़ती भी है तो हमेशा बहुत सस्ती होती है क्योंकि मेंटेन रखना आसान है और रिपेयरिंग कराना काफ़ी महंगा पड़ जाता है, उसको बनवाना काफ़ी महंगा पड़ जाता है। उसी तरह से रिश्ता भी होता है कि रिश्ते को जो है मेंटेन रखा जाए वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि उसको रिपेयर करने की आवश्यकता पड़े। सो बड़ा ही खूबसूरत सा थॉट है और मुझे लगता है कि अगर अभी तक हमने रिश्तों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, हम सिर्फ कुछ मशीन्स में या फिर घर की मरम्मत को लेकर ही परेशान थे कि यार पानी चू रहा है, यहाँ पे तो हमको प्लास्टर कराना चाहिए था, यहाँ पे हमको प्लास्टिक पेंट की नीड थी, यहाँ पे हमको कवर कराना था ताकि पानी ना अंदर आए, इस जगह से सामान हटाना था ताकि पानी उस छत में मरे ना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं घर को लेकर के भी, जिसको हम अक्सर चर्चा करते हैं। उसी तरह मशीन को लेकर के होता है, घर पे अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो डांटते हैं बच्चों को कि भाई अच्छे से रखो उसको, सही से रखो उसको, इतनी भी क्या ज़रूरत है कि उसको बनवाना पड़ जाए। एंड एट द एंड वही होता है, सच में एट द एंड वही होता है कि भाई कहीं ना कहीं उसको बनवाना ना पड़े, इसलिए ये बातें कही जाती है, क्योंकि हमने कहा ना बनवाना हमेशा महंगा पड़ जाता है, जबकि उसकी केयर करना, उसका रखरखाव करना बहुत आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई व्हीकल है, अगर उसको आप साफ़ करते रहते हैं वक्त वक्त पे और उसकी सर्विसिंग कराते हैं, तो सर्विसिंग का एक नॉमिनल चार्ज होता है जिसमें पुर्जों को टाइट किया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, ऑयलिंग की जाती है, और अगर कुछ ख़राब होता है तो वो चेंज किया जाता है। और अगर सर्विस आप कराते ही नहीं हैं कि अरे क्या फ़ायदा 3-4-6 महीने पर होने वाली सर्विस का पैसा बचाते रहे, तो जाहिर सी बात है चलता रहेगा 1.5-2 साल बाद ऐसा ख़राब होगा कि जितना 4-5 बार की सर्विस का बचा है वो 4-6 साल की सर्विस से भी ज़्यादा का पैसा उसमें देना पड़ जाएगा, उसमें कई सारे नए पार्ट्स आपको लगवाने पड़ जाएंगे। उसी तरह रिश्ता भी होता है और उसी तरह कोई भी चीज़ होती है। तो हमेशा याद रखिए कि जो रखरखाव है यानी जो मेंटेनेंस है वो हमेशा सस्ती पड़ती है, वो हमेशा आसान पड़ती है, बेहतर होती है रिपेयरिंग के मुकाबले। यानी मरम्मत कराना ये मजबूरी का काम है, जब बिल्कुल नहीं चलेगा तो मरम्मत की जाती है, और मरम्मत से पहले का आता है रखरखाव यानी मेंटेनेंस। जब मेंटेनेंस रखते हैं तो चीज़ें बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत आराम से चलती है। अब इसको जैसे भी आप अपने रिश्तों में अप्लाई कर पाए, आप देख पाए कि आपको अब
किसी भी रिश्ते में मरम्मत से पहले क्यों ना मेंटेनेंस की तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि हम इतनी आगे जा करके इतनी प्रॉब्लम्स में फंसने के बजाय पहले ही चीज़ों को बेहतर कर लें, है ना? यस ऑफ कोर्स, मुझे भी ये लगता है। तो चलिए भाई, जिन रिश्तों के बीच में, जिन जगहों में आपको अब ज़रूरत है मेंटेनेंस की, वहाँ मेंटेनेंस ज़रूर करिए। और क्या आपको भी लगता है कि हाँ, ये जो रिपेयरिंग है यानी मरम्मत करना है, सच में ये काफ़ी महंगा होता है बनिस्बत मेंटेनेंस के? सोचिए सोचिए और बताइए, सोच करके मुझे बताइए, अपना जवाब मुझे दे सकते हैं। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के एप्लीकेशन से। और वो लोग जो सोचते हैं भाई ये मैसेजेस कहाँ आते हैं और कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम लाइव बातचीत भी कर पाएँ और दुनिया के किसी भी कोने से हम सुन भी पाएँ, तो आप भी वही कीजिए। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर पर चले आइए, और अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो ऐप स्टोर पर चले आइए। टाइप करिए RADIO रेडियो स्पेस GYANASTHALI ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। हालांकि इतना आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, और पहले ही आपको काले और लाल रंग के आइकन में एप्लीकेशन नज़र आ जाएगा रेडियो ज्ञानस्थली का, चाहे ऐप स्टोर हो या फिर प्ले स्टोर हो। डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको चैट का ऑप्शन दिखेगा, और उसी चैट के ज़रिए आप जो कुछ भी लिखेंगे वो हम तक सीधा आ जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि आप भी जुड़ सकते हैं, ताकि हम ऐसी बातों को जो हमारे अंदर की बातें होती हैं उसको कह पाने का मौका मिले। और ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे रिश्ते कम होते हैं बाबू मुशाए, सो अगर हम मिले हैं तो कद्र कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं कल हम हो ना हो।

तो ऑफ कोर्स एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और वापस से आगे आने के बाद वही सवाल ऑफ कोर्स कि कहीं ना कहीं आपको भी ये समझ में आया होगा आज का थॉट ऑफ द डे जो कह रहा है, एंड ज़रूरी बहुत अच्छी बहुत प्यारी बात कह रहा है। तो चलिए भाई आपको ले चलते हैं। ऑफ कोर्स हमारी प्रीति जी ने रिस्पॉन्ड किया है और क्या लिखा है ये बता दें। सो प्रीति जी कहती हैं, सबसे पहले तो बारिश भरा वेरी लवली मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। और बारिश भरा क्या, मुझे लगता है गोंडा भरा, लखनऊ भरा, बहराइच भरा, बलरामपुर भरा, श्रावस्ती भरा, बाराबंकी भरा, न जाने क्या क्या भर गया है। इतना ज़्यादा बारिश हो रही है कि फिलहाल अब रील्स में ही नज़र आ रहा है कि लखनऊ का इंदिरा नगर डूबा है, तो अपने गोंडा का भी इंदिरा नगर कैसे पीछे रह जाए। तो हर एरिया की अपनी प्रॉब्लम्स हैं फिलहाल, जहाँ पानी ज़्यादा भर जाता है, जो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ वो एरियाज जहाँ हैं उनके लिए ज़्यादा मुसीबतें हैं, कहीं ना कहीं नाली का पानी भी मिक्स होकर के रोड पे ही आ रहा है, वो भी बड़े मसले हैं। खैर मसले तो होते ही हैं। और प्रीति जी ने लिखा है, हर चीज़ की मरम्मत समयानुकूल बहुत ही ज़रूरी है। सो आपने भी इस थॉट को सुनने के बाद अपना रिएक्शन दिया और आपने कहा कि वक्त के साथ मरम्मत बहुत ज़रूरी है। दरअसल मुझे लगता है मरम्मत की कम ज़रूरत पड़ती है अगर उसका रखरखाव हो। थॉट ही यही कहता है, थॉट कहता ही यही है कि इतना बेहतरीन रखरखाव करिए कि मरम्मत की ज़रूरत कम पड़े या तो ना पड़े, क्योंकि हमेशा जो है मरम्मत महंगी पड़ती है रखरखाव से, और रखरखाव हमेशा सस्ता पड़ता है मरम्मत से। अगर हम चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं तो हमको रिपेयरिंग की ज़रूरत कम ही या तो पड़ती है या तो नहीं पड़ती है, और जो हमारी मेंटेनेंस है वो हमेशा रिपेयरिंग से चीप होती है, सस्ती होती है, आसान होती है, राइट? यही तो हमारी ज़िंदगी के साथ और यही तो हमारे रिलेशंस के बीच का भी मामला है जो हमने आपको बताया है। आई होप कि भाई आप भी इस बात को अब समझ गए होंगे कि रिश्तों की बात हो, घर की बात हो या किसी मशीन की बात हो, रखरखाव हमेशा सस्ता होता है मरम्मत से ज़्यादा, यानी कि भाई मेंटेनेंस हमेशा चीप होती है रिपेयरिंग से ज़्यादा। एंड इस बात को आज समझ गए हैं क्योंकि आपने कहा भाई आप लोग बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए, भरे बैठे हैं कि हाँ यार ये मशीन ना ख़राब होती अगर हमने उसका ध्यान दे दिया होता, घर में ये भी प्रॉब्लम ना आती अगर हमने इसको बनवा लिया होता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जहन में हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। सो अभी तक जो कुछ भी मरम्मत कराया, जितना एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए वो तो हो गए, लेकिन अब जो कुछ भी है, जो रिलेशंस हैं, घर है, मशीन्स हैं, कुछ भी है आपकी लाइफ में है और आपसे चीज़ें जुड़ी हुई है, तो कोशिश हम करने वाले हैं कि उसको इतना बेहतरीन मेंटेन करेंगे कि हमको रिपेयरिंग की आवश्यकता या तो नहीं ही पड़ेगी और या पड़ेगी भी तो बहुत कम, जितना कि पहले हम चीज़ों में परेशान हो जाते थे और जितना मरम्मत कराने लग जाते थे। आशु मिश्र जी का लखनऊ से मैसेज आ चुका है। सुप्रभात सर जी, आपको भी सुप्रभात। सुबह की ठंडी और ताज़ी हवाओं के साथ आपका दिन बहुत ही खूबसूरत और ऊर्जावान हो। थैंक यू सो मच टू यू। और इतनी ज़्यादा ऊर्जा थी क्योंकि आज हवाओं ने जिस तरह रोका था, जैसे लग रहा था बढ़ने से रोक रही है कि रुक जाओ अपनी जगह पे, जहां पे भी हो वहीं थम जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो आना है और लोगों से मिलना है। सो फिलहाल मैंने तो भाई चीर चार के हवा को वापस से इधर आ गया स्टूडियो साइड और आप लोगों से मुलाकात कर ली। लेकिन इसके अलावा एक सवाल था जहन में, सवाल ये था यार कि अक्सर देखा होगा कुछ, मतलब मैंने अक्सर खुद भी देखा, अपने पे भी ऑब्जर्व किया है कि अगर लिफ्ट में कभी अंदर जाते हैं तो ऊपर पता नहीं क्या देखते हैं, यानी लिफ्ट में घुसते ही न जाने क्या ऊपर देखने की आदत है। अब ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, मैं भी अनकॉन्शियसली ऊपर ही देखता हूँ, और मैंने जितनों को भी देखा है वो भी ऐसे लिफ्ट में अंदर आते ही ज़्यादातर लोग जो है वो ऊपर की ही तरफ देखते हैं। अब ऐसा ऊपर लिफ्ट में क्या रहता है ये तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप बताइए, क्योंकि मुझे तो जानना है कि आखिर ये होता क्यों है। गौर किया ना आपने भी, है ना? यस, मुझे लग रहा था कि आपने भी गौर किया, देखा मुझे पता था। तो आप भी ज़रा सोचिए और बताइए कि भाई लिफ्ट में लोग अंदर जाते ही ऊपर की तरफ आखिर क्यों देखते हैं, क्या वजह होती है ऊपर की तरफ देखने की।

जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: सुबह आशु जी का मैसेज भी आया और उन्होंने एक बात कन्वे की है। आपने लिखा है, वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको थॉट काफी ज्यादा पसंद आया। और साथ में लिखा है, सर जी लखनऊ तो कुल्लू मनाली और शिमला हो रखा है। अजी लखनऊ ही नहीं बल्कि आसपास का पूरा एरिया, यूँ कहें यूपी पे कुछ ज़्यादा ही ख़ास मेहरबानी है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल हर तरफ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आपको फ्री में जो है वो टिकट लेने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जब मैंने चेक किया कुछ हिल स्टेशन जाने के लिए देखने का, तो भाई कहीं कोई ट्रेन का फ़िलहाल टिकट्स जो है वो अवेलेबल हो ही नहीं पा रहे हैं। तो अच्छा है कि कुदरत ने हमको घर बैठे ये मौका दे दिया। जैसे आजकल सारी चीज़ें अपडेटेड हो गई ना कि भाई घर बैठे आपको डिलीवरी मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की रिसीव्ड करने की ज़रूरत नहीं है, घर तक पहुंच जाएगा। तो फिलहाल कुदरत ने कहा है कि मौसम के लिए भी कहीं अलग क्यों जाओगे यार, हम घर पे ही दे रहे हैं, चलो यहीं एंजॉय कर लो। सो फिलहाल आज तक का जो अलर्ट था वो तो है, बना ही हुआ है और उसी तरह से ये चल भी रहा है। लगातार हवाएँ तेज़ी से चल रही है और साथ ही साथ बारिश हो रही है। बस इतना ज़रूर है कि बाहर अगर निकलना ही पड़ा तो ज़रा ख्याल से निकलिएगा। बाकी मौसम तो है सुहावना, चाय होगी बढ़िया हल्का सा चाय पत्ती बढ़ा करके, हल्की सी स्ट्रॉन्ग चाय, और उसका मज़ा बहुत होने वाला है। अब चूंकि आपने नाम ले ही लिया है भाई कुल्लू मनाली और शिमला का, तो चलिए एक ऐसा गीत सुनाते हैं जिससे सिर्फ आपको और हमको ही नहीं, ये बाकी सभी लोगों को महसूस हो जो इस वक्त सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ पहाड़ी स्पेशल सॉन्ग।

धागे, खाने वालों को मोमो याद आए। ऐसा ही होता है अक्सर, खाने वाला कुछ भी समझ जाए। सो ऐसे कई खाने वाले हैं जो भैया फूडी जिन्हें कहते हैं, मोडी वाले फूडी, वो तो कुछ भी आता है तो उनको कुछ खाने का ही याद आ जाए। कोई भी ऐसा टर्म अगर मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये खाने की चीज़ है। जैसे मोह मोह के धागे से कई बार हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कतई भुक्कड़ किस्म के हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि भैया मोमो के धागे से मोमो याद आ जाता है, वो भी लाल चटनी के साथ में। फिलहाल आपको तो नहीं याद आया ना, पक्का मजाक तो नहीं? चलिए सुबह सुबह सोचेंगे भी हेल्दी, कम से कम अगर रोक इतना नहीं पाते हैं तो कम से कम हेल्दी सोच तो सकते हैं यार एटलीस्ट। और यहाँ से लगता है मुझे सोचते सोचते हेल्दी हो भी जाने वाले हैं, डेफिनेटली हो जाने वाले हैं। फिलहाल हम वापस से आने वाले हैं और कुछ ज़रूरी बातें और कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा फन, बहुत सारी दिल की बात, सब कुछ बयां होगी आज के सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गुना में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

आंखें खुली हो या हो बंद, याद मुझे अपने पेंडिंग बिल्स आते हैं। ऑफ कोर्स आपकी आंखें खुली हो या बंद हो, ये याद रहता है कि भाई कहाँ कितना कौन सा बिल जो है वो पेंडिंग है। अब चाहे वो आपके रिचार्ज का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वो किसी और चीज़ का हो, अक्सर याद रहता है। अच्छा, ये जो एप्लीकेशंस वाले हैं स्पेशली ये जो जिनसे हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, उसमें मतलब ये थोक का दिखाते हैं। कभी किसी फ्रेंड का कर दिया, कभी किसी घर वाले का कर दिया, किसी का भी कर दिया रिचार्ज, तो ये मतलब हर 3 महीने बाद याद दिलाएंगे, भैया लो बाकी है करो। अरे यार, एक बार मैंने हेल्प की है, अब क्या इसका भी ऑप्शन तुम छीन लोगे, हर बार हमसे ही कराओगे क्या? मतलब कई बार तो मुझे लगता है एक बार मैंने गलती से सच में कर दिया था, मुझे लगा कि भैया ये नंबर शायद घर का है और पेंडिंग आया, मैंने कर दिया। उसके बाद पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ही दूर के फ्रेंड को मैंने कर दिया था उसका। उसके बाद मैंने जब नंबर चेक किया तो फिर मैंने कॉल करके पूछा कि भाई साहब कुछ मिला आपको? उसने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। फिर मैंने बताया कुछ रिचार्ज करा, अरे वो तुमने किया था क्या? हमने कहा हाँ गलती से। कह रहे यार ये तो मेरे में तो था पहले से ही, चलो ठीक है ऐड हो गया। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, अब क्या ही बोल सकता है भाई किसी आया हुआ आदमी। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो एप्लीकेशन से रिमाइंडर्स देते हैं और आप जो हैं वो जा करके गलत फहमी में कर देते हैं और इतना कर्जे में ये दिखा देते हैं कि हर दूसरे दिन एक नया पेंडिंग का जो है नोटिफिकेशन आ जाता है कि भैया फलाने घर वाले का, फलाने रिश्तेदार, चाचा की मामा की बेटी का आपका अभी फ़िलहाल पेंडिंग है जिसका आपको करना था और लास्ट टाइम आपने किया था तो इस बार भी करना है, यानी इस बार भी आपको चंदा देना ही देना है, ये वाली बात हो जाती है। फिलहाल आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? मुझे तो लगता है भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही हुआ है। फिलहाल वापस से आने वाले और आने के बाद बताने वाले हैं ऐसे नियम के बारे में। नहीं नहीं, कोई डराने वाला नियम नहीं है, बल्कि आपके लिए बेहतर नियम है। अब आप सोचेंगे अच्छा नियम क्या है, सो आपको हम नियम बताने वाले कि एक्चुअल में नियम क्या है। सो नियम ये है कि अब रेलवे का ऑटोमेटिक सिस्टम हो जा रहा है जिसमें अब आपको जो है टिकट कंफर्म कराने को लेकर के टीटी के पास उसके चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो होने क्या वाला है अब ये भी क्या अभी बता दें भाई? इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार वापस आइए और आने के बाद बता दें आपको कि दरअसल खुशखबरी क्या है और कैसे ऑटोमेटिक आपका टिकट जो है वो कन्फर्म्ड हो जाएगा। मजाक नहीं,

0: चलिए मैं सुनाई देता हूँ भाई, मैं इतना भी जालिम नहीं ठहरा, कहा है तो बताएंगे ही बताएंगे। फिलहाल हमारे पास में चैट पर और भी कई सारे मैसेजेस जो है वो आते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के जुड़ने का और लगातार मैसेजेस करते रहने का। फिलहाल आइए आप सभी को एक खुशखबरी दे देते हैं, मुंह मीठा कराने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, पानी रुक जाएगा तो उसके बाद आकर के करा दीजिएगा, लेकिन ये खबर सच में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली है और काफ़ी अच्छी होने वाली है। सो लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

हो जाएंगे। आप टीटी के पास चक्कर नहीं लगाना होगा। दरअसल फेस्टिव सीजन में जो है वो हमारे पैसेंजर्स की सहूलियत को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक नया सिस्टम जो है लागू करने जा रहा है, जिसके तहत होगा ये कि भाई ट्रेन में सीट खाली होने पर वेटिंग और आरएसी टिकट अपने आप कंफर्म हो जाएंगे। सो फेस्टिव सीजन में ऐसा ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होती ही होती है, और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम से बचने के लिए चार्ट तैयार होने के बाद या फिर ट्रैवल के दौरान जैसे ही किसी बोगी में कोई सीट खाली रहेगी, सिस्टम बिना किसी यानी किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, उसमें हस्तक्षेप की नो ज़रूरत। ओके, सो नियम के हिसाब से कतार में जो मौजूद होंगे वो अगले वेटिंग या आरएसी पैसेंजर को वो सीट जो है मिल जाएगी। अब किसी और से पूछने की, किसी से कहने की, सोर्स लगाने की, किसी का मुंह तकने की, किसी के पलटने की और उसके बाद आपके उनसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें कोई भी इंसान का हस्तक्षेप नहीं होगा, और ये डायरेक्ट वो सिस्टम है यानी जिसमें अगर कहीं कोई सीट खाली रह जाती है या फिर बीच में कोई यात्री उतर जाता है और अगला आरएसी या वेटिंग में है तो वो कन्फर्म्ड हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सो सीट आवंटित होते ही जो उससे जुड़ा यात्री है उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फौरन एसएमएस के ज़रिए कोच और बर्थ नंबर का अलर्ट पहुंच जाएगा, जिससे पैसेंजर सीधे अपनी सीट पर जा सकेंगे। सो इस ट्रांसपेरेंट डिजिटल प्रोसेस से सीट आवंटन में होने वाली जो मानवीय मनमानी थी, यानी जो लोग मनमानी करते थे और भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने की कोशिश की जा रही है, और घर जाने वाले जो आम पैसेंजर्स हैं उनका सफ़र आसान हो इसकी कोशिश की जा रही है ताकि ये इजीली हो जाए। तो हमने बताया ना, जैसे ही चार्ट तैयार होने के बाद या फिर ट्रेवल के दौरान जैसे ही किसी बोगी में कोई भी सीट खाली रहेगी, सिस्टम बिना किसी ऑफकोर्स ह्यूमन हस्तक्षेप के नियम के हिसाब से कतार में जो मौजूद अगला वेटिंग होगा, आरएसी होगा यात्री, उसको वो सीट एसएमएस के ज़रिए अलर्ट भेज करके बता देगा। अब आपको टीटी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, टीटी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद एसएमएस आएगा और बता देगा कि भाई इस जगह इस बोगी में इस बर्थ पर आपको ये सीट मिल जाएगी है, अगर आप चाहिए तो आप ले सकते हैं। ऑफकोर्स आरएसी में होंगे तो आपकी फुल सीट हो जाएगी, वेटिंग में हो जाएंगे तो आप एंटर हो जाएंगे, तो ये फ़ायदा होने वाला है। मैंने कहा था पहले कि भाई ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम का होता है, और आई होप कि आपने सुना और आपको लगा होगा कि हाँ यार काम का तो है ही है, तो चलो अब लगे हाथ हमको मिठाई खिला देने, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ये बस आपके सहूलियत के लिए हमने आप तक पहुँचा दिया ताकि आप भी इससे बाखबर रहें, बेखबर ना रहें, क्योंकि अगर आप बाखबर रहेंगे तो और लोगों तक भी इस बात को पहुँचा देंगे और उनको भी इस बात का बेनिफिट मिल जाएगा। सो आई होप कि ये सिस्टम आपके लिए वर्क करे और आपका भी सफ़र बेहतरीन और तनाव मुक्त हो, ऐसी हम कामना भी करते हैं और ऐसी हम दुआ भी करते हैं।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
5: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अर्ज किया है, लाल लाल है मेरा रंग, देख के सब हो जाते दंग। लाल लाल है मेरा रंग, देख के सब हो जाते दंग। सलाद में जब मैं आता हूँ, सबके गाल गुलाबी कर जाता हूँ। और अब इस चीज़ को पहचानना है कि भैया ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमने अभी जस्ट बात की। इसको आप बताइए, इसका जवाब दीजिए चैट बॉक्स पर आ करके कि भाई ये जो हमने अभी आपको एक कविता सुनाई है उसमें एक इशारा छिपा है। आखिर मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, और आने के बाद उसके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बात बताने वाला हूँ जिसको जान करके आप कहने वाले हैं, ओह हो इतने सारे फ़ायदे। सो लाइन याद है ना, लाल लाल है मेरा रंग, देख के सब हो जाते दंग। सलाद में जब मैं आता हूँ, सबके गाल गुलाबी कर जाता हूँ। तो जल्दी जल्दी सोचिए और हमको बताइए फटाफट से कमेंट करके कि आपको क्या ख्याल आ रहा है इन लाइंस से, यानी आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। हैव यू एनी अंदाज़ा अबाउट दिस लाइंस?

0: तो भैया रिस्पॉन्सेज जो हैं वो तो आ चुके हैं, अब आने के बाद देखते हैं कि भैया किसने क्या कुछ लिखा है और जो मैंने कहा था क्या सच में उसका जवाब आया है या आपको कुछ और ही लगा, यानी आप अंदाज़ा लगा पाएँ या फिर आपका अंदाज़ा अभी फ़िलहाल नहीं बैठा है और मेरे बताए जाने का आपको इंतज़ार है कि अच्छा मैं फाइनली वाला बताऊं कि भैया क्या है एक्चुअल में इसका आंसर। सो लाइंस तो वाकई बड़ी गज़ब की थी, मैं हालांकि खुद ही तारीफ़ कर रहा हूँ, बट थी तो भाई थी, मतलब इतना अच्छा इशारा, सो जाहिर सी बात है तारीफ़ तो बनती है कि हाँ भाई इतने क्लियर इशारे के साथ में अगर कुछ बता रहा हूँ तो डेफिनेटली उसको कहा जाएगा। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं आपके रिस्पॉन्सेस की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार वापस से आपको ये याद दिला दें कि भाई मैंने कौन सी लाइंस कही थी और उससे क्या जानने की कोशिश की थी। सो मैंने कहा था कि लाल लाल है मेरा रंग, देख के सब हो जाते दंग, सलाद जब मैं आता हूँ सबके गाल गुलाबी कर जाता हूँ। ये था हिंट, और इसके बाद देखते हैं कि भाई आप लोगों ने रिस्पॉन्सेस क्या दिए हैं। तो चलिए भाई सबसे पहले जो आया है वो प्रीति जी की तरफ से आया रिस्पॉन्ड, आपने टमाटर लिखा, उसके बाद चुकंदर लिखा, उसके बाद आशु जी ने लिखा टमाटर, और उसके बाद खुद ही पूछती हैं कि भैया ऐसी कौन सी चीज़ है वो जो हम खाते भी हैं और पीते भी हैं। ये लीजिए, अभी तो एक सवाल का आंसर भी पूरा नहीं मिला था, दूसरा भी आ गया, प्लस आपने गाजर भी बोल दिया, गाजर हमारी प्रीति जी ने बोल दिया। आज ये दोनों जो सिस्टर्स हैं भैया ये बिल्कुल आज हटने वाली नहीं हैं अपने उस गाजर से। चलिए बहुत अच्छी बात है, बड़ा मज़ा आता है कि आप लोग रिस्पॉन्सेस करते हैं कि भाई आखिर क्या लगता है आपको। तो ये जो पूछा था इसमें एक जवाब जो आया है वो सही आया है, लेकिन अभी मैं पूरी कविता पढ़ लूँ तो शायद आपको और अंदाज़ा प्रॉपर हो जाए। सो लाल लाल है मेरा रंग, देख के सब हो जाते दंग, सलाद में जब मैं आता हूँ सबके गाल गुलाबी कर जाता हूँ। मम्मी कहती तुम इसे खाओ खून बढ़ेगा ताकत पाओ, पर देख के मेरा गहरा लाल बच्चों का हो जाता बुरा हाल। जीभ हो जाती पूरी लाल जैसे लगा हो होली का गुलाल, कपड़ों पर जो गिर जाऊँ मैं पक्का डांट खिलाऊँ मैं। स्वाद मेरा है थोड़ा मिट्टी जैसा पर सेहत के लिए सबसे अच्छा पैसा, हलवा बनूं या बनूं मैं जूस पीकर तुम बन जाओगे एकदम डूस। न नखरे करना अब तुम छोड़ो मुझे अपना नाता जोड़ो, मुझसे अपना नाता जोड़ो, खाओगे जो मुझे हर रोज़ यार, चेहरा चमकेगा आ जाएगी बहार। सो मुझे लगता अब ज़्यादा क्लियर अंदाज़ा हो गया होगा। ये लीजिए भाई आशु जी ने बता ही दिया चुकंदर, चुकंदर यस ऑफ कोर्स यही है चुकंदर। सो प्रीति जी ने भी इसका रिस्पॉन्ड दिया था और आशु जी ने भी, हालांकि टमाटर भी आया दोनों की तरफ से और गाजर भी दोनों की तरफ से आया, आप लोगों ने आज सब्ज़ी की पूरी एक दुकान लगवा दी है ना। चलिए फिलहाल चैट बॉक्स पर हेल्दी सी सब्ज़ी की दुकान लगी है, फ्री में आप ले सकते हैं। एंड अब आपको बताने वाले चुकंदर के फ़ायदों के बारे में कि आखिर कितना बेनिफिट होता है और उसको किस किस तरह से आप ले सकते हैं, यानी कैसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई चलिए फ़ायदों की तरफ आ गए हैं। तो इसमें फोलेट, पोटेशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। लेकिन अगर बॉडी में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी है तो सिर्फ चुकंदर पर डिपेंडेंट ना रहें। एनीमिया की वजह जानना और डॉक्टर्स की सलाह लेना भी ज़रूरी है। फ़िलहाल हेल्दी डाइट का हिस्सा आप इसको बना सकते हैं। और साथ ही साथ आपको अब हम बता दें कि किस किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो। सबसे पहला जो आइडिया आता है चुकंदर को लेकर, वो पहला ख्याल क्या आता है? ऑब्वियस सी बात है, जूस बनाने को लेकर क्या आता है। सो कद्दूकस किया हुआ चुकंदर सैलड में मिला सकते हैं। इसके अलावा है ना, गाजर और आंवला या अदरक के साथ भी इसका जूस बनता है। यानी आप चुकंदर ले लीजिए, साथ में गाजर ले लीजिए, आंवला ले लीजिए या फिर अदरक ले लीजिए, इसके साथ में जूस बना सकते हैं। फाइबर और कई ज़रूरी जो पोषक तत्व हैं वो इससे मिल जाते हैं। और या फिर आप कद्दूकस करके चुकंदर को सलाद में मिला सकते हैं और उसके बाद खा सकते हैं। बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको खिला पाना, तो कैसे खिलाना है? सो बच्चों के लिए पराठा बनता है इसका, जी हाँ। सो उबला हुआ चुकंदर जो है मैश करके आटे में मिला सकते हैं आप, और रंग बिरंगा और बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर नाश्ता तैयार हो सकता है। अब इसको खाना कैसे है? यस, हमारी फेवरेट दही के साथ। सो दही के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, यानी चुकंदर का पराठा और साथ में दही। वाह वाह, क्या बात है। इसके अलावा स्मूदी या फिर सब्ज़ी भी आप बना सकते हैं। सो चुकंदर के साथ में केला या फिर सेब और साथ में दही से स्मूदी बना सकता है। ऑफकोर्स ये स्मूदी बहुत फ़ायदेमंद होती है, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा हल्के मसालों के साथ सब्ज़ी भी इसकी बनाई जाती है, यानी बहुत हल्के मसालों का इस्तेमाल करते हुए चुकंदर की सब्ज़ी भी बनती है। और मैंने खाया है और मेरी ज़ुबान भी लाल हुई है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा वॉकआउट के आसपास जो है स्मूदी का भी एक ऑप्शन रहता है, यानी अगर आप वॉकआउट कर रहे हैं उसके आसपास भी आप बूंदी स्मूदी ले सकते हैं। रायता भी होता है और हेल्दी चिप्स भी इसके ऑफकोर्स बहुत अच्छे हैं। सो उबले हुए चुकंदर से रायता भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये रायता आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो पतले स्लाइस को ओवन या फिर एयर फ्रायर में आप इसको बेक भी कर सकते हैं, और टेस्ट के साथ डाइट में इससे न्यूट्रिशन भी आप बढ़ा सकते हैं। सो आई होप कि भाई आपको इतने सारे तरीके मैंने बता दिए हैं। अब चुकंदर तो आपको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कहेगा भाई इतने तरीके तो आपको वैसे भी पता चल गए हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अक्सर ऐसी चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, चाहे चुकंदर हो, गाजर हो, या फिर इसके अलावा आंवला होता है, इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर ये सब थोड़ा सा वक्त वक्त पे किसी ना किसी फॉर्म में अगर हम लेते रहेंगे, तो डेफिनेटली जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे शरीर को जो चाहिए होता है, वो मिलता रहेगा किसी ना किसी बहाने से। और इतने बेहतरीन बहाने हमने आपको बता दिए कि इसके अलावा तो अब और कुछ जानना भी नहीं चाहिए आपको। यस, तो चलिए भाई आज ही स्मूदी बनाइए, या फिर आप सब्ज़ी बनाइए, या फिर आप इसको सैलड में खाइए, या फिर आप इसका जूस निकालिए, बट यूटिलाइज ज़रूर करिए। काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। और ज़बान लाल लाल करके दिखाइए और लोगों को डराइए।

0: बात बता।
1: हाँ हाँ पूछो।
0: तुझको पुलिस ने क्यों पकड़ लिया था?
2: अरे मैंने बैंक लूटा था।
0: हाँ?
2: और फिर वहीं बैठकर पैसे गिनने लगा।
0: अच्छा,
2: बस इतने में पुलिस आ गई और मुझे पकड़ लिया।
0: हाँ? हाँ?
2: हाँ?
0: ओए बेअकल, बैंक लूट लिया तो वहीं पर पैसे गिनने की क्या जरूरत थी?
3: अरे तो क्या करता, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि काउंटर छोड़ने से पहले पूरे पैसे गिन ले, बाद में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
4: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सो आपको पता ही नहीं चला और इतना बेहतरीन बेहतरीन आपने सॉन्ग सुने कि भाई 10:17 से अब 18 की तरफ हम आ गए हैं और आपको पता ही नहीं चला, राइट? तो चलिए एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फिलहाल आज तारीख की बात करें तो 26 तारीख हो गई है और साथ ही साथ आपको हम बताने वाले हैं कि 1 अक्टूबर से, यानी अक्टूबर से कई नियम जो है वो बदलने वाले हैं जिससे हमारी जेब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर होने वाला है। तो क्या कुछ बदल रहा है और क्या कुछ होने वाला है, आइए आपको बता देते हैं, क्योंकि अब से ठीक 4 दिन बाद से ये नियम जो है प्रभावी हो जाएंगे जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव लाने वाले हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

सो पहली चीज़ तो 1 अक्टूबर 2026 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी का फ़ायदा लेने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यानी बीएए पूरा करना ज़रूरी है। सो जिन कस्टमर्स ने ये प्रोसेस पहले ही पूरी कर लिया है उन्हें दोबारा कुछ नहीं करना होगा। सो गवर्नमेंट के मुताबिक 19 सितंबर तक 27,43,43 लाख यानी कि लगभग 89.9% जो है एक्टिव घरेलू एलपीजी कस्टमर्स का बीएए पूरा हो चुका था, इसलिए अब एलपीजी सब्सिडी के आधार पर ही वेरिफिकेशन ज़रूरी है। सो 1 अक्टूबर 2026 से ये प्रभावी है। और जैसा कि हमने बताया कि सिलेंडर पर अगर आपको इसका सब्सिडी का फ़ायदा चाहिए तो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यानी बीएए पूरा करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा यूपीआई पर नया एमडीआर, लेकिन फ़िलहाल कस्टमर्स से नहीं सीधे चार्ज लिया जा रहा ऐसा बोला जा रहा है। सो 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से ज़्यादा के कुछ चुनिंदा P2M यानी ग्राहक से कारोबारी भुगतान पर 0.4% एमडीआर लागू होगा। 75,000 रुपये या उससे ज़्यादा के भुगतान पर यह शुल्क ज़्यादातर 300 रुपये तक ही जो है वो सीमित रहेगा। हालांकि ये चार्ज ग्राहक से वसूलने की परमिशन नहीं है और ये P2P यानी व्यक्ति से व्यक्ति के भुगतान पर नहीं होगा, बल्कि ये कस्टमर्स की बजाय शॉपकीपर्स से लिया जाएगा ऐसा बताया गया है। तीसरा जो नियम आ रहा है वो NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए टैक्स प्रोसेस को आसान होने की बात बताई जा रही है। सो NRI से अचल संपत्ति खरीदने वाले जो निवासी हैं या HUF के लिए TDS से जुड़ी अनुपालन प्रक्रिया में बदलाव होगा। पैन बेस्ड प्रोसेस में फॉर्म 141 के इस्तेमाल से अलग टैन लेने की ज़रूरत वाला प्रोसेस को आसान किया जा रहा। हालांकि NRI की प्रॉपर्टी खरीद पर TDS की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ESIC का दायरा बढ़ेगा। सो 1 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के 24 ज़िलों में अधिसूचना के तहत आने वाले पात्र प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों पर ESIC का दायरा बढ़ाया जाएगा। इससे जो पात्र कर्मचारी को ESIC के तहत मिलने वाले स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा फायदों का कवरेज बढ़ेगा। इसके साथ ही कर्मचारी और नियोक्ता जो निर्धारित नियम है इसके हिसाब से योगदान करेंगे। दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस के लिए स्मार्ट कार्ड। सो दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स जो यात्री इनकी मुफ्त DTC और क्लस्टर बस यात्रा के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड ज़रूरी होने जा रहा। 30 सितंबर तक पेपर लिंक टिकट की जो है वो व्यवस्था रहेगी, लेकिन 1 अक्टूबर से स्मार्ट कार्ड टैप करने पर ही मुफ्त यात्रा की फैसिलिटी मिलेगी। कार्ड पहली बार मुफ्त जारी होगा, जबकि खोने या ख़राब होने पर रिप्लेसमेंट के लिए 69 रुपये देने होंगे। अक्टूबर से बैंक हड़ताल से बढ़ सकती है परेशानी। जी हाँ, सो बैंक यूनियन ने अपने कई सारी मांगों को लेकर के 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। इसमें 5 जो वर्किंग डे हैं, ये बैंकिंग व्यवस्था, पेंशन में सुधार, कर्मचारियों से जुड़े बाकी मुद्दे शामिल हैं। हालांकि हड़ताल की सिचुएशन और उसका वास्तविक असर आगे होने वाली बातचीत पर जो है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करने वाला है। सो ये कुछ ज़रूरी बातें थीं जो कि इसी अक्टूबर से ही चल रही हैं, होने वाली है, इसलिए आपको हमने पहले ही बता दिया। स्पेशली अगर आप लेना चाहते हैं सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर पर, तो जैसा कि हमने बताया BAA यानी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होगा। सो इस प्रोसेस को जिन लोगों ने कर लिया है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि अक्टूबर से ये प्रभावी होने वाला है। जिनका BAA वेरिफिकेशन होगा वही एलिजिबल होंगे, ऑफकोर्स वही एलिजिबल होंगे सब्सिडी लेने के लिए। तो इसलिए BAA प्रोसेस का आपका होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए, मुझे लगता है काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस जो थी, ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस, वो हमने आप तक पहुँचा दी है और आप इसको बखूबी समझ भी गए हैं और उन लोगों तक भी आप पहुँचाने वाले हैं जो इससे अभी बेखबर हैं, तो उनको बाखबर कर दिए ये बातें बता करके। फ़िलहाल मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा काम की थी जो कि आप तक पहुंचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो चलिए फ़िलहाल हम चलते हैं अगले एक खूबसूरत से रोमांटिक सॉन्ग की तरफ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में विद यू मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM
ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: से मास्टर, जुबान पर लगाम लियो लगाई।
1: आगे के हम सुनाई?
2: हाँ हाँ हाँ सुनाओ बेटा।
1: बी से चंटू ज्यादा पुलियो तो ठीक न खाई, और फिर सी से तोहार अत्ता होई सुताई, अत्ता होई सुताई, अत्ता ना होई सुताई। कि ओकरे बाद डी से तू गदावन ढेचो ढेचो करत देहो दिखाई।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: हाँ जी, तो भैया फिलहाल एक ऐसा मद्रास कोर्ट ने फैसला सुनाया है जो बहुत अहम माना जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा अहम सच में भी है, क्योंकि इसको सुनने के बाद आप भी जो है वो सोचने वाले हैं। फिलहाल घर में जो कामों में पुरुषों की भागीदारी होती है, वही शादियों को बचा सकती है। अगर हाउस वाइफ हो सकती है तो हाउस हस्बैंड क्यों नहीं, और ये कहना है मद्रास हाई कोर्ट का। यानी स्टेटमेंट है कि घर के कामों में पुरुषों की भागीदारी ही जो है वो शादियों को बचा सकती है। अगर हाउस वाइफ हो सकती है तो हाउस हस्बैंड क्यों

नहीं, ये स्टेटमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का। सो फिलहाल इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये जो स्टेटमेंट आया है कि भाई अगर हाउस वाइफ हो सकती है तो हाउस हस्बैंड क्यों नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ हुआ इस पूरे घटनाक्रम में? क्यों आखिर ऐसा स्टेटमेंट देने की नौबत आई? मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसे कौन से सिनेरियो बना, क्यों कहा है और किन चीज़ों को देखते हुए कहा है, और क्या सच में ये जो बात कही गई है इस पर ध्यान देने लायक बातें हैं? ऑफ कोर्स, तो ये सब कुछ बताने वाले हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। फिलहाल जब तक आप बता सकते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट आपको कैसा लगा कि अगर हाउस वाइफ हो सकती है तो हाउस हस्बैंड क्यों नहीं, सोचिए और बताइए। फिलहाल आपके बताए जाने का इंतजार कर रहे हैं मॉर्निंग जॉ का आरजे अदनान, मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।

0: सुभद्रा, हाई कोर्ट का स्टेटमेंट था कि घर के कामों में पुरुषों की भागीदारी जो है वही शादियों को बचा सकती है। अगर हाउस वाइफ हो सकती है तो हाउस हस्बैंड क्यों नहीं। ये एक बड़ा फैसला है और ये फैसला जो है वो आगे भी तय करने वाला है कि अब किस तरह से चीज़ें इनको देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये समाज की चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं। आखिर क्या है पूरी बात, आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

सो करियर बनाने का हक जो है वो हर किसी को है, अब वो जेंडर चाहे जो भी हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन के लिए ही क्यों ना हो। तो फिर वर्किंग वुमेन के लिए शादी की रुकावट क्यों आखिर, ये सवाल तो सच में आता है। सो अपना करियर संवारना और आगे बढ़ना हर किसी की बुनियादी जो है वो एक राइट है, चाहे वो कोई महिला हो या पुरुष। लेकिन चूंकि हमारे समाज में अक्सर करियर ओरिएंटेड लड़कियां जो है उनकी शादी को अपने सपनों के बीच में एक रुकावट मानती हैं। सो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है डबल बर्डन। अब ये डबल बर्डन क्या है? शादी के बाद एक कामकाजी महिला से ये उम्मीद की जाती है कि वो ऑफिस में भी 100% दे और घर का पूरा कामकाज भी अकेले ही संभाले। सो क्या था मद्रास हाईकोर्ट का ताज़ा मामला? दरअसल अभी हाल ही में मद्रास कोर्ट की मदुरै बेंच ने इस अहम मुद्दे पर एक बेहद प्रोग्रेसिव फैसला सुनाया है। और ये मामला आज का नहीं, 2011 में शादी करने वाले एक डॉक्टर दंपत्ति के तलाक का था। सो इस केस में पत्नी एक वर्किंग वुमन थी जिस पर नौकरी के साथ साथ घर के कामकाज का भारी दबाव था। सो पति का घरेलू जिम्मेदारियों में बिल्कुल भी हाथ ना बटाना ही इस शादी के टूटने की असली वजह बना। सो कोर्ट ने समाज को दिखाया है आईना, जी हाँ, अपने फैसले से। इस फैसले के दौरान जस्टिस जी आर स्वामीनाथन और जस्टिस एम डी सुमति ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है। जजों ने साफ कहा है कि महिलाओं पर पड़ने वाला ये दोहरा दबाव ही आजकल शादियां टूटने का सबसे बड़ा कारण है। एक बार वापस से कहूंगा, जजों ने साफ कहा है कि महिलाओं पर पड़ने वाला ये दोहरा दबाव ही आजकल शादियां टूटने का सबसे बड़ा कारण है। और जब तक इस असली वजह को हाईलाइट नहीं किया जाएगा, ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली है। सो इसका सलूशन बताते हुए कोर्ट ने बहुत क्लियर बताया है कि जब महिलाएं अपने करियर पर फोकस कर रही हैं तो होम मेकर की भूमिका को जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। जजों ने साफ कहा है कि अगर समाज में एक हाउस वाइफ की भूमिका हो सकती है तो एक हाउस हस्बैंड की भूमिका भी हो सकती है। इसे अब समाज में एक न्यू नॉर्मल बन जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि घर के काम को सिर्फ महिलाओं की ड्यूटी मानना बंद किया जाए। एक सफल शादी वही है जहां जिम्मेदारियां भी बराबर ही बांटी जाए। क्यों? मुझे तो ये फैसला सच में बड़ा ऐतिहासिक लगा और बड़ा ही प्रोग्रेसिव लगा। भाई हम कौन से होते हैं फैसला करने वाले कि महिलाओं को यही करना चाहिए, या मेरे घर में जो महिला है उनको यही करना चाहिए, या आप अपने घर का। हाँ, हम घर वाले बनते हैं, अब कहते हैं कि भाई उनके घर वाले हैं, उनका अच्छा सोचते हैं। अच्छा ज़रूर सोचते हैं, लेकिन जो चीज़ें चलती चली आ रही उसको वैसे ही थोप देना अच्छा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर अच्छा सोचते हैं तो फिर हम बराबरी की जो बात करते हैं, सो बराबरी में हम जाके काम भी बटाएंगे। और हर शख्स कोई भी होता है काम करने के बाद थकता है, मेंटली ड्रेन होता है, उसको भी आराम चाहिए होता है। तो ये कैसे एक्सपेक्ट करना कि भाई अगर कोई काम कर रही घर जाके सारा काम भी उन्हीं को ही करना है, और अगर कोई चीज़ कमी रह गई तो लो आफत। नहीं, साथ में होगा। अगर आप भी वर्किंग मैन हैं तो वर्किंग वुमन अगर वो हैं तो मिलकर ही काम होने वाला है। और शायद सच में कोर्ट ने बहुत क्लियर बताया है कि आजकल जो शादियां टूटती है वो ये दोहरे दबाव की वजह से ही होता है कि भाई कहते हैं कितनी महंगाई भी हो गई है, अगर वाइफ ना अर्न करे तो घर प्रॉपर चल ना पाए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई अच्छी एजुकेशन आप दे नहीं पाएंगे, अच्छा ट्रीटमेंट आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए आप कहते हैं कि भाई मिल करके कमा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और निकलने से वैसे भी इंसान प्रोग्रेसिव हो पाता है और काफ़ी कुछ वो सीखता है, अपने लिए कर पाता है, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कैसे हो सकता है कि भाई पुरुष कमा कर आए तो थका है, उसको सब कुछ लेटे लेटे चाहिए, और महिला कमा कर आए तो उसका काम है। ये काम किसने तय किया है? कहीं लिखा तो है नहीं, है ना? तो इस बात को समझा जाना जरूरी है। ये दरअसल किसी को डोमिनेट करना या किसी से आगे निकलना या किसी के फेवर की बात नहीं है, बल्कि हमारी फैमिली के अंदर है। ये हस्बैंड वाइफ का मामला है, ये भाई बहन का मामला है, ये माँ और बच्चों का मामला है, यानी ये हमारी ही फैमिली, हमारे अपनों का मामला है। और अगर हम थोपने की बजाय मैनेज करने की कोशिश करें, हाथ बटाने की कोशिश करें, बेहतर करने की कोशिश करें, तो शायद ये चीज़ें सच में बेहतर होंगी। हम भी अपनी
मदर्स को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी वाइफ्स को, अपने पार्टनर्स को हम बेहतर फील करा पाएंगे, उनको सच में हेल्प कर पा रहे होंगे, सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करके दिखाने से। एंड मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला मुझे तो बड़ा लाजवाब लगा। अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगा? जो फिलहाल सीधे बोला है कोर्ट ने कि भाई अगर हाउस वाइफ हो सकती है तो हाउस हस्बैंड क्यों नहीं हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। अब इस पर आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, ये आप हमको कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके बताए जाने का इंतज़ार है। इसके अलावा कुछ मैसेजेस आ चुके हैं चैट बॉक्स पर, हम उस तरफ भी जाने वाले हैं, उसको भी लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ऑफकोर्स इस सॉन्ग को ज़बरदस्त तरीके से सुनने वाले हैं हम सब मिल करके।

0: आई होप कि भाई ये गाना और ये कोर्ट का फैसला दोनों ही आपको बड़ा ही लुभा रहा होगा। सच में जिस बात में फैक्ट होता है, सच्चाई होती है, दिल से खुशी होती है उस बात को सुनने में, समझने में और उसको सोचने में भी। सो फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान, और आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। फिलहाल वक्त है चैट बॉक्स की तरफ रुख करने का।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, फिलहाल प्रीति शुक्ल जी ने बहराइच से इस बात पर रिएक्शन दिया है, बहुत अच्छा फैसला, हाउस हस्बैंड होना ही चाहिए ऐसा। एंड डेफिनेटली ये बहुत सीरियस बात है, बिल्कुल होना ही चाहिए। हालांकि इसको अभी कहा जाए तो न जाने कितने लोग इसको लेकर के बुरा मान जाएंगे, क्योंकि वही बात है कि हम कहते तो हैं कि हम शायद मॉडर्न हैं, बट हमको देखना होगा कि आखिर हम किन किन जंजीरों से सच में जकड़े हैं, जिसका हमको खुद भी अंदाज़ा नहीं। और ये जंजीर बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि आभास होता नहीं है और जकड़े भी हम रहते हैं। फिलहाल जो कुछ बाद में मैसेजेस आए मेरे पढ़ने के बाद, उसके बारे में बताते हैं। आशु जी कहती है सारी ट्रेन कैंसल्स हो गई है, सभी लोग अपने घर पर बैठ कर मज़ा ले रहे हैं, बेशक। एंड मुकेश मौजूद हैं, मुकेश गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग टू यू। संतोष कुमार जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। मुस्तफ़ा सऊदी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। महेंद्र आ गए हैं राजस्थान से, गुड मॉर्निंग आर जी अदनाजर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। और भैया राजस्थान का मौसम कैसा है? यूपी का तो इस वक्त आफत है आफत, अब आप बताइए आपकी तरफ कैसा है। एंड साथ ही साथ सुनने वाले हर उस श्रोता जो इस शो से जुड़े हैं, ऑफ कोर्स लगातार बने हुए सुनते जा रहे, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि भाई इतना ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है इस शो को, गुड मॉर्निंग गोंडा शो को, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहता हूँ। और ये मोहब्बत लुटा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ ये है, कोशिश ज़रूर रहती है कि मैं भी आप तक कुछ उसी अंदाज में पहुँचूँ जिस कदर आप मोहब्बत हम तक पहुँचा देते हैं। फिलहाल जाते जाते इस सॉन्ग को आप एंजॉय करिए, बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम पर, क्योंकि अब आने वाले हैं बैक टू बैक आपके फेवरेट शोज ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
6: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
7: राव की गूंज, राव की गूंज, राव की गूंज।
8: बरसों मेघा धड़ाके से, बुढ़िया मर गई छोके से। काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे।
9: सिमी ये क्या बच्ची बनी हो और ये क्या बोल रही हो?
8: अरे समता दी, बचपन में जब पानी बरसता था तो गांव में हम बहुत सारे कजिन्स थे, सब पानी में भीग कर यही बोलते थे। छोटे छोटे मेढक के बच्चे पकड़ते थे, कागज की नाव बनाते थे और मौसम की पहली बारिश देखकर बस बचपन ही याद आ गया।
9: सच में बचपन कितना प्यारा होता है, काश हम कभी बड़े ही ना होते। बारिश ने तो कितनी राहत दी है आपकी, तो इतनी गर्मी भी तो पड़ी है। भगवान करे आप कई दिन तक ऐसे ही पानी बरसता रहे। चलो स्टूडियो चलते हैं और किरण दीदी आ गई होंगी।

0: श्वेता, श्वेता।
1: अरे समता दी, मौसम का मजा ही नहीं लेने दे रही हैं। कितना प्यारा मौसम हो रहा है। याद कीजिए, अभी दो दिन पहले कितनी गर्मी पड़ रही थी, एसी भी ठंडक नहीं दे पा रही थी।
2: 100% सही कहा श्वेता तुमने, पर जब मौसम इतना लाजवाब हो तो जो लोक गीत हमने तैयार किया है ना, वही सुन लो।
3: बदरिया

0: वेरी गुड बबलू बेटा, तुम तो बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो। ऐसे ही अपने दोस्तों को समझाओ कि स्कूल जरूर जाएं। अच्छा बेटा बाय, हम लोग जल्दी ही गांव आएंगे।
1: अरे हरी ओम, तुम किससे बात कर रहे थे? और ये बताओ कि हमारे गांव की गूंज की टीम को आज कौन से गांव जाना है?
2: सिमी, अभी तो कहीं नहीं जा पाएंगे, गांव में तो बहुत पानी भर गया होगा। अरे कॉलेज में स्टेज के पास ही देख लो, 2 घंटे की बारिश में कितना पानी भर गया है।
3: पहले कॉलेज के पीछे एक तालाब था, अब उसे पाट कर सबने घर बना लिया है, पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है।
4: याद है 1 साल पहले जब बहुत बारिश हुई थी, तब कितने दिन तक कॉलेज में पानी भरा हुआ था? पीछे की लाइन के घरों में तो 1 महीने तक पानी भरा ही रहा, उन लोगों को किराए पर घर लेकर अलग रहना पड़ा।
0: याद है आप लोगों को, एक बबलू नाम का लड़का मिला था जब हम लोग रामपुर गए थे। वो बता रहा था कि वो रोज स्कूल जाता है, और वो ये भी बता रहा था कि गांव में पानी भर गया है, जिसकी वजह से वो अपने जूतों को नहीं पहन पा रहा है, और वो अपने जूतों को थैले में रखकर स्कूल में जाकर पहनता है।
2: हाउ स्वीट, कितनी परेशानी उठाकर गांव के बच्चे पढ़ाई करते हैं। क्या जलभराव का कोई समाधान नहीं है? क्या गांव की गूंज की टीम कुछ कर सकती है?
1: अरे क्यों नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें लोगों को जागरूक करना है कि अगर गांव में कोई नाली बनी है या घर से पानी निकलने के स्थान को फावड़ा लेकर साफ करें, जिससे जो मिट्टी पत्ती कूड़ा भर गया है वो साफ हो जाए और पानी आराम से निकलकर नदी तालाब या झील में चला जाए।
3: इसका समाधान बहुत ही जरूरी है, अभी तो बरसात शुरू ही हुई है, पूरे मॉनसून बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होगी, खेतों में पानी भरेगा, रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। किसानों को अपने जानवरों को जल भराव के कारण कई दिन पानी के अंदर ही बांधना पड़ता है।
2: अरे बस बस बस, पहले कुछ लोकगीत सुनकर रिचार्ज हो जाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे।

0: संतोष भैया की कड़क चाय और प्याज के पकोड़े के साथ किरण दीदी के मधुर गीतों ने हम सबको ताजगी दे दी है। कसम से मजा आ गया। अब नए जोश के साथ हमारी टीम दो भागों में बढ़ जाए और गांव में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं।
1: जी हाँ, हर गांव में एक सफाई कर्मी होता है, उसका सहयोग ले लेंगे और अगर नाली बनी है गांव में तो उसे साफ करवाएंगे। अगर नाली नहीं है और पानी रुक रहा है तो अभी टेम्परेरी वाला नाली खुदवा कर पोखर या तालाब से जोड़ देंगे।
2: अगर छोटे छोटे गड्ढे हों तो उसे बंद जरूर करवा देना चाहिए, नहीं तो बरसात के बाद वो मच्छर का गढ़ बन जाता है और बहुत ही बीमारी फैलती है।
3: जो पास का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, उनसे कहकर जहाँ गंदगी ज्यादा हो ब्लीचिंग पाउडर डलवाएं और छोटे छोटे गड्ढों में मच्छर की दवा का छिड़काव भी करवाएं।
1: कीचड़ में चलने से पैरों में बहुत इन्फेक्शन होते हैं, तो सभी को रटा दो कि जब भी बाहर से अंदर आए तो पानी से पैर को साफ कर लें और पैरों के बीच की उंगलियों को कॉटन या सूती कपड़े से सुखा लें।
0: विशेषकर बुजुर्गों का तो ध्यान जरूर रखना चाहिए, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर पैर में कोई घाव हो तो जरूर से उनके पैर में तेल और हल्दी लगाएं।
1: फिर से आप सभी से ये बता रहे हैं कि आसपास पानी न इकट्ठा होने दें, वो चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया का केंद्र होता है। अगर पानी में भीग गए हो तो तुरंत कपड़े बदलो और सूखे कपड़े पहनो, नहीं तो त्वचा की बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। पानी दूषित हो जाता है बरसात में तो पानी छान कर उबाल कर ठंडा करके पिएं।
2: हल्का खाना खाएं और बाहर के खाने से बचें। हाथ को जरूर धोएं, विटामिन सी का सेवन भी जरूर करें। बिजली के उपकरणों को गीले हाथ से ना छुएं, बहुत करंट आता है बारिश में, इसीलिए बच्चों को स्पेशली समझाएं कि सूखे हाथ से ही प्लग ऑन करें।
1: इतने टिप्स दे दिए कि सब ऊपर से जा रहा है। अब सबसे पहले किरण दीदी के गीत, फिर आगे बात करेंगे।

0: गांव की गूंज की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, इसीलिए हम लोगों को बहुत काम करना है।
1: सही कह रही हैं किरण दीदी, पर श्वेता मैम की बात भी सही है, आपके गानों के बिना हम लोग को एनर्जी ही नहीं मिलती।
2: अगर किसी के घर में पानी निकलने का कोई भी चारा ना हो तो वहाँ के प्रधान और सेक्रेटरी से बात करके सोखता बनवाएं। सोखते से दो फायदे होते हैं, एक तो वाटर लॉगिंग नहीं होती है, दूसरा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है।
3: पर एक चीज जरूर ध्यान देना सब लोग, हर घर में पूछती रहना कि पानी कैसे निकालते हो। कुछ लोगों ने अपने पुराने जो कुएं थे उसमें नाली जोड़ दी गई, और कुछ लोगों ने तो बोरिंग करा के सीधे पाइप नाली ही जोड़ दी है, और बरसात का पानी उससे जमीन के नीचे चला जाता है।
0: अरे बिना फिल्टर हुए पानी नीचे जा रहा है तो ये तो बहुत बुरा है, जमीन के नीचे का पानी प्रदूषित हो रहा है। गांव के लोगों को समझाना पड़ेगा कि ऐसे डायरेक्ट बरसात के पानी को नीचे ना जाने दें।
2: गांव में इसीलिए लोगों को पेट की समस्या और लीवर की समस्या

0: चलिए, पानी लगभग रुक गया है। हरिओम ने गांव की लिस्ट दे दी है। हम ए टीम में हैं। हम लोगों का पहला गांव जयनगरा है।
1: एक जरूरी बात तो हम लोगों ने की ही नहीं, अगर ग्रामीण भाइयों में से किसी के घर के आसपास दिखे कि जानवरों के बैठने की जगह पर पानी भरा है और वो लोग पशुओं को खाना भी वहीं पर दे रहे हैं, तो उनसे कहिएगा कि जानवरों को सड़क पर बांधें।
2: हाँ, सड़कें ऊंची होती हैं और आजकल तो हर गांव में पनकी सड़कें हैं, तो अपने जानवरों को वहीं बांधें और वहीं उनको खाना भी दें।
0: चलिए, गांव की गूंज की टीम कृष्ण कुमार भैया और ननकू भैया गाड़ी लेकर आ गए हैं। जानते हो, हमारी टीम में किरण दीदी हैं, तो रास्ते में तो खूब रौनक रहेगी।
3: यह तो चीटिंग हुई। एक शर्त पर हम लोग किरण दी को तुम लोगों के साथ जाने देंगे, जब किरण दी घंटी बजे टनाटन वाला गाना सुना कर जाएंगी।

0: बरसात में होने वाले परेशानी से गांव के लोगों को जागृत करने के लिए गांव की गूंज की टीम निकल चली है। जल्दी आपके गांव में मिलते हैं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
5: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
6: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब?
8: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
10: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर, हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9286098197 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
8: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

अपना वार्म वेलकम जिसना आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही पसंदीदा और प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, जो कि आपको देता है एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन और उसी के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, यानी आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो भाई कैसे हैं आप सब, फटाफट से अपना हालचाल बताएं। और मौसम पे तो आज मैं क्या ही कहूँ, मौसम पे तो बस यही कहना है कि बारिश जो है वो बरसे जा रही है। और मतलब ऐसा मौसम है ना कि ऐसे लग रहा है ना कि बारिश जो है उसने कह दिया है कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे तो बरसना है, फिर चाहे आप जो भी कर ले। कुछ ऐसा ही मौसम है और वाकई बहुत ही प्यारी बारिश भी हो रही है और उस प्यारी प्यारी बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। मौसम जो है वो थोड़ा सा ऐसा है कि हमें अपनी केयर ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि अगर आप बाइक या कोई भी ऐसी चीज़ बाइक चला रहे हैं तो बहुत ध्यान से चलाइए, क्योंकि बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, इसकी वजह से रोड जो है वो स्लिप कर सकती है। अपना ध्यान रखें, हेलमेट ज़रूर पहनें और इसी के साथ ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करें। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जो हवाएँ इतनी तेज़ चल रही हैं इसमें कई सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है तो आप रेनकोट या फिर छाता लेकर के ही घर से निकलें और छोटे बच्चों को ज़्यादातर घर में ही रखें, उन्हें बाहर बारिश में खेलने ना दें, क्योंकि बारिश का ये पानी जो होता है ना, जो धीमी धीमी जब बारिश होती है तो इसका पानी अगर बॉडी अब्जॉर्ब करती है तो ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है और बच्चों को तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर कर जाता है और बहुत जल्द असर कर जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, लेकिन मस्ती बिल्कुल भी मना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतनी अच्छी बारिश हो रही है और इतनी अच्छी बारिश में हमें मस्ती करने का मौका बार बार तो मिलेगा नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम बार बार तो आएगा नहीं, तो भाई हम तो फुल ऑन करेंगे मस्ती। अगर आपके मन में भी ऐसी बातें हैं तो फुल ऑन आप मस्ती कीजिए चाय पकौड़ों के साथ में। थोड़ा सा अगर आप बारिश को इंजॉय करना चाहते हैं, बारिश में भीगना चाहते हैं, तो ज़रूर भीगिए, ज़रूर इंजॉय करिए, लेकिन अपनी हेल्थ को देखते हुए, क्योंकि जो हमारी हेल्थ है ना वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होनी चाहिए। और इसी के साथ भाई आज का दिन तो आप सभी को पता है कि आज का दिन क्या है। आज का दिन है हमारा सैटरडे। और हमारा सैटरडे जो होता है वो ज्ञानश्री लाइव में होता है, एंटरटेनमेंट वाला डे आपका, मेरे यानी आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। तो आज भी एंटरटेनमेंट वाला डे है हमारा। 90s की कुछ मूवीज़ को लेकर के हम बात करेंगे, उनकी पीछे की स्टोरीज़ को जानेंगे फिर से एक बार, क्योंकि आपका सैटरडे होता है मूवीज़ वाला डे, बिल्कुल जानेंगे। और 90s को छोड़कर हम कुछ न्यू मूवीज़ पर भी बात करेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि बॉलीवुड की गलियों में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आज भी हैं कुछ खबरें बॉलीवुड की गलियों से जो कि बिल्कुल ताज़ा, यानी कि बिल्कुल फ्रेश हम लेकर के न्यूज़ हमेशा आपके लिए आते हैं और आपको कुछ फ्रेश न्यूज़ ही बताते हैं। तो आज भी है कुछ अवार्ड शोज़ के बारे में, कुछ एक्टर एक्ट्रेस के अच्छे कामों के बारे में, कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर मचा रखा है धमाल धमाल धमाल धमाल धमाल और कर रखा है फुल ऑन कमाल। तो वही बॉक्स ऑफिस का हाल होने वाला है, काफ़ी कुछ होने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कि आप सभी जो है ना वो इस बारिश वाले मौसम में सोच रहे हैं कि क्यों ना एक बारिश वाला गाना हो जाए। सोच रहे हैं ना आप सब भी मेरी तरह घर से बैठे बैठे कि अगर इस बारिश के मौसम में प्यारी सी इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मीठी मीठी सी बारिश हो रही है, अगर इस मीठी मीठी बारिश में अंशिका मैम मीठा मीठा बारिश वाला सॉन्ग सुना देती तो फिर क्या ही कहना था। सोच रहे हैं तो चलिए आपकी सोच को पूरा कर देते हैं और सुना देते हैं बारिश वाला एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, क्योंकि भाई बारिश हो रही है और अगर बारिश हो रही है और बारिश वाला गाना नहीं है तो फिर क्या खाक बारिश हुई। फिर तो हमें मतलब लगता है ना कि सॉन्ग्स के बिना कुछ बारिश अधूरी अधूरी है। तो आइए आपकी अधूरी बारिश को पूरा कर देते हैं इन प्यारे प्यारे बारिश वाले सॉन्ग्स के साथ में, सुन लेते हैं। और बस यूँ गई हूँ और यूँ आई हूँ फिर से, क्योंकि आज हमारे पास बातों का खजाना है, बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये बारिश वाला बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और फिर मिलते हैं सॉन्ग के उस पार, आप भी सुने और एंजॉय करें। स्टे ट्यून लिसनर्स, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, इसे सुनिए, एंजॉय करिए और मेरे साथ बने रहिए। बस यूं गए और यूं आए।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानश्री लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत करती हूं। तो आइए चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि आज बॉलीवुड की गलियों से हमारे पास क्या क्या है। तो आज सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि हाल ही में जल्दी ही गुजरात के एकता नगर में बहुत बड़ा यानी कि नेशनल लेवल पे 72वां फिल्म अवार्ड भी मनाया गया है। 72 नेशनल फिल्म अवार्ड अभी अभी हुआ था, जो कि गुजरात के एकता नगर में हुआ था, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहाँ पे एक्टर और एक्ट्रेस को सम्मानित भी किया था। तो आइए बताते हैं कि इसमें किसे किसे सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले इसमें जिसे सम्मानित किया गया है वह है कार्तिक आर्यन, जिन्हें की फिल्म चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया है। ये उनके करियर का पहला नेशनल अवार्ड है। और दूसरा है इस फिल्म जो कि है यामी गौतम, जिन्हें फिल्म आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड को जीतने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर की। और उसके बाद में है रणदीप हुड्डा, जिनको की बतौर डायरेक्टर अपनी ही फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर के लिए बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया है। और इसके बाद में आते हैं दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके बहुत ही अच्छे कंट्रीब्यूशन के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी अभी यानी कि इस नेशनल अवार्ड में दिया गया है। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ अपकमिंग अवार्ड फंक्शंस की जो कि होने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि बहुत ही जल्द बॉलीवुड का सबसे बड़ा और ग्लैमरस अवार्ड शो होने वाला है, जिसका कि नाम है आईफा अवार्ड्स। आईफा अवार्ड यानी कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, जो कि इस बार अक्टूबर के मिड में होने वाला है। इस बार ये अवार्ड शो अवार्ड फंक्शन एशिया के एक नए वेन्यू पर होगा। साथ ही आईफा अवार्ड का इस बार बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही बड़े लेवल पे होने वाला है। तो भाई इस बार तो आईफा अवार्ड को एंजॉय करने के लिए लगने वाली है ज़बरदस्त। कहीं ना कहीं एक्टर और एक्ट्रेस सभी आएंगे, बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेस आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज होने वाली हैं इस बार आईफा अवार्ड में। तो इस बार तो आईफा अवार्ड मुझे लगता है कि देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इस बार आईफा अवार्ड्स जो है वो किसी न्यू लोकेशन पे होने वाला है। तो देखना होगा कि इस बार ये आईफा अवार्ड्स कैसे होता है और कैसे कहीं ना कहीं कितना बड़ा होता है और कितने अच्छे से होता है। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ मूवीज़ की जिन्होंने इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर मचा रखी है धमाल धमाल धमाल धमाल धमाल। तो सबसे पहले जिस मूवी की बात करते हैं वो है द पैराडाइज अभी अभी यानी कि बस 24 सितंबर को रिलीज़ हुई है। और ये कहीं ना कहीं इसमें सुपरस्टार नानी और राघव जुलियाल है जो कि विलन के अवतार में हैं। और पैन इंडिया ये एक्शन ड्रामा रिलीज़ होते ही बॉक्स ऑफिस पर इसने किया है शानदार और बड़ा धमाका। मैं आपको बता दूं कि एडवांस बुकिंग के बाद इस फिल्म ने पहले ही दिन में 46.25 करोड़ की ओपनिंग की है और बड़ी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आइए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फिल्म की जो कि है द विवान फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि ये भी 24 सितंबर को रिलीज़ हुई है और सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की ये बहुत ही अच्छी सी मूवी है। सो बात कर रहे हैं मूवीज़ के बारे में, भी मूवीज़ जो होती है ना वो इतनी प्यारी होती हैं कि क्या ही कहा जाए। कहीं ना कहीं पूरा हमारा जो फोकस होता है वो इन्हीं पे हो जाता है। मूवीज़ को हम इन्जॉय भी तो काफ़ी करते हैं ना, हमें ऐसे लगता है कि भाई मूवीज़ हैं तो सब कुछ है, इन्जॉयमेंट तो बनता ही है और इन्जॉय करना भी चाहिए, क्योंकि मूवीज़ जो होती हैं वो हमें सिर्फ कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट ही नहीं देती बल्कि सिखाती भी हैं, उनसे हमें सीखते भी रहना चाहिए। तो आइए लिसनर्स, अब बात कर लेते हैं कि अभी हमने जिस फिल्म की बात की वो थी द वैवान, जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की एक पूरी मिस्टीरियस फिल्म है और कहीं ना कहीं एक्शन एडवेंचर भी, जो कि 24 को रिलीज़ हो चुकी है और इसने रिलीज़ होने के पहले ही दिन यानी कि शुक्रवार को इस फिल्म ने करीब 8 करोड़, बिल्कुल सही सुना आपने, पहले ही दिन इसने करीब 8 करोड़ का बिजनेस किया है और अभी देखते हैं कि ये और आगे कितनी जाती है। तो भाई इन फिल्मों ने मचा लिया है फुल ऑन धमाल धमाल धमाल धमाल धमाल। और मैं बता दूं कि हैवान इसी सितंबर को रिलीज़ होने वाली है, हैवान जो कि अक्षय कुमार और सैफ अली खान की एक डार्क थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसमें सस्पेंस की कहानी होगी। तो भाई आप सभी ज़रूरी से इन्जॉय कीजिएगा। और इसी के साथ बता दें कि कुछ फिल्में और हैं जिन्होंने की मचा रखा है बॉक्स ऑफिस पर धमाल और कर रखा है कमाल, जिसमें आती है धमाल 4, अजय देवगन और अर्शद वारसी की मल्टी स्टार फिल्म, कॉमेडी फिल्म जो कि है धमाल 4, उसने दर्शकों को खूब हंसाया है और बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रखा है। तो ये तो थी न्यूज़ की कौन सी अभी आने वाली है मूवीज़ और कहाँ कहाँ होने वाले हैं, कौन कौन से अवार्ड्स, कौन कौन से किस एक्टर और एक्ट्रेस को अवार्ड्स मिले हैं और किसने कितना और क्या क्या किया है। इन्जॉय भाई इन्जॉय तो बहुत ही हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आईफा अवार्ड्स आते हैं या कोई भी अवार्ड होता है, बॉलीवुड का अवार्ड होता है, तो इन्जॉय करना तो बनता है, क्योंकि ये जो अवार्ड्स होते हैं ये इन्जॉयमेंट के लिए ही होते हैं। सो भाई इन्जॉय करना बनता है, बिल्कुल बनता है, बिना इन्जॉय किए तो बिल्कुल भी हमारा काम जो है वो नहीं होता। तो फुल इन्जॉय करें, फुल ऑन देखें, फुल ऑन मस्ती करें, क्योंकि क्या होता है ना कि मस्ती के मौके हमें कभी कभी ही मिलते हैं। तो आइए लिस्टनर्स सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 981 976, 9260 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक, आपका अपना प्यारा वाला प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान स्थली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। और आज है हमारा सैटरडे यानी कि एंटरटेनमेंट वाला डे। और अब आ गई है बारी बात करने की कुछ फिल्मों के बारे में, कुछ मूवीज़ के बारे में। पहले हम 90s की मूवीज़ के लिए बात करेंगे और फिर कुछ न्यू मूवीज़ के लिए भी। लेकिन सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं 90s की कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में जो कि भाई इतनी ज़्यादा हिट हुई है ना कि आज भी कहीं ना कहीं जब हम उन्हें देखते हैं, उनके सॉन्ग्स को सुनते हैं तो झूम उठते हैं। आज ऐसी ही कुछ मूवीज़ की पीछे की कहानी है, वो पे हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 1991 में रिलीज़ हुई फिल्म फूल और कांटे। भाई फूल और कांटे तो मुझे लग रहा है ऐसी फिल्म है ना लिस्नर्स, ऐसी फिल्म है कि आज भी जब ये टीवी पे आती है तो हम दीवाने हो जाते हैं। मतलब इसके सॉन्ग सुनकर ऐसा लगता है ना कि बस सुनते रहें। और ये मूवी ऐसी है कि जब भी आती है तो मन करता है बस इसे देखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आइए बात कर लेते हैं इसके पीछे की कुछ कहानियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म के लिए पहले अक्षय कुमार को साइन किया गया था। वे फिल्म के लिए तैयार नहीं थे और कुछ कारणों से कहा जाता है कि उन्हें कोई दूसरी फिल्म के लिए जाना था और वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं फिल्म को करने से मना कर दिया। और फिर डायरेक्टर ने एक्शन सीन्स को देखते हुए अजय देवगन को मौका दिया। ये अजय देवगन की डेब्यू फिल्म थी। इसी फिल्म से अजय देवगन ने भारतीय सिनेमा में डेब्यू भी किया था। और एक पॉजिटिव फैक्ट और मज़ेदार बात यह है कि अजय देवगन जी जो थे, उन्हें दो बाइक पर पैर रखकर की गई एंट्री आज भी, बिल्कुल उनकी दो बाइक्स पर जो उन्होंने पैर रखकर एंट्री की थी, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे इंडियन सिनेमा में एक हिस्ट्री है और सबसे पॉपुलर स्टंट्स में से भी एक है। इस स्टंट को खुद अजय देवगन ने अपने पिताजी से, अजय देवगन के जो पिताजी थे उन्होंने डिज़ाइन किया था उनके फादर ने, और उन्होंने सीखा भी था अपने फादर से ही इसे परफॉर्म करना। और ख़ास बात यह है कि उस दौर में धर्मेंद्र ने अजय को इस शानदार डेब्यू के लिए फिल्म फेयर स्टेज पर अवार्ड देते हुए गर्व से उन्हें अपना तीसरा बेटा भी कहा था। और इसी के साथ, इस फिल्म के साथ एक चीज़ और भी जुड़ी हुई है लिसनर्स, जो कि इस फिल्म के गाने। इस फिल्म के गानों की अगर इस फिल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो नदीम श्रवण जी जो थे उन्होंने इस फिल्म में जान डाल दी थी। नदीम श्रवण का जो एक संगीत था, म्यूज़िक था, वही इस फिल्म की कहीं ना कहीं जान था, नहीं जान आज भी है। तुमसे मिलने को दिल करता है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। उस समय हर किसी की जुबान पर ये सॉन्ग्स होते थे, और सिर्फ उस समय नहीं, आज भी हर किसी की जुबान पर ये सॉन्ग्स होते हैं। हर कोई इन सॉन्ग्स को सुनकर कहीं ना कहीं झूम उठता है। और फिर वही 90s के मौसम में हम चले जाते हैं, वही सारी कहीं ना कहीं जो इन फिल्मों से हमारी यादें जुड़ी होती हैं, हम बिल्कुल उनमें खो जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। हम हमेशा कहते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो बिल्कुल ओल्ड इज़ गोल्ड ही है, कभी भी ये चीज़ें पुरानी नहीं होती। और आज भी इनका जो जादू है वो वैसा ही है। तो कहीं ना कहीं जादू बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ा है, और ना ही कभी फीका पड़ेगा। और आइए बात कर लेते हैं उस सॉन्ग की, मैंने प्यार तुम्ही से किया है गाने को लेकर के मज़ेदार फैक्ट्स भी हैं कि इसकी धुन जो थी वो एक ऐसी लोकगीत से ली गई थी जो कि कहीं ना कहीं बहुत सूफी और बहुत धीमी म्यूज़िक का था। और इस गाने ने यूथ्स के बीच में जो नया रोमांस और एक ट्रेंड सेट किया है वो आज भी वैसे का वैसा ही है। भाई सॉन्ग्स के लिए तो हम क्या ही कहें, लिसन सॉन्ग्स तो बहुत बहुत बहुत ज़्यादा हिट हैं इसके। आइए अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को लेकर के, कि हमेशा हम जब भी कोई फिल्म देखते हैं तो वो हमें कोई ना कोई एक मोटिवेशनल मैसेज ज़रूर देती है, बस हमें समझना होता है। क्या है मोटिवेशनल मैसेज इस फिल्म से? तो इस फिल्म में आपने देखा होगा कि इस फिल्म में क्या होता है कि जो बेटा होता है यानी कि अजय देवगन जी, वो अपने पिता अमरीश पुरी के अंडरवर्ल्ड और अपराध के रास्ते से नफरत करते हैं। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अपराध का रास्ता चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। अपनी फैमिली, अपने परिवार को लेकर के आपको हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। भले ही हमें सही रास्ते पर बहुत सारी तकलीफ़ें मिले, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, बहुत सारा स्ट्रगल हो, लेकिन हमें चलना हमेशा सही रास्ते पर ही चाहिए। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि एक बार अगर आपने दलदल में पैर रख दिया तो आप अंदर धंसते ही चले जाते हैं। क्राइम भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर एक बार हम उसमें इन्वॉल्व हो गए तो फिर हम उसमें अंदर होते चले जाते हैं और कभी बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए कभी भी अपने माइंडसेट को क्राइम की तरफ जाने

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्या आप भी

गुंडा से हैं और गुंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गुंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335484। अब बारी है आपकी।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। और आज है हमारा सैटरडे, यानी कि एंटरटेनमेंट वाला डे। और एंटरटेनमेंट वाले इस डे पर हम बात कर रहे हैं कुछ प्यारी प्यारी बहुत ही अच्छी मूवीज़ के बारे में। और आइए अब बात कर लेते हैं उस मूवी के बारे में जो कि रिलीज़ हुई 1993 को। और दोस्ती, और कहते हैं ना जब दोस्ती होती है और दोस्ती जब दुश्मनी में बदलती है, दुश्मनी दोस्ती में बदलती है, कुछ ऐसी ही कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच वाली फिल्मों के बारे में। अब जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है फिल्म संग्राम। संग्राम आप सभी ने देखी होगी। फिल्म जो है वो बहुत ही प्यारी थी। आइए जानते हैं उसके पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी को। फिल्म में अजय देवगन जो थे वो एक शहरी बाबू थे जिन्होंने पहाड़ों पर रहने वाली लड़की यानी कि आयशा जुल्का से प्यार हो जाता है। पर्दे पर अजय और आयशा की मिस्ट्री बेहद पसंद की गई थी। भले ही फिल्म के सेट पर करिश्मा कपूर और आयशा जुल्का के बीच जो है दोस्ती थी, लेकिन उन्होंने अपने काम को कभी भी इसके बीच नहीं आने दिया, यानी कि अपनी दोस्ती अपने काम पर हावी नहीं होने दी और हमेशा प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखा। इस फिल्म का जादू जो है वो तो बहुत बहुत बहुत चला पसंद करने वालों में, लेकिन उससे भी ज़्यादा चली इस फिल्म के सॉन्ग्स। इस फिल्म के सॉन्ग्स को बहुत बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। मैं बता दूं कि इस फिल्म के लिए पहले ममता कुलकर्णी को लीड में रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन उनकी एक पिछली फिल्म की वजह से डायरेक्टर ने उन्हें साइन ना करके, उन्हें यंग कहीं ना कहीं कोई चाहिए था एक, इसलिए उन्हें साइन ना करते हुए उन्होंने राइजिंग स्टार आयशा जुल्का को कास्ट किया। आइए अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में और भी, कि इस फिल्म के जो गाने थे यानी कि जो म्यूज़िक था वो भी नदीम श्रवण ने ही दिया था। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो आज भी 90s के सबसे रोमांटिक और रूहानी गानों में कहीं ना कहीं होता है। कुमार सानू और अलका याग्निक जी की आवाज़ में ये गाना आज भी उतना ही पसंद किया जाता है। मतलब आज भी इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। आज भी इसका जादू, इसका एक जो जुनून हम कहें वो वैसा का वैसा ही है। दूसरी आती है दिल वही कहता है, बेहद प्यारा और मज़ेदार कॉलेज सॉन्ग था जिसने उस टाइम पर वही मज़ेदार इतना ज़्यादा ये चला था। दिल वधु वधु वधु कहता है कि मैं आपसे क्या कहूँ, बहुत ही प्यारे से सॉन्ग्स थे। आइए अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये फिल्म हमें सिखाती क्या है। फिल्म की जो कहानी है वो अमरीश पुरी और डैनी के किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, जो कभी पक्के दोस्त थे लेकिन एक गलतफहमी के कारण उनमें दुश्मनी हो जाती है। ये फिल्म बहुत ही सुंदर और मोटिवेशनल मैसेज देती है कि पुरानी रंजिशें और नफरत केवल विनाश लाती है, प्यार और फॉरगिवनेस से भी कितनी भी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल सही है, आपने देखा ना कि दो बिल्कुल अच्छे और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे जिगरी दोस्त होते हैं, लेकिन सिर्फ उनके बीच थोड़ी सी अनबन हो जाने की वजह से, थोड़ी सी गलतफहमियों की वजह से बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए कहते हैं लिसनर्स कि कभी भी किसी के लिए अपने मन में नफरत रखने से पहले, कोई भी बातें रखने से पहले सोचिए समझिए कि आखिर वो इंसान किस माइंडसेट में था, उसने जो किया वो किस तरह किया, क्या है, पूरी सिचुएशंस को सोच समझ कर ही हमें रिएक्ट करना चाहिए, तब जो बातें निकल कर के आती हैं वो हमेशा सही होती है। ये तो थी 90s की मूवीज़ की बात। आइए अब कर लेते हैं कुछ न्यू मूवीज़ की बात। न्यू मूवी का मतलब है कि अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारी फिल्म जो कि थी हिचकी। अब हम हिचकी को लेकर के बात करेंगे, कुछ न्यू फिल्म्स को भी लेकर के बात करेंगे। हिचकी जो कि 2018 में आई थी, ये फिल्म अमेरिकी मोटिवेशनल स्पीकर ब्रेट कोहेन की कहीं ना कहीं थी, एक उनकी है, बायोपिक है उनकी, जो कि फ्रंट ऑफ द क्लास पर आधारित है। फिल्म में रानी मुखर्जी ने नैना माथुर नाम की एक टीचर की का रोल निभाया था जो टॉरेट सिंड्रोम नाम की न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित होती है, जिसमें इंसान के गले से अनचाही आवाज़ें या हिचकियाँ निकलती हैं। इस फिल्म के पीछे की कहानी भी हम आपको बताते हैं कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट यश राज फिल्म के पास आई और कहानी के हिसाब से ये तय हुआ था कि जो टीचर रखा जाना है वो मेल रखा जाना है, लेकिन निर्माता मनीष शर्मा ने कहानी में बदलाव किया और मुख्य रोल के लिए यानी कि मेन लीड के लिए एक फीमेल टीचर को उन्होंने कवर किया। रानी मुखर्जी को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी उन्होंने तुरंत ही इस फिल्म को साइन कर लिया और बड़े पर्दे पर यह उनका कमबैक था और यह फिल्म लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि रानी मुखर्जी का यह कमबैक पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। अपनी एक्टिंग को एकदम असली दिखाने के लिए रानी मुखर्जी ने स्काइप पर असल ज़िंदगी में बेट कोहेन के घंटों की बात की, वो बेट कोहेन से घंटों बात की, उन्होंने इंटरनेट पर टॉरेट सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के दर्जनों वीडियो देखे ताकि वो बिना किसी ओवर एक्टिंग के किसी भी खामी के कहीं ना कहीं अपनी इस फिल्म को सफल कर सकें और अपनी तैयारियों को उन्होंने पूरा भी किया। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत रहे, जो कि तेरी दास्तां बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग था। और इस फिल्म से ये मोटिवेशनल मैसेज हमें मिलता है कि दुनिया में कोई भी इंसान खराब या लूज़र नहीं होता, बस उसे सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। साथ ही नैना माथुर का किरदार सिखा देता है कि आप अपनी किसी भी फिज़िकल या मेंटल कमज़ोरी को कभी अपनी तरक्की के आड़े मत आने दीजिए, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। कहते हैं लिसनर्स कि हमेशा अपनी कमज़ोरियों पर जो जीत लेता है उसे अपनी ताकत बना लेता है, वो हमेशा आगे जाता है और आगे ही बढ़ता है। एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा था कि जिस दिन हम अपनी कमज़ोरियों पर हंसना सीख लेते हैं उस दिन वो हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। तो आइए लिसनर्स चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं। बस यूं गए और यूं आए, आप भी सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9260 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए अब इसी के साथ कितनी प्यारी प्यारी फिल्म, प्यारे प्यारे सॉन्ग्स पे बात करने के बाद में टाइम हो गया है हमारा आपसे बाय-बाय कहने का। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और हाँ, रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम को सुनते रहिए। इस प्यारी प्यारी प्यारी प्यारी बारिश को एंजॉय करते रहिए। और अब मैं आपसे मिलूँगी आपके अपने पसंदीदा शो में जिसका कि नाम है सुन सहेली। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में, और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना?
3: बिल्कुल, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप सवर जाता है।
2: बात तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है, और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है कि आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी।
3: अरे मतलब बच्चे का भविष्य स्कूल से भी पहले ही शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
3: अच्छा, तो क्या जन्म के बाद?
2: नहीं नहीं नहीं, उससे भी पहले।
3: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, आखिर कब से?
2: विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चे को भी जीवन का मजबूत आधार मिलता है, यानी एक मजबूत शुरुआत होती है।
3: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं, बल्कि माँ के स्वास्थ्य और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल, जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, जब हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की जन्म की ओर ले जाता है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है।
3: और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर जोर दिया जा रहा है।
2: बिल्कुल सही कहा, हाल ही में संपन्न हुए पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर ही नहीं बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
3: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
2: बिल्कुल, और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी साथी टीकन देवी जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
4: धन्यवाद आरजे जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
5: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार।
2: सेहतिया जी, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच में माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण होता है?
4: बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और यह केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोजाना संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है, वह कम बीमार पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल भी कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना ही नहीं रहता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसके शरीर से पहुँचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी बेहतर होगी।
5: यानी माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है।
4: बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसका शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वस्थ और पोषण पर ही निर्भर करता है।
3: अच्छा, यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
4: बिल्कुल सही कहा।
2: सेहतिया जी, आपने पोषक तत्वों की बात की। आजकल एक शब्द और सुनने को मिलता है, एनीमिया, यानी कि खून की कमी। आखिर ये समस्या कितनी गंभीर है?
4: यह बहुत गंभीर समस्या है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता है कि उन्हें खून की कमी है। वो कमजोरी, थकान या चक्कर आने को समान बात समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।
3: ओ, इसलिए हमेशा उन्हें थकान रहती है।
4: बिल्कुल, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के समान लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिला में हो तो जोखिम भी और बढ़ जाता है।
2: और किस तरह का जोखिम?
4: समय से पहले परसों हो सकता है, कम वजन वाले बच्चे का जन्म हो सकता है, और परसों के समय अगर ज़्यादा रक्त स्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
3: अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोरी महसूस करना होता है।
5: यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है। एनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं है बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अगर माँ एनीमिक है तो बच्चे में भी आयरन की कमी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
2: यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं बच्चा भी चुकाता है।
5: बिल्कुल, इसलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच और पोषण संबंधी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
3: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए। क्या तैयारी उससे पहले से भी जरूरी है?
4: बिल्कुल, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है और उसे आयरन की कमी नहीं है तो भविष्य में गर्भावस्था भी अधिक सुरक्षित रहती है।
5: यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है।
4: आपने बिल्कुल सही कहा।
2: हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था। क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध होता है?
4: बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फोलिक एसिड, आयोडीन और DHA जैसे पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही पोषक तत्व आगे चलकर बच्चे की सीखने, समझने, याद रखने और नई चीजें सीखने की क्षमता की मजबूत नींव रखते हैं।
3: और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले 1000 दिन। आखिर इसका मतलब क्या है?
5: पहले 1000 दिन यानी गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल तक का होने का समय। विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर मानते हैं। इसी दौरान बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेजी से विकास होता है। अगर इस पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले तो बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
4: टीकन जी, अब श्रोताओं को ये भी बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
5: सबसे जरूरी चीज है बच्चे के जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं बच्चे के लिए पहली प्राकृतिक सुरक्षा का कवच होता है। ये उसे कई संक्रमणों से बचाता भी है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी या कोई भी दूसरी चीज नहीं देनी चाहिए।
2: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
4: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, फल, अंडा और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
4: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अंडा जहां परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत थोड़ी थोड़ी मात्रा से करें और धीरे धीरे बच्चों की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता बढ़ाते जाएं।
3: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं है, अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिल सकता है।
5: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच ये है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही और अंडा जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात है कि भोजन संतुलित हो और समय पर दिया जाए।
2: सेहतिया जी, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ और पोषित हो।
4: अक्सर हम बच्चों के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
3: और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहे हैं।
5: बिल्कुल सही। परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है कि हम ये सोच बदलें। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने बच्चे, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएगी।
2: और इसमें परिवार के बाकी सदस्यों की भी बराबर जिम्मेदारी है। पति, सास ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
4: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जाँच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती हैं।
3: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने। जब सही जानकारी और सही व्यवहार साथ आते हैं तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।
2: श्रोताओं, आज की इस चर्चा में हमने कई महत्वपूर्ण चीजें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों को अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन फोलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए जरूरी हैं।
3: तो श्रोताओं, हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
5: और मैं सभी बहनों और परिवारों से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सेहत को कभी भी नजरअंदाज न करें, समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
4: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई सवाल हो तो अपने नज़दीकी आशा कार्यकर्ता, एनम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है।
1: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से बस इतना ही। याद रखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
3: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
4: धन्यवाद। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
5: धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही खत्म होता है और जाने से पहले लेंगे हम शपथ।
1: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ।

भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है, तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
3: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
2: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
3: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
2: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
5: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
6: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
5: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
6: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
5: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
8: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
8: आज ही कॉल करें 9260 981 976 9260
9: 9818-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
10: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
9: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM।

बारिश के साथ। भाई बारिश जो है वो बरसने को बेकरार है, मतलब बरसने को बेकरार इसलिए क्योंकि बरस रही है, बरस रही है और बस बरसती ही जा रही है। तो इसी बारिश के साथ में आप सभी को एक बार फिर से, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा शो जिसका कि नाम है सुन सहेली, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत आपके अपने पसंदीदा शो सुन सहेली में। तो लिसनर्स, आप सभी को इस प्यारी प्यारी प्यारी प्यारी भीनी भीनी बारिश के साथ में हो चुकी है दोपहरिया की शुरुआत, सो आप सभी को शुभ शुभ शुभ शुभ दोपहरिया आपके अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका दोनों की ही तरफ से। तो आज है, आप सभी को पता है कि आज हमारा कौन सा दिन है भाई, आज है हमारा सुपर से भी ऊपर वाला सैटरडे, यानी कि आप सभी का फेवरेट गेम वाला डे। और आज के दिन हम आपको सॉन्ग्स ज़्यादा सुनाते हैं और आपसे बातें थोड़ी सी कम करते हैं, क्योंकि एक ही दिन तो होता है ना जब आपको सॉन्ग ज़्यादा सुनने को मिलते हैं और हमारी बातें थोड़ी सी कम। तो आज भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बारिश जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही प्यारा सा मौसम है और इस मौसम के साथ में हम भी आ गए हैं भाई। जैसे होता है ना कि चाय के साथ पकौड़े बहुत ज़रूरी होते हैं, वैसे ही आपके पास भी अगर चाय की आप कप है और आप चाय इंजॉय कर रहे हैं तो उसके साथ सुन सहेली का होना बनता है और सुन सहेलियों में आपकी सहेली का होना तो बनता ही बनता है। तो आइए बढ़ते हैं पोइट्री की तरफ, जो कि हमारा सबसे पहला सेशन होता है। आपको सुनाते हैं आज की पोइट्री। आप सभी सोच रहे होंगे ना कि सुन सहेली है और सुन सहेलियों में सहेलियां जो हैं वो हमारी एक सहेली कहाँ है भाई, यानी कि आपकी अपनी आरजे समता। तो मैं बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैम किसी ज़रूरी काम की वजह से फ़िलहाल थोड़ा सा उन्होंने छुट्टी ली हुई है, क्योंकि उन्हें था कुछ इम्पोर्टेंट काम और वो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी और कह रही थी कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे मेरे लिसनर्स मेरे सहेलियों के साथ जो है रहना है। लेकिन क्या होता है ना लिसनर्स कि कई बार हमें ऐसे काम पड़ जाते हैं जिनकी वजह से हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमें हमारे घर से बाहर जाना ही पड़ता है। तो बस मैम भी गई हैं कुछ ज़रूरी कामों के लिए और बहुत ही जल्द आकर के आपसे फिर से मिलेंगी, लेकिन तब तक के लिए कोई बात नहीं, और हम उन्हें याद करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे और बात करते हुए पोएट्री भी सुनेंगे। तो आइए पोएट्री सुन लेते हैं। वैसे तो आप हमेशा आपकी अपनी और पसंदीदा आरजे समता के मुख से ही पोएट्री सुनते हैं और मैं उन्हें रास्ता देती हूँ, लेकिन पिछले कुछ मतलब दो दिनों से और आज भी मैं मिस कर रही हूँ रास्ता देना थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, इन्हीं यादों के साथ में शुरुआत कर लेते हैं कि रिमझिम बरस रही है बूंदे, रिमझिम बरस रही है बूंदे याद दिला रही है उनकी, रिमझिम बरत रही हैं बूंदे याद दिला रही हैं उनकी। तो करते हैं उन्हीं की यादों के साथ एक प्यारी प्यारी शुरुआत और इन यादों में करेंगे आपकी अपनी आरजे समता की बात, बिल्कुल उनकी बातें करेंगे, उन्हें याद करेंगे, उन्हें याद करते हुए पोएट्री सुनेंगे। तो भाई आज तो आप क्या है ना कि मेरे ही और मुझसे ही पोएट्री सुन के काम चला लीजिए, लेकिन कल से आप सभी को बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मैम आ जाएंगी और वही आपको पोएट्री सुनाएंगी। सो इसी के साथ मैं देख रही हूँ सोनिया तिवारी जी आ गई हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सोनिया तिवारी जी, कैसी हैं आप और बहुत स्वागत है आपका सुन सहेली में। तो आइए बढ़ते हैं पोएट्री की तरफ। रिम झिम बरस रही हैं सावन की ये बूंदें, रिम झिम बरस रही हैं सावन की ये बूंदें, तेरी याद में है दिल खोया राहें तकती हैं आँखें मूंदे, मिट्टी की वो सोंधी खुशबू जैसे तेरा पैगाम लाई है, तन्हाई के इस आलम में बस तेरी सूरत मुस्काई है, बरसात का ये मौसम कहता है अब तुम भी आ जाओ, धड़कन की इस बेताबी को अपनी बाहों से सहलाओ, सच्चे प्यार का वो हंसी लम्हा अभी पाना बाकी है, तेरी रूह में खुलकर मुझे खुद को भुलाना बाकी है, बड़ी शिद्दत से इस दिल ने सिर्फ तुझको ही चाहा है, हर एक गिरती बूंद ने मेरे इस सब्र को सराहा है, यकीन है मुझे टूटेगा एक दिन ये सदियों का इंतज़ार, जब तुम आओगे तो थम जाएगा इस कायनात की रफ्तार, जब तुम मिलोगे तो मिलकर हम इस बारिश को मनाएंगे, भीगे भीगे संग संग मोहब्बत की नई दास्तां बनाएंगे, हाथों में हाथ लिए हम बूंदों की सरगम को सुनेंगे,

हर बरसते कतरे के साथ वफा के नए ख्वाब बुनेंगे, हर बरसते कतरे के साथ वफा के नए ख्वाब बुनेंगे। बहुत ही प्यारी ये पोइट्री जो कि आज थी कुछ मिली जुली हुई। जैसा कि आप सभी को पता है लिसनर्स कि सैटरडे हमारा होता है प्यार वाला डे, यानी कि हम बात करते हैं कुछ लव शव पर। और आज की ये पोइट्री प्यार और बारिश को मिक्स करती हुई थी कि किस तरह जब हम प्यार में होते हैं यानी कि तो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो मीठी मीठी सी सरगम की तरह लगने लगती हैं। तो आइए अब चलते हैं आज के रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ। आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ ये है कि प्यार की डोर बेहद नाजुक होती है और हमारा हम जिनसे प्यार करते हैं उनका रिश्ता, उनसे हमारा रिश्ता भी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार और आपका प्यार वाला रिश्ता हमेशा हमेशा हमेशा अच्छा बना रहे तो इसके लिए एक दूसरे से सिर्फ सच कहना चाहिए और कभी बातें छुपानी नहीं चाहिए। मान लीजिए आपने कभी उनकी सेफ्टी के लिए ही बात छुपाई हो और उन्हें ना बताया हो, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आपको लगता है कि बता देना चाहिए तो आप उन्हें बता दें, क्योंकि रिश्तों में राज नहीं होते, प्यार में राज नहीं होते। कभी न कुछ छुपाना चाहिए और न ही झूठ बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और सही बातों को ही करना चाहिए। यही वो चीज़ है जो हमेशा हमें हमारे प्यार और हमारे रिश्तों के सबसे ज़्यादा करीब रखती है। आइए लिसनर्स अब चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं। बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है सुन सहेली विद आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका के साथ। स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88408123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।

सबका अपना बेहद ही पसंदीदा शो जिसका कि नाम है सुन सहेली। तो बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में हम फिर से वापस आ गए हैं हमारे सुपर से भी ऊपर वाले सैटरडे में, और अब बारी है कुछ ओटीटी सीरीज की। तो आइए जान लेते हैं कि इस वीक कौन सी न्यू ओटीटी सीरीज रिलीज हुई है और उसके बाद हम कुछ शोज के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जिस ओटीटी सीरीज की मैं बात करने वाली हूँ वो है हुंकार। हुंकार जियो हॉटस्टार पे 25 सितंबर को रिलीज हुई है, जो कि एक धमाकेदार कोर्ट रूम थ्रिलर सीरीज है जिसमें कि फातिमा शना शेख की इसमें लीड रोल में। आइए अब बात कर लेते हैं दूसरे की, जो कि है शक। ट्रस्ट नोवन नेटफ्लिक्स पर 24 सितंबर 2026 को आई एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिसमें कि परिणीति चोपड़ा और जेनिफर लीड रोल में होने वाले हैं। मैं बता दूं कि ये दोनों ही सीरीज जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये पूरी की पूरी सस्पेंस और थ्रिलर है। यानी कि जिन्हें भी सस्पेंस और थ्रिलर वाली मूवीज देखने का बहुत शौक है, ओटीटी सीरीज देखने का बहुत शौक है, वो इन्हें जरूर से देखें और इन्जॉय करें। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ और कॉमेडी की तरफ चलते हैं और कॉमेडी की बात करते हैं। तो अगर हम कॉमेडी की बात करें तो अपने सीजन 1 को सफलता से पूरा करने के बाद में सीजन 2 के साथ आ चुकी है ओटीटी सीरीज जिसका कि नाम है बकैती, जो इस बार Z5 पर 25 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। ये पूरी एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो कि बहुत बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आप इसको ज़रूर देखें और इन्जॉय करें। आइए बात कर लेते हैं कि जहाँ बात होती है हंसी की, जहाँ बात होती है मुस्कुराहट की, जहाँ बात होती है कि हमें कुछ कॉमेडी की हल्की सी भी बात होती है ना कि कॉमेडी चाहिए, वहाँ अगर कपिल शर्मा की बात ना हो तो बात कुछ अधूरी रह जाती है। भाई द कपिल शर्मा शो मुझे तो लगता है ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने नहीं देखी होगी या फिर जिसका फेवरेट नहीं होगा द कपिल शर्मा। सभी का फेवरेट मोस्ट ऑफ द फेवरेट शो है द कपिल शर्मा शो, और उसी का सीजन 5 आ रहा है द ग्रेट इंडियन कपिल शो। न्यू नेम है और न्यू सीजन 5 के साथ इस बार ये आने वाला है, जो कि नेटफ्लिक्स पर 26 सितंबर 2026 से शुरू हो चुका है ये, जिसमें कि कपिल शर्मा सुनील ग्रोवर होने वाले हैं और ये पूरा फेस्टिवल थीम के साथ एंटरटेनमेंट लेकर के हाजिर होने वाला है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ये देखने की कि कैसा होने वाला है द ग्रेट इंडियन कपिल शो, जो कि अपने सीजन 5 के साथ इस बार टीवी पर ना आकर के नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। तो फिर क्या ही कहने, क्योंकि जब नेटफ्लिक्स पे आएगा तो फिर तो मज़ेदार शानदार ज़बरदस्त होने ही वाला है। तो आप भी इस ज़बरदस्त शो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए अब बात कर लेते हैं राइज एंड फॉल सीजन 2 की। राइज एंड फॉल ओटीटी सीरीज है जो कि आ चुकी है सीजन 1, लेकिन इस बार ये आई है सीजन 2 को लेकर के, जो कि प्राइम वीडियो पर 26 सितंबर 2026 को ये रिलीज हो चुकी है और इसमें नए सेलिब्रिटीज की स्ट्रेटजी गेम का हिस्सा भी बन रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही प्यारी ये भी होने वाली है, जिसमें कि न्यू सेलिब्रिटीज के साथ हम इसे इंजॉय करेंगे। तो आइए लिसनर्स, ये थी कुछ अपडेट की कौन सी न्यू ओटीटी सीरीज आने वाली है, शुरू होने वाली है और आप सभी इंजॉय करने वाले हैं। अब आइए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं बस यूं गए और यूं आते हैं वापस से फिर से लेकर के कुछ न्यू टीवी शोज को, क्योंकि भाई टीवी शोज जो है ना वो भी नए शुरू ही होने वाले हैं, क्या है ना। तो आइए हम सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और आते हैं सॉन्ग के उस पार कुछ न्यू टीवी शोज को लेकर के, और उसके बाद में होने वाला है लव राशिफल, और लव राशिफल के साथ शुरुआत होगी आपके अपने फेवरेट सेक्शन की, जो कि है गेम। लेकिन गेम सेक्शन की शुरुआत करने के लिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगी लिसनर्स की फटाफट से आए चैट बॉक्स में और अपनी हाजिरी लगाएं और बताएं कि आप आ गए हैं, और फिर हम गेम सेक्शन को शुरू करेंगे और आपको वर्ड्स देंगे। तो आइए फिलहाल सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: अपना बेहद ही पसंदीदा शो जिसका के नाम है सुन सहेली विद आपकी अपनी RJ समता और RJ अंशिका के साथ। तो आइए अब बात कर लेते हैं, अभी तक हमने बात की कुछ OTT सीरीज के बारे में, अब बात कर लेते हैं कुछ TV शोज के बारे में। तो सबसे पहले आज मैं जिन TV शोज के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो कुछ बहुत ही प्यारे होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं नए रोमांटिक शो की जो कि 28 सितंबर को रिलीज़ हो रहा है और 9:30 से आने वाला है, जो कि जियो हॉटस्टार पर शुरू हो रहा है, जिसका नाम है शायद यही है प्यार। शायद यही है प्यार बहुत ही प्यारा एक शो है, आप सभी इसे ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। सेकेंड आ रहा है कि भाई हमारे सभी के खान यानी कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान जी, सलमान खान अपना सबसे बड़ा रियलिटी शो लेकर के आ रहे हैं, जो कि 6 सितंबर को शुरू हो चुका है कलर्स TV पर और जियो हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं आप, जिसका कि नाम है बिग बॉस। बिल्कुल बिग बॉस, और फिर एक बार होगी बिग बॉस की धूम, मचेगी धूम धूम धूम बिग बॉस की धूम, क्योंकि बिग बॉस इस बार जियो हॉटस्टार के साथ कलर्स TV और वूट ऐप पे भी शुरू हो चुका है। फिर वही होगा, बिग बॉस चाहते हैं बिग बॉस की नई नई आवाज़, नए नए कंटेस्टेंट्स और बहुत सारी मस्ती के साथ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। आइए अब चलते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और शोज़ के बारे में, जो कि नया शो शुरू हो रहा है 23 सितंबर से, शुरू हो चुका है 23 सितंबर से, जिसका कि नाम है सयोनी। सयोनी बहुत ही प्यारा सा शो है, सो आप ज़रूर इसे देखिएगा, और स्टार प्लस ने इसे लॉन्च किया हुआ है, आप इसे जियो हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं। इंडिया के टॉप नंबर 1 अनिल कपूर के साथ ये शो होस्ट किया जाना है, जो कि है इंडिया के टॉप 1। ये एक अनोखा गेम शो है जो कि 19 सितंबर से शुरू हो चुका है, आप इसे स्टार प्लस पर या जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। आता है नेक्स्ट शो हमारा, जो कि है ये फितूर तेरा। प्रयागराज की प्रयागराज से में ये शो शूट हुआ है और देव चंद्रमा सिंगा रॉय और ईशा धवन की खूबसूरत रोमांटिक लव स्टोरी है, जो कि दर्शकों के बीच आ रही है, आप सभी इसे ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। बहुत ही प्यारा एक रोमांटिक ड्रामा शो है ये। आइए अब बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से न्यू शोज़ आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो न्यू शो आने वाला है वो है नथ और मन सुंदर, दोनों ही अपने नए सीज़न के साथ इन दिनों दंगल TV के ये दोनों पॉपुलर जो सीरियल्स हैं वो नए सीजन्स के साथ आने वाले हैं, और दिलचस्प ट्विस्ट के साथ भी। सो आप सभी इन सारे ही शोज़ को ज़रूर देखें और अपने वीकेंड को बनाएं धमाल धमाल धमाल धमाल धमाल मस्त वाला, क्योंकि हमारा जो वीकेंड होता है यानी कि छुट्टी का दिन होता है ना, वो हमारे दिल के बहुत करीब होता है। मतलब हमें लगता है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा और कब संडे आएगा या सैटरडे इवनिंग आएगी और हम इन्जॉय करेंगे। आप भी अगर चाहते हैं इस प्यारी सी बारिश के साथ चाय पकौड़ों के साथ अपने वीकेंड को इन्जॉय करना, तो उसे इन्जॉय करने के लिए ये दोनों शोज़ हैं, आप ज़रूर ये सारे ही शोज़ हैं, आप इन्हें देखें इन्जॉय करें उनके साथ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट का फुल फुल फुल फुल पैकेज लीजिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट जो होता है ना वो लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। आइए लिसनर्स, अब इन्हीं बातों के साथ चलते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है जो कि हमारा वेट कर रहा है और कह रहा है कि कब कब कब आप मुझे प्लेलिस्ट करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यूं गए और यूं आए। और इस ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो गेम स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ लव राशिफल को भी बताएंगे। सो आप सभी हो जाइए रेडी, क्योंकि गेम बस स्टार्ट ही होने वाला है। तो आइए लिसनर्स, सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत,

0: देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली, और इसी के साथ प्रीति जी आ गई हैं जो कि हमें बहराइच से सुनती हैं, लिख रही हैं गुड आफ्टरनून आरजेस, गुड आफ्टरनून आपको भी। और मैं प्रीति जी को बता दूं और आप सभी को बता दूं लिसनर्स कि आप सभी का फेवरेट सेक्शन यानी गेम सेक्शन शुरू हो चुका है और हमने फर्स्ट वर्ड भी दे दिया है जो कि आपका सबसे पहला वर्ड है ब। आपका सबसे पहला वर्ड है ब जो कि आपको चैट बॉक्स में दिया जा चुका है। तो आप सबकी नजरें चैट बॉक्स पर और फटाफट से बा वर्ड से आप कोई भी सॉन्ग लिख करके भेजें। तब तक के लिए आइए बढ़ते हैं आज के लव राशि फल की तरफ। तो सबसे पहले आज के लव राशि फल को बताते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए है कि आज साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। अगर कोई पुरानी गलतफहमी है तो आज खुलकर बातचीत करने से वो दूर हो जाएगी। आप पार्टनर के लिए कोई प्यारा सा गिफ्ट भी लेकर जा सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए है कि प्रेम जीवन में नया निखार आएगा। पार्टनर के साथ बेहतरीन और यादगार समय बिताने का मौका मिलेगा। रिश्ते में धैर्य रखें जिससे कि संतुलन बना रहे। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए है कि आज के दिन आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे टाइम बिताने का मौका मिलेगा। आपको अपने पार्टनर को कोई प्यारा सा सरप्राइज देना होगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए है कि आज आपकी राशि में चंद्रमा का प्रभाव जो है वो है, इसलिए आपकी राशि में आज के दिन प्यार जो है वो बना रहेगा, यानी कि पार्टनर के साथ आपका प्यार बना रहेगा। सो भाई ये थी कुछ राशियों के राशिफल जो कि अभी आपने सुने। आइए अब बात करते हैं, चलते हैं हमारी पहली फरमाइश की तरफ जो कि हमारी पहली फरमाइश, आइए देखते हैं किसकी होने वाली है। तो हमारी पहली फरमाइश आज की हमारी पहली गेम वर्ड जो कि हमने दिया था ब, और ब वर्ड से जो सॉन्ग आया है वो आया है प्रीति जी का। तो आइए चलते हैं प्रीति जी के सॉन्ग की तरफ और सुन लेते हैं प्रीति जी का सॉन्ग और उसके बाद में आपसे बातें करते हैं। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि है प्रीति जी का, प्रीति जी का, प्रीति जी का, प्रीति जी का सॉन्ग हम सुन लेते हैं। आइए आप सभी भी सुने और इंजॉय करें प्रीति जी के सॉन्ग।
6: ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए
5: लिसनर्स प्रीति जी के सॉन्ग की तरफ चलेंगे और उसे ज़रूर से सुनेंगे, बट कुछ आई थिंक टेक्निकल इशू हो रहा है। कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू को हम सॉल्व करेंगे और प्रीति जी के सॉन्ग को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं सुन लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि हमने स्पेशली आपके लिए प्लेलिस्ट किया है और इसके बाद में हम सुनेंगे प्रीति जी के सॉन्ग को।

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, लेकिन आइए सॉन्ग को हम नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे प्रीति जी के सॉन्ग को। तो आइए सबसे पहले चलते हैं और सुनते हैं प्रीति जी के सॉन्ग को। आप सभी भी सुने, इन्जॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट फेवरेट फेवरेट वाले शो सुन सहेली में अपने गेम सेक्शन के साथ।

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग साथिया बिन तेरे दिल माने ना, और इसी सॉन्ग के साथ में कर ली है फिर से हमने एंट्री। वेलकम वेलकम वेलकम अ वार्म वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो सुन सहेली विद आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका के साथ, और चल रहा है गेम गेम गेम सेक्शन, और इसी में अभी तक प्रीति जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अब आ चुके हैं धर्मेंद्र मोहन जी जो कि हमें आवाज़ विकास से सुनते हैं, और इसी के साथ प्रमुख कुमार जी लुधियाना से। तो आइए अब हम सुनेंगे प्रमुख जी के सॉन्ग को, लेकिन उससे पहले हमने आपको जो वर्ड दिया था वो था व, और उससे सॉन्ग लिखकर भेजा था प्रमुख कुमार जी ने। तो प्रमुख जी का सॉन्ग हम ज़रूर सुनेंगे, और ये हमारी कोई न्यू लिसनर है आई थिंक श्रीदेवी जी, तो आप अपना आपका भी सॉन्ग ज़रूर प्ले करेंगे, लेकिन इससे पहले हम प्ले करेंगे प्रमुख जी के सॉन्ग को। लेकिन उससे पहले आइए बारी है लव राशिफल की, तो मैं आपको बची हुई राशियों के लव राशिफल बता देती हूँ और फिर हम प्रमुख जी का सॉन्ग सुनेंगे। सिंह राशि वालों के लिए है कि आज आपको अपनी वाणी और गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, बिना सोचे समझे किसी बात पर प्रतिक्रिया न दें, गलतफहमियों को शांत रहकर बातचीत कर सुलझाएं। और इसी के साथ कन्या राशि वालों के लिए है कि पिछले दिनों की कोई बहस या गलतफहमी आज बातचीत करके आप ख़त्म कर सकते हैं, किसी खास मुद्दे पर गंभीर चर्चा होगी जिससे आपका रिश्ता पहले से और ज़्यादा परिपक्व हो जाएगा। और इसी के साथ अब आते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए है कि प्रेम जीवन में सुकून और शांति का माहौल रहेगा, साथी के साथ लंबी और दिल को छू जाने वाली बातचीत आपके मन को और ज़्यादा खुशी से भर देगी। धनु राशि वालों के लिए है कि आज का दिन रोमांच से भरपूर रहने वाला है, पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाने या बेहतरीन समय बिताने का मौका मिलेगा, उसकी ओर से कोई खूबसूरत सरप्राइज भी आपको मिल सकता है धनु राशि वालों के लिए है। आइए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए है कि आज आपको हर महत्वपूर्ण निर्णय में अपने लाइफ पार्टनर की का सपोर्ट लेना होगा, रिश्ते में दिखावे के बजाय सादगी रखें और पार्टनर की राय को महत्व दें। कुंभ राशि वालों के लिए है ये जान लेते हैं कि आज आप अपने पार्टनर के साथ बहुत गहरा और भावात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे, यदि आप सिंगल हैं और अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हैं तो आज कह सकते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए है चंद्रमा की आपकी राशि में होना आपके प्रेम जीवन को शानदार बनाएगा, आपकी परवाह करने वाला रवैया पार्टनर का दिल जीतेगा और वो खुश होकर आपसे अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे। तो ये थी कुछ राशियां और ये थे उनके लव राशिफल। आइए अब चलते हैं प्रमुख जी के सॉन्ग की तरफ, और श्रीदेवी जी मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि अभी हम आपको वर्ड देंगे और फिर आप उससे सॉन्ग ज़रूर लिख करके भेजिएगा। आइए फिलहाल अब चलते हैं प्रमुख जी के सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं आप सभी बने रहिए आपके अपने बेहद ही पसंदीदा प्रोग्राम सुन सहेली में, और सुनते रहिए इन प्यारे प्यारे गानों को और इन्जॉय करते रहिए अपने गेम सेक्शन को।

मंदिर माही पूजा, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और आइए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वर्ड की तरफ और नेक्स्ट वाले सॉन्ग की तरफ, जो कि नेक्स्ट सॉन्ग होने वाला है, जो कि दो लिस्टनर्स की फरमाइश थी, एक धर्मेंद्र मोहन जी की, जो कि हमें आवाज़ विकास से सुनते हैं, ना ना करते प्यार हम किसी से कर बैठे, और दूसरी थी श्रीदेवी जी की, जो उन्होंने कहा था ना ना करते प्यार में कर गई। दोनों लिस्नर्स के सॉन्ग एक ही थे, तो आइए सुनते हैं ये दोनों ही सॉन्ग्स। और आप सभी बने रहिए आपके अपने बेहद पसंदीदा वाले गेम में।

दुनिया में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। तेरी जुस्तजू भी नहीं, एक किसी का सुराग मैं जानता हूं।

ससुराल है, जो कि प्रीति जी का सॉन्ग था और जिसके लिए फरमाइश भी हुई थी कि प्रीति जी का सॉन्ग हम ज़रूर से प्ले कर दें, इसलिए हमने प्रीति जी का सॉन्ग प्ले कर दिया है लिसनर्स। और इसी सॉन्ग के साथ में मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो ज्ञान असली को सुनते रहिए और बारिश को इन्जॉय करते रहिए और इन प्यारे से सॉन्ग्स को भी। बाय बाय, टेक केयर।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में, क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब?
5: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

भाई किसी ने आपकी नींद चुराई हो या ना चुराई हो, लेकिन इस बेमौसम बारिश और उसकी वजह से जाने वाली बिजली ने आपकी नींद जरूर से चुरा ली होगी, क्योंकि भैया सब जगह अंधेरा अंधेरा हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शक्तिमान के अंदर से निकल के कह दिया अंधेरा कायम रहे। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आपकी अपनी आशुमति, और घड़ी में वक्त हो चला है 3:07 बाद स्टूडियो क्लॉक, और ये टाइम है आपके अपने कॉल ट्यून को यानी कि आपके फरमाइशों वाले कार्यक्रम का, जिसमें हम पूरी करते हैं आपकी अपनी फरमाइशें, और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली गोंडा शहर की धड़कन। तो हेलो हाय नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सभी? जवाब दीजिए चैट बॉक्स में, हाजिरी लगाइए अपनी एनएसी के साथ। आइए बढ़ते हैं हमारी पहली फरमाइश की ओर। मौसम है आशिकाना, लेकिन हम गाना सुनेंगे बेहद ही रोमांटिक वाला, क्योंकि हमारे पास जो फरमाइश आई है वो आई है हमारी देवी प्रसाद जी की। तो देखिए, और पूछ पूछ करते हुए आइए बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं तुझको बाहों में भर लिया जिगर फिल्म से। एंजॉय करते रहिए अजय देवगन और करिश्मा कपूर के ऊपर फिल्माया गया गाना उदित नारायण की आवाज में।

और ये फरमाइश थी हमारे देवी प्रसाद जी की। अगली फरमाइश की ओर बढ़ने से पहले आइए चैट बॉक्स के दर्शन करते हैं और आपके मैसेजेस को ले लेते हैं। एंड हमारे साथ जो सबसे पहले मैसेज आया है वो आया है हमारे धर्मेंद्र मोहन जी का, जिन्होंने अटेंडेंस लगाने के लिए अपना हाथ खड़ा कर दिया है। बहुत ही क्लासिक वे होता है ये, एंड इसको ऐसे करने से ना, हाथ खड़ा करने से एक अलग ही ऑरा बन जाता था क्लासरूम में कि देखो हम बोलते भी नहीं है और हमारी अटेंडेंस लग भी जाती है। क्यों? क्योंकि हम हाथ खड़ा कर देते हैं। एंड धर्मेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए। हेलो नति मैम, हेलो, कैसे हैं आप? मिश्रा जी लिख रही हैं, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। उनति जी, गुड आफ्टरनून। धर्मेंद्र जी ने लिखा है आवास विकास से, गुड आफ्टरनून टू यू। बाबू अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदपुर बाराबंकी से और लिखा है गुड आफ्टरनून नति मैम जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन कुछ ही देर तक बढ़िया रहने का टाइम भी है क्योंकि यहाँ से जाने के बाद फिर से वही अंधकार मिल जाएगा। माना कि हम कहा करते थे मजाक मजाक में अंधेरा कायम रहे, लेकिन बिजली विभाग ने और मौसम विभाग ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले ली है मेरी बातों को इस वक्त, और पानी की टंकी कुछ ज़्यादा ही भर चुकी है। इससे पहले कि मेरा शहर बह जाए, कोई जाकर बताए आसमान को कि पानी बंद कर दिया जाए, क्योंकि पानी ही पानी हो चुका है गोंडा में। आई थिंक गोंडा के अलावा भी बाकी जगहों पर भी यही हाल है, सब जगह पानी पानी हो रहा है। हर कोई मुझे लगता है अब नाव लेकर तैरने वाला है। क्या ख्याल है आपका? फिलहाल मेरा ख्याल तो यही है क्योंकि मेरी गली में इस कदर पानी भर चुका है कि अब देखकर लगता है कि कैसे निकला जाएगा। स्विमिंग मुझे आती नहीं है, नाव मैं चला पाती नहीं हूँ, करूँगी तो क्या करूँगी, और इस वक्त मोटरसाइकिल सबकी नाव बन चुकी है। तो यही चाल चल रहा है हमारा। अब आपको एक अच्छे खासे तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप बताइए कि आपके उधर का हाल कैसा है। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना हमारे पास है राजकमल जी की फरमाइश बाराबंकी से, और वो सुनना चाहते हैं तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। एंजॉय करते रहिए लता जी की आवाज में अर्पण फिल्म से। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के आपकी फरमाइश, जो अगेन आप करने वाले हैं कॉल करके 6393316429 पर।

और ये फरमाइश थी हमारे राजकमल जी की। एनएसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स में हमारे अरविंद जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। मुस्तफा जी फ्रॉम सऊदी हमारे साथ जुड़े हैं और लिखा है उन्नति मैम जी, इजाजत हो तो एक गाना हम भी भेज दें। ऑफकोर्स आप अपना गाना भेज सकते हैं। एंड गुड आफ्टरनून टू यू। अमित जी हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते अगली फरमाइश की ओर, जो कि हमारे सुनील जी की फरमाइश पर आ चुकी है। तो इंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली विद राज उन्नति, और ये है आपका अपना कॉलर ट्यून कोंटा।

और ये फरमाइश थी हमारे सुनील जी की, मेरी तरह तुम भी प्यार करके देखो ना, क्या यही प्यार है। 2002 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। अलका जी और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में आप एंजॉय कर रहे थे। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास है आवाज़ विकास से हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर, तो एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM विद राजू रति गोंडा का अपना FM।

और आप एंजॉय कर रहे थे हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, मोहम्मद रफ़ी और सुमन की आवाज़ में शंकर जयकिशन का संगीत था। अप्रैल फूल 1964 में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था। और आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारी सभ्या जी की फरमाइश पर आया है, विवाह फिल्म से वो इंजॉय करना चाह रही हैं, मिलन अभी आधा अधूरा है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत ही प्यारा सा नगमा आपके लिए पेश करते हैं, इंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: भावना भावना, अरे क्या कर रही हो तुम?
1: क्या है
0: वो देखो
2: क्या? और ये बारिश आपके अंदर की भी भावना जगा रही होगी। फिलहाल के लिए रमेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं गरीबी पुरवा से, लिख रहे हैं ये मौसम भीगा भीगा, ये हवा भी ज्यादा ज्यादा है। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। वैसे हवा मुझे ज्यादा ज्यादा नहीं लग रही, ऐसा लग रहा तूफान चला आ रहा है भाई, और इस तूफान को थोड़ा रुकना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मौसम बेमान है, आ रहा तूफान है, इसलिए बच के रहिए, घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास आई है मिश्रा ऑप्टिकल जी की, और ये गाना डेडिकेटेड है उनकी भाभी जी के लिए। तो भैया आइए जरा बहुत ही प्यार के साथ एंजॉय करते हैं नदिया के पार वाली फिल्म से ये वाला गाना। एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के हमारे धर्मेश जी की फरमाइश। तब तक के लिए आप अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429, रिपीट 6393316429।

और क्या बात है भैया, हमारे मिश्रा जी ने अपना ये गाना डेडिकेट किया था अपनी भाभी जी के लिए। एंड इसी के साथ संदीप मिश्रा यातायात, क्या बात है भैया, उत्तर प्रदेश परिवहन हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपका स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप? एंड फिलहाल के लिए आप उस वक्त घर में हैं या बाहर इस कहीं हवा में डोल रहे हैं, बताइएगा ज़रूर। और इन्जॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा। आइए हम इन्जॉय करते हैं हमारी अगली फरमाइश, जो कि बेहद ही रोमांटिक गाने की आई है हमारे पास धर्मेश त्रिपाठी जी की तरफ से। कितना हसीन चेहरा, ये कितनी प्यारी आँखें। अच्छा, देवगन रवीना टंडन पर फिल्माया गया गाना कुमार सानू की आवाज़ में, दिलवाले फिल्म से इन्जॉय करते रहिए। और ये गाना आया था 1994 में, समीर साहब के लिखे बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत।

माँ फरमाइश थी हमारे धर्मेश त्रिपाठी जी की। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है रईस जी की फरमाइश पर। एंजॉय करते रहिए डर्टी पिक्चर से विद्या बालन के ऊपर फिल्माया गया गाना, और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। तब तक के लिए धर्मेश त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत लाइन्स और इतनी प्यार भरे मोहब्बत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।

और ये गाना था हमारे रईस साहब की फरमाइश पर विद्या बालन नसरुद्दीन शाह के ऊपर फिल्माया गया सॉन्ग बप्पी लहरी श्रेया की आवाज में रजत अरोरा के बोल थे और आप एंजॉय कर रहे थे एक बहुत ही कमाल का हाई बीट गाना। वैसे आपको पता है जिसमें इस फिल्म के अंदर जो सिल्क की बात की गई है वो सिल्क एक्चुअल में एक हीरोइन थी बॉलीवुड के अंदर, अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में बताइएगा। और आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। बाराबंकी से बाबू अंसारी जी की फरमाइश आ चुकी है ईमान डोल जाएंगे, मतलब क्या बैक टू बैक हाई बीट गाने की फरमाइश लगातार, और उसके बाद लगातार है हमारे पास कुछ बेहद ही रोमांटिक गानों की फरमाइश। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोंडा।

0: और ये फरमाइश थी हमारे बाबू अंसारी जी की, बाराबंकी से ईमान डोल जाएंगे नहले पे। दिला फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे विनोद राठौड़ और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है उत्तराखंड से और फरमाइश है हमारी रीना शर्मा जी की, एंजॉय करना चाहती हैं, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए ऑफ कोर्स आप सुनते रहिए कॉल ऑफ टीम गुना गुना की अपने एफएम रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 एफएम विद राजयोनति।
1: शाम का हो गुमा

0: तेरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: हाजरीन महफिल, मेरा साथ दीजिए। अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक जान हो जाए।
1: जी मैं शराब नहीं छूता।
2: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
3: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं।
4: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है वरना दुख होगा इसे।
0: हाँ।

रीना शर्मा जी की फरमाइश थी किशोर कुमार की आवाज, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, आपने इंजॉय किया है। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और भैया कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड होते हैं, यानी कि मुझे तो लगता है वो जो ब्लैक एंड वाइट का जमाना था ना, जिसने आपको सोचने की, मोहब्बत करने के न जाने कितने सपने दिखाए हैं और कितने जज्बातों को बयां करने का तरीका बताया है। फिलहाल आप इंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे अगले गाने की तरफ। अगला गाना जो हमारे पास है वो है हमारी ज़ारा खान जी का, और वो सुना चाह रही हैं ऐसी दीवानगी, डेडिकेट किया है उन्होंने अपने देवर जी को। और ये गाना इस कदर खूबसूरत है, आपको भी पता है कि मतलब किस बेखुदी में इस गाने को लिखा गया है। जस्ट इमेजिन समीर साहब ने किस हसीन तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जब कोई मोहब्बत में होता है और आपको एक यूनिक सा नाम मिलता है, किस कदर खुशी होती है कि किसी ने हमें वो नाम दिया है और कितना प्यारा लगता है। तो सुनते रहिए ऐसी दीवानगी, हम मिलते हैं इस गाने के उस पार दीवाना फिल्म से।

हाँ जी, तेरा नाम रख दिया क्या? रख दिया दीवाना। दीवाना फिल्म से आप इंजॉय कर रहे थे। दिव्या भारती और शाहरुख खान पर फिल्माया गया गाना। हम आपको बता दें, आवाज थी हमारे अलका जी की और विनोद राठौड़ की। नदीम श्रवण का संगीत था और हमारे समीर साहब ने लिखे थे बेखुदी में ये खूबसूरत से बोल, जो आपने अभी अभी इंजॉय किए हैं। जारा खान की फरमाइश थी। आइए बढ़ते हैं, तरबगंज से आई हुई फरमाइश हमारे संदीप कुमार मिश्रा जी की, और वो सुनना चाहते हैं मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे। भैया पहले मौसम ही बदल जाए, क्योंकि हम इसके बदलने का इंतजार कर रहे हैं। मौसम नहीं बदल रहा है, बत्ती गुल हो चुकी है और हमारा शहर डूबता जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, है ना? कहिए किसी से कि पानी टंकी बंद करें।

भाई वक्त को मद्देनजर रखते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने पर। ये फरमाइश थी हमारे संदीप कुमार मिश्रा जी की फ्रॉम तरबगंज और आपने इंजॉय किया है। इट्स कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं hey, गोंडा आज गोंडा में अनहोनी हो ही गई है, जगह जगह पेड़ गिर गए हैं। भैया ये बात तो सही है, हवा बहुत तेजी से चल रही है और इसीलिए मैं कह रही हूँ घर के अंदर रहिए बॉस, अपना ख्याल रखिए। हे आज अनहोनी किम होनी, भैया कुछ नहीं होनी, सिर्फ और सिर्फ हम गाने बजा रहे हैं वो भी आपकी फरमाइश पर। आप थोड़ा सा देर आए हैं फिलहाल के लिए। हमारे धर्मेश जी ने लिखा है प्रेम का अर्थ राधा से पूछो, रुक्मणी से पूछोगे तो अधिकार ही बताएगी, जहर का स्वाद शिव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृत ही बताएगी। क्या बात है, फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है निब्बा जी की फरमाइश पर, सो एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे लेकर की अपनी आखिर की दो फरमाइश। रोशनी जी का मैसेज हमें आ चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी के साथ रीना शर्मा जी ने भी हमें अपनी स्माइली वाला फेस भेज दिया, ऐसे ही मुस्कुराती रहिए आप, मुस्कुराती हुई बेहद प्यारी लगती हैं।

और ये फरमाइश थी हमारे निब्बर जी की। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है मनीष शर्मा जी की फरमाइश, लैला को भूल जाएंगे। इसी के साथ आखिरी फरमाइश होने वाली है हमारे मुस्तफा जी की, जो हमें सऊदी से सुन रहे हैं। तो इंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश थी हमारे मनीष शर्मा जी की, इसी के साथ आइए ट्यून कहते हैं हमारी आखिरी फरमाइश, और बेहद ही खूबसूरत फरमाइश है आखिरी, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है एक मुलाकात जरूरी है सनम, एंजॉय करते रहिए। एंड ओके 10 मिनट ही मिलता है 3 से 4 के बीच में, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इट्स कुमार जी, एंड आई होप आप सभी को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाज़त, वक्त है आपसे विदा लेने का, और जाने से पहले आपके लिए छोटी सी अनाउंसमेंट है जो मैं करना चाहूँगी, वो ये है कि भैया बहुत तेज़ हवाएं और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अगले 2 घंटे यानी कि 6 बजे से पहले वाला टाइम, 4 से 5, 5 से 6 आपके लिए जो रेडियो पर होने वाले प्रसारण हैं उनको कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाएगा। तो आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे, लेकिन 6 बजे से आप वापस से जुड़ जाइएगा इन्जॉय करने के लिए आपका गोंडा मैसेज मसाला, जो वैसे ही कंटिन्यू होगा जैसे होता आया है। तो फिलहाल आप रखिए अपना ख्याल, और ये गाना डेडिकेट करते हैं हम उन सभी को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे इट्स कुमार जी और रोशनी रावत जी भी शामिल हैं, गुलफशा जी जिनकी आज फरमाइशें नहीं आई है, अमित जी, और वो सारे लिसनर्स जो हमें लगातार सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से फ्रीक्वेंसी से एप्लीकेशन के जरिए, लेकिन अपनी फरमाइशें हम तक नहीं भेज पा रहे हैं। फिलहाल इंजॉय करते रहिए, फिर मुलाकात होगी, रखिए अपना ख्याल, कल मिलते हैं आपसे 2 से 5 यानी कि संडे के स्पेशल वाले प्रोग्राम में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा।

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवा

चार बोतल वोडका का मेरा रोस्टा, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। चार बोतल वोडका का मेरा

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ, जैसे देर हो गई मुझे आने में और आपको पता है कि बारिश के मौसम ने क्या हाल कर डाला है इस जहाँ का। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, एंड सब लोग कहाँ हैं भाई? टावर तो बिल्कुल ठीक ठाक है, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं भाई? अर्नब तूफान ने तो सबके मतलब होश उड़ा रखे हैं। आप लोग बताइए आप लोग का क्या हाल है, क्या आपको भी इस तूफान ने परेशान किया है? तो भाई सेफ्टी के साथ सबसे पहले तो घर पे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जब ज़रूरत हो तब ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ आप लोग मतलब घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, ठीक है? और इसके अलावा मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग मतलब ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, कल सुबह तक दिख रहा है कि मौसम ख़राब रहेगा। कल सुबह मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे तो लग रहा है कि अभी तो उम्मीद यही है कि मौसम गड़बड़ी रहेगा। तो इस ख़राब मौसम का हाल क्या ही कहें भाई, ये बंगाल की खाड़ी से उठा तूफ़ान जो है, इसके बारे में मैं जितना भी बताऊं उतना कम ही होगा। तो आज प्यार मोहब्बत की बातें करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस तूफ़ान को लेके थोड़ा चर्चा कर ली जाए, और थोड़ा सा मैं भी आप लोग को सतर्क करना चाहती हूँ, एक्टिवेट करना चाहती हूँ। वैसे तो न्यूज़ खोल खोल के आप लोग बैठे होंगे, और इस चक्रवात को लेके आप लोग के मन में जो कहते हैं ना कि जगह जगह पेड़ गिरा हुआ है, एक जगह नहीं दो जगह नहीं हर जगह ये न्यूज़ आ रही है कि मतलब मौसम बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। ऐसी स्थितियों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि पेड़ के पास अपनी गाड़ियाँ या आसपास पेड़ हो तो वहाँ बिल्कुल भी शय ना लें, क्योंकि बारिश काफ़ी समय से होने की वजह से जो जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं और पेड़ कभी भी कहीं भी गिर सकते हैं, ठीक है? तो इस बात को आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में जहन में रखने की ज़रूरत है, और हो सके तो मतलब ना ज़रूरत हो तो बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये तूफ़ान सिर्फ तूफ़ान नहीं बल्कि ये एक ऐसा चक्रवाती तूफ़ान है जिसने भारत के कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। और मौसम विभाग की तरफ से जो हमें कहते ना कि

सतर्कता की जो जानकारी दी जा रही वो यही है कि ये कमज़ोर होकर डिप्रेशन में बदल चुका है। ठीक है, कम दबाव वाले जो क्षेत्र हैं उसको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। उसमें टॉप पे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, और यहाँ मूसलाधार बारिश का सिलसिला पिछले 3 दिनों से चालू हो चुका है। तट से ये टकराया है 23-24 तारीख में, यानी कि रात को उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण उड़ीसा के तट पर कलिंगपट्टम के पास टकराया और उस वहीं पे लैंडफॉल हो गया। हवा की गति जो है 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिससे झोंके जो हैं वो 75 और 76 किलोमीटर प्रति घंटे जो रफ्तार से पहुँच रहे हैं। और प्रभावित क्षेत्र की बात करूँ तो आप लोग लगातार देख रहे होंगे, तो जितने भी तटीय ज़िले हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है, और ख़ासतौर पर उड़ीसा के जो भद्रक में मछुआरों का जो एक कहते हैं ना कि पूरा का पूरा जो खेमा निकल जाता था, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। 5,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और यहाँ यूपी के भी वाराणसी पूर्वांचल सहित अपना हमारा गोंडा भी रेड अलर्ट पे है, और बहुत सारे क्षेत्र हमारे यूपी के जो येलो अलर्ट पे हैं। ऐसे में जो नुकसान पहुँच रहा है वो है किसान की, धान की फसलों को, सब्जियों की फसलों को, जो खड़ी फसलें हैं वो जलस्तर के वजह से सड़ सकती हैं। और वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी इस बारिश ने लगातार अपना जो इफ़ेक्ट है वो बना के रखा है। तो चलिए इस बारिश को भाई एंजॉय ना करिए, बस सतर्क रहिए, और लाइट नहीं है तो बिजली का भी कम से कम प्रयोग करिए। चीज़ों को थोड़ा सा मतलब नियंत्रित रखिए, जो स्थिति है आज है कल, मतलब परेशानी इसीलिए आती है कि अभी कुछ समय बाद परेशानी दूर हो जाएगी। तो चलिए हम थोड़ा सा बारिश को डेडिकेटेड गाना सुन लेते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी ही देर में, और आप लोग भी अपनी जो बारिश की धुन है उसे बरकरार रखिए। लेट्स लिसन दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: भाई ये बारिश हमारा कुछ नहीं लगती है, फिर भी हमारा सब कुछ परेशान करके बर्बाद करके रख रही है। बिजली कहीं गिर रही है, कहीं पेड़ गिर रहे हैं और बहुत ख़राब स्थिति है। बिल्कुल यहाँ का मौसम बिल्कुल अच्छा है, ये कहाँ पेड़ गिर रहा है। श्री देवी कहाँ पे हैं आप जरा ये बताइए, आप कहीं नेपाल वेपाल में तो नहीं है? नेपाल में तो और हालत ख़राब थी कुछ दिनों पहले। फिलहाल यहाँ पे तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है गोंडा शहर में, अगर आप कहीं बाहर से हैं तो आप ज़रूर बताइए। फिलहाल श्रीदेवी तो स्वर्ग में होंगी। एनीवे चलिए हम डॉक्टर लव का इस्तकबाल करते हैं कुछ ही मिनटों में, और आप लोग बताइए आप लोग के पास क्या है। वैसे मेरे पास तो 89.6 FM है, और आप लोग के पास आपकी समस्या का हल निकालने के लिए कोई है तो वो है।
1: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास?
2: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।

0: जैसा कि आप सभी के पास मैंने कहा कि क्या है, तो आपने बताया कि आप लोग के पास डॉक्टर लव है, तो हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर लव आपकी खिदमत में। डॉक्टर लव, शुभ संध्या, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया, शानदार।
0: तो मरीजों के लिए क्या, मतलब बारिश के मौसम में क्या आप दिशा निर्देश देना चाहेंगे?
1: बस जितना भीग सकते हैं उतना भीग लें।
0: गुड इवनिंग दीपक, कैसे हैं? और आपने बिल्कुल सही कहा कि बारिश नहीं हो रही लखनऊ में, लेकिन यहाँ गोंडा शहर का हाल बहुत बेहाल है। और हाँ, शायद लखनऊ रेड अलर्ट के अंडर नहीं आ रहा है, येलो जोन में है, इस वजह से वहाँ बारिश नहीं हो रही। बाकी यहाँ तो कल क्या परसों सुबह 5 बजे शुरू हुई बारिश, और अभी तक मैं महसूस कर पा रही हूँ कि बारिश रुकी नहीं है। हल्की हुई है फिर तेज़ हुई है, हल्की हुई है फिर तेज़ हुई है, बहुत तेज़ हुई है, बहुत हल्की हुई है, पर बारिश रुकी नहीं है। आज डॉक्टर लव साहब आए हैं, आप बिल्कुल आए हैं, डॉक्टर लव साहब आपकी खिदमत में ना आए ऐसा कैसे हो सकता है, आंधी आए तूफान आए, लेकिन डॉक्टर लव जरूर आएंगे आपके सामने। तो जिसको जिसको जो जो सवाल करना है डॉक्टर लव से, बिल्कुल चैट रूम में कर सकते हैं, कोई भी परेशान ना हो। और हमारा जो रेडियो टावर है वो बहुत ही स्ट्रांग है आप लोग के भरोसे की तरह, तो हम लोग नहीं हिलने वाले। दीपक जी का एक सवाल है, दीपक जी बिल्कुल, और आपकी एक कविता भी पढ़ना चाहूँगी इस बारिश के मौसम पे, मैं चाहूँगी कि आप कुछ ज़रूर लिखें और उसे पढ़ के हम लोग भी एकदम खुश हो जाएं। मेरे पास मोबाइल है जिसका चार्जिंग बड़ी जल्दी ख़त्म हो रही है, इसका इलाज तो डॉक्टर साहब के पास नहीं होगा, ये बात मैं ठोक कर बोल सकती हूँ। फिलहाल श्रीदेवी जी आप ये बताइए, आप तो कह रही हैं कि आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही, तूफान नहीं आ रहा, तो आपके यहाँ तो लाइट होनी चाहिए ना, जैसा कि आपने कहा। बाकी डॉक्टर लव साहब बताएंगे आपके मोबाइल को कैसे चार्ज किया जाए। वैसे आप बोनी कपूर से बात करेंगे, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, और आपके मोबाइल चार्ज करने की बात छोड़िए, आपको नया आईफोन 18+ दिला देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर लव श्रीदेवी के लिए, उनके मोबाइल की चार्जिंग कैसे पूरी हो सकती है?
1: जी हाँ, वो अपने मोबाइल को जो है जहाँ बारिश अगर हो रही है तो वहाँ पर छोड़ दें, या जो है वो तालाब में।
0: और मैंने सुना है बारिश होती है तो बिजली कड़कती है, तो बिजली से बिजली बना के आप क्यों नहीं मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, ये भी एक आसान तरीका है।
1: आसान तरीका है भी।
0: दीपक जी आपका क्या सवाल है जरूर बताएं, आपके सवाल को सुनने के लिए हम बेताब हैं। आपको कौन सा सवाल है? आप तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, और प्रेम क्या मैं कहूँ, मतलब दिल जान सब उसके नाम आपने कर रखी है, तो आप किस लिए परेशान हो रहे हैं जल्दी बताइए, आपके पास कौन सी समस्या? ऑफ कोर्स कोई ऐसी समस्या होगी जो आपकी पत्नी से तो कतई जुड़ी नहीं होगी, इतना मोहब्बत करते हैं आप। लिंक है मैडम जी, क्या है लिंक है, लिंक है मैडम जी, ये क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं आप, कहना क्या चाहती हैं, आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रही हूँ मैं। हमारे साथ गीता जी भी हैं और बाकी सारे लोग भी हैं, तो भाई एक कप चाय के साथ फिलहाल तो कुछ ज़रूरी है, तो जैसा कि गाने में भी कहा गया है, कवि का अभिप्राय है, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी प्रसाद में पी लेने दो, भरी प्रसाद में जितनी चाय पी जाए उतना कम होगा, आज बिजली नहीं है कल रात से। हाँ ये बात सही कह रही गीता जी, हम लोग के इधर भी मतलब बारिश की वजह से बिजली नहीं है, पर हाँ आसमानी बिजली जरूर दिखाई दे रही है, आप बताइए। नागेंद्र हमारे साथ हैं, भारती नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप, हाल क्या है आपका? अरविंद गुड इवनिंग, धर्मेंद्र गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो भाई सबके सवालों के जवाब मिलेंगे, चलिए एक और बारिश वाला गाना आपके नाम कर देते हैं। और तो गाना कौन सा सुना जाए ये तो मैं सोच रही हूँ, लेकिन चलिए एक गाना है जो मेरा बहुत दिनों से सुनने का मन था, उसी को प्ले करती हूँ आप लोग के लिए, सुन के बताइए ये गाना कैसा है।

0: सो भाई ये बारिश और इस बारिश के साथ ये म्यूजिक कहीं ना कहीं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसका इंतज़ार हर कोई करता है। और यहाँ बारिश नहीं हो रही है, मैं पंजाब के भटिंडा शहर से हूँ। हाँ, तो फिर आपको मोबाइल चार्जिंग की क्यों प्रॉब्लम हो रही है? श्रीदेवी जी आपने ये बताया नहीं। तो दीपक कहते हैं, प्रेमिका और पत्नी में ज़्यादा प्यार कौन करता है किसी लड़के को? क्या सवाल है डॉक्टर लव, इसका उत्तर बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे डॉक्टर लव। किसी लड़के को प्रेमिका अधिक प्रेम करती है या पत्नी? बायस्ड मत होइएगा, सही उत्तर दीजिएगा।
1: नहीं, सही उत्तर देने वाली बात ही नहीं भाई। ये तो शादी के पहले जो होती है वो प्रेमिका ही प्रेम करती है, और विवाहोपरांत जब वो पत्नी हो जाती है तब पत्नी वाला वो प्रेम रह नहीं जाता है प्रेमिका वाला। वो बाजीराव मस्तानी अगर मूवी देखी होगी आपने, तो मतलब रासलीला करने वालों से मोहब्बत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो घर की लीलाएं कहीं ना कहीं छोटी हो जाती हैं, रासलीला बड़ी हो जाती है, तो प्रेमिका ही ज़्यादा प्यार करती है एकदम।
0: ओ मतलब आप अगर एक इंसान को कहें कि हाँ ये ज़्यादा या ये कम, तो आप प्रेमिका को कहेंगे वो ज़्यादा प्यार करती है और पत्नी कम। हाँ। तो 30 पत्नियों का प्यार आपको कम लगता है अपने लिए, और एक पत्नी, एक प्रेमिका अगर आपको प्रेम करती तो वो 30 पत्नियों से कहीं गुना
1: कहीं ज़्यादा लगता है।
0: तो भाई डॉक्टर लव की बात को सुन के दीपक जी आप ये बात का अंदाज़ा लगाइए, पत्नी से अगर आपने प्रेम किया था तो वो भाई आपका प्यार ज़्यादा ही होगा। अगर आपकी शादी पत्नी से हुई है, मतलब किसी और से हुई है, प्रेमिका कोई दूसरी थी, तो आप सोच सकते हैं थोड़ा। सो दीपक लिखते, मैं ज़माने की ठोकर ही खाता रहूं। क्यों भाई, खाना भी खा लिया करिए। मैं ज़माने की ठोकर ही खाता रहूं, तुम ज़माने को ठोकर लगाती रहो। मैं ज़माने की ठोकर ही खाता रहूं, तुम ज़माने को ठोकर लगाती रहो। जिंदगी के कमल पर गिरूं उस सा रोश की धूप बन तुम सुखाती रहो। कंटकों की सजाती रहो राह तुम, कंटकों की सजाती रहो राह तुम। मैं उसी पर रोज जाता रहूं, मैं इसी राह पर रोज जाता रहूं। तुम स्वयं को सजाती रहो रात दिन, रात दिन मैं स्वयं को जलाता रहूं, रात दिन मैं स्वयं को जलाता रहूं। बेटा राम सा हो प्रेमी कृष्ण सा हो, लेकिन पति सबको शिव जैसा चाहिए। क्यों?
1: नहीं, पत्नी राम के जैसा भी चाहिए भाई।
0: नहीं, पति की बात की जा रही है कि बेटा राम सा हो प्रेमी कृष्ण सा हो, लेकिन पति सबको शिव सा चाहिए। क्यों?
1: हाँ, क्योंकि मतलब अपनी मस्ती में मस्त रहे और क्या।
0: इसका उत्तर यही है कि भाई वो इंसान जो पूरी दुनिया को अपनी पत्नी के लिए भस्म कर सकता है, वो भगवान शिव ही है। पूरी दुनिया के लिए तो पत्नी को छोड़ने वाले तो भगवान राम भी रहे हैं, तो छोड़ने वाला पति नहीं चाहिए। प्रेमी भाई, प्रेमिका के लिए दूसरे के पास भागने वाला पति नहीं चाहिए। भले भगवान कृष्ण की कितनी रानियां थी, पर वो प्रेम राधा से करते थे, तो ये वाला सिस्टम भी लड़कियों को थोड़ा कम ही पसंद आता है। तो ऐसा चाहिए जो लॉयल हो, जिसकी प्रेमिका पत्नी सिर्फ एक, नहीं तो फिर हम साधना में अनेक। मतलब भगवान शिव ने जब माता सती को खोया, उसके बाद वे साधना में चले गए, वो नहीं, उन्होंने आँखें नहीं खोली। उसको बोलते हैं एक पति का प्रेम। एंड यस, इस मामले में तो भगवान शिव ही सबको चाहिए।
1: बिल्कुल सही है।
0: भले भंवर सब डालें राम और सीता की तरह, पर शादी कंटिन्यू सीता और राम की तरह नहीं, सबको शिव और पार्वती की तरह चाहिए। अखंड सौभाग्य दैट कंटिन्यू टुडे, मतलब आज भी, मतलब लोग उदाहरण देते उन्हीं की पूजा करते हैं, एंड दैट्स ट्रू। तो भाई सवाल सबके आज बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, कोई बस खतरनाक सवाल पूछने वाला नहीं है, और पूछें तो ज़रूर पूछें। एक जनाब ने, डॉक्टर साहब, सवाल किया था कि उनकी पत्नी ने उन्हें सब्जी लाने भेज दिया है, लेकिन पूरे शहर में वो घूम चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने जो सब्जी मांगी वो उनको मिली नहीं।
1: कौन सी सब्जी मांगी?
0: मशरूम।
1: मशरूम, क्या बात है। तो आप रूम में जाइए और मश कर दीजिए, वो मशरूम बन जाएगा। मैश कर दीजिए, रूम जाइए, एकदम गद्दे को, चद्दे को एकदम छीछा लेकर कर दीजिए। उन्होंने कहा देखो, हमने रूम को मैश कर दिया है।
0: डॉक्टर साहब देखिए, आपकी 30 पत्नियां हैं, तो आप खेदे जाएंगे, तो आपके पास एक मकान से निकले दूसरे में पहुंच गए, उनकी एक ही शादी हुई है, तो ये बारिश के मौसम में अगर खेदे जाएंगे तो सड़क पे भी पैठारी नहीं है।
1: नहीं पैठारी है सनातन, मतलब कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर दुकानें हैं और आगे जो है वो लगा हुआ है।
0: अरे हाँ, तो जानवर तो आपके घर पे आके सो रहे होंगे, गाय कुत्ता बिल्ली इन लोग को भी आश्रय चाहिए।
1: हाँ मतलब वो लोग भी सोएंगे, उन्हीं में से हम भी एक हो जाएंगे, ये भी एक हो जाएंगे।
0: वैसे आपका क्या, आपके तो एक नहीं 30 मकान है, कहीं भी जाके अपना गुजर बसर कर लेंगे, वो भी 56 भोग मिलेगा आपको खाने को। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। और भाई सवालों के जो कहते हैं ना कारवा आज कम दिख रहे हैं, भाई किसी का मोबाइल नहीं चार्ज होगा, पहली बात तो यही है। एनीवे मैं बारिश के गाने आप लोग को सुनाने में कोई कमी नहीं करने वाली, और चलिए सुनते हैं। मतलब मुझे बड़े अच्छे अच्छे से गाने आज दिखाई दे रहे हैं, मतलब दिखाई क्या दे रहे हैं, मन कर रहा है कि सुनाती जाऊँ, लेकिन सुन के बताइए ये वाला गाना कैसा है। सबको मन करता है कि कुछ नया सा सुने, तो आज ये नया सा सुन के बताइए कैसा है।

0: डॉक्टर लव के लिए खास आपने क्या लिख दिया है भाई, पढ़ना पड़ेगा कि कभी कभी जिंदगी कितनी उलझ जाती है कि एक और जिंदगी लग जाती है सुलझाने में। नहीं मालूम होता किस और जाना है, क्या मिलता नहीं क्या मिलता कहीं, मंजिल का ठिकाना है नहीं सुलझती उलझने जिंदगी की। क्या उम्र की पूरी उलझनों में बिताना है, क्या होता होगा एक बेहतर जीवन की परिभाषा, क्या होती होगी एक बेहतर जीवन की परिभाषा, कि क्या जीवन बस यूं ही जीते जाना है। है दुखों से घिरा ये मेरा मन, क्या दुखों का मेरा मन ठिकाना है। हाँ क्या बात है, आप किसी को सुन लेते हैं ये आपकी भल मन साहत है, आप किसी को समझ लेते हैं बिना किसी स्वार्थ बिना किसी संबंध के, उनकी कही बात आपके मन तक पहुंच जाती है और वो बिना कहे ये आपके अंतःकरण में छुपा ईश्वर का सबसे अनुपम उपहार है। इससे सुंदर इससे अद्भुत इससे अनुकरणीय कुछ और नहीं, और यही नेकी है। जो ऐसे होते हैं उनको ही कोई सुनने समझने वाला नहीं होता, फिर भी तो निस्वार्थ भाव से लोगों को मुस्कान देते रहते हैं। ऐसे लोगों को सुनिए और समझिए, इसी दुनिया में दुनिया का अंतिम सुख निहित है। क्या बात है, बड़ी मतलब आपने ज्ञान की बातें बता दी दीपक जी, मज़ा आ गया जान के। और जुगल गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, और आपके यहाँ बारिश भी हो रही है या वैसे तो आप भी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी चक्रवात का पूरा पूरा मतलब अर्णव चक्रवात छाया हुआ है, मतलब नाम क्या सोच के रख लेते हैं कोई और, मतलब हमेशा चक्रवातों का नाम लड़के, हाँ लड़कों की बात अगर की जाए तो वो चक्रवात इधर उधर फैलाते हैं। कहते हैं बारिश की बूंदें जब खिड़की पर दस्तक देती है ना, तो मौसम सिर्फ बाहर नहीं बदलता, कुछ अंदर भी बदलता है, हमारे भीतर भी। फिलहाल मेरे भीतर तो यही बदला है कि मुझे चाय पीने की तलब हो गई है, किसी किसी की पकौड़े खाने की तलब होती है, किसी किसी की बारिश में गाड़ी धोने की तलब होती है। डॉक्टर लव, आपकी तलब क्या होती है जब बारिश आपके घर के सामने दस्तक देती है, तो आप क्या सोचते हैं कि छत पे पानी भर जाएगा, या मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा, या मैं अपने मरीजों को कैसे देखूंगा, मतलब दिमाग में क्या आता है आपके?
1: आता बहुत कुछ है, लेकिन वो चूंकि संपूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए हम सोचते हैं चुपचाप बारिश की बूंदों को देखते रहिए और ये पता नहीं कब फिर नसीब में आए।
0: नहीं ऐसा तो मतलब मुझे नहीं लगता किसी इंसान का इतना फ्री स्केड्यूल होगा सिवाय रात के। दिन में जब भी बारिश होगी दिमाग में ये ख्याल होता है अच्छा ये कर लेना चाहिए, चाहे मतलब जैसे कुछ भीग रहा हो तो उसको कवर कर देना चाहिए, या कुछ भीगने के लिए छोड़ देना चाहिए। जैसे आजकल मेरे छत पे एक केले का पेड़ लगा हुआ है जिसको मैं बहुत छुपा के रखती हूँ क्योंकि बंदर तोड़ के खा जाते हैं, तो बारिश को देखा मैंने कहा केले को थोड़ा बाहर रख दिया जाए पेड़ को, जिससे उसको बढ़िया बारिश मिल जाए, एक को बारिश में नहाया नहीं था वो। तो ऐसा मतलब दिमाग में कोई ख्याल, बाकी चाय पीने का तो ख्याल हरदम आता ही रहता है,
1: पकौड़ी का भी ख्याल रहता है,
0: कुछ लोग का तो मोबाइल चार्ज करने का ख्याल आता होगा कि कहीं लाइट ना चली जाए, कुछ लोग मोटंकी में पानी भरने लगते होंगे कि भाई भर लो पानी, इससे पहले पता ना चले कि कहीं मोटर चली जाए कि लाइट चली जाए। और आज गोंडा शहर का यही हाल है, आधे घरों में पानी नहीं है।
1: पानी नहीं है तो बात सही
0: है। बारिश जली जल चौर है,
1: पीने लायक नहीं
0: है। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, वो वाली हाल है। फिलहाल कोई बात नहीं, यहाँ घरों में सबके हैंडपंप वगैरह लगे हैं, पर बहुत सारे जो मार्केट एरिया में घर है उनके घर में बहुत दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे बोरिंग नहीं हुई है घरों में लोगों के।
1: हाँ।
0: ज्यादातर वो सप्लाई के पानी पे निर्भर करते हैं, सप्लाई का पानी आता होगा 2-3 घंटे भर लेते होंगे, फिर उसके बाद तो टंकी तो मोटर चलेगी तभी भरेगी,
1: तभी भरेगी टंकी, तब चल सकती है जब बारिश नहीं, बारिश ना हो मतलब बिजली रहे, क्योंकि पेड़ वगैरह कई गिर गए हैं तो लगता है समस्या तो होगी।
0: तो डॉक्टर लव ये बताइए, बारिश के मौसम में क्या मोहब्बत का रोग लगता है लोगों को या नहीं? कहते हैं बारिश हर मतलब दर्द की दवा है।
1: मतलब बारिश और साथ में संगीत, ये दोनों हो तो मोहब्बत जागती है।
0: अच्छा आप लोगों से बताऊं मैं, अगर आपके घर में बारिश हो रही है, ऐसे तो बारिश आज हो रही है, आपके दिमाग में ये ख्याल हो रहा होगा लाइट कब आएगी, क्योंकि गोंडा शहर वाले बहुत विधिवत परेशान है, लेकिन बाहर वालों की बात करूंगी जहाँ पे कम बारिश हो, जैसे लखनऊ में भी बारिश नहीं हो रही, तो बारिश होने के बाद आप खिड़की के पास बैठे हैं, आपके हाथ में कप चाय और आप अकेले हैं, आपके दिमाग में अगर किसी की छवि आ रही है और बहुत जैसे कहते हैं ना कि करारे तरीके से आप किसी को याद कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए ये शो आपके लिए ही है। क्यों डॉक्टर लव
1: जी? बिल्कुल,
0: बारिश के मौसम में अगर किसी की याद है और किसी से आप बात नहीं कर सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है आपके मोबाइल में रिचार्ज ना हो या उसके मोबाइल में रिचार्ज ना हो, संभावनाएं कोई हो सकती है,
1: बहुत
0: ब्रेकअप हो गया हो या होने वाला हो या उसकी शादी हो गई या ना हुई हो, कोई भी स्थिति हो, तो फिर उससे बात कैसे करें बारिश के मौसम में? नहीं, बात करनी ही है, कंडीशन है,
1: तो वाइब्स पहुंचानी चाहिए अपनी बात तक, वो आपको याद कर लें और वही फोन कर लें। हाँ, मतलब अगर दिल से याद किया जाए तो,
0: मतलब अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं बारिश और पहला प्यार बहुत बहुत परेशान करता है, क्योंकि पहला प्यार से जुड़ी होती है बारिश, और जब भी बारिश होती है तो पहला प्यार याद आता है। मतलब ये क्या बकवास है? दूसरे प्यार में क्या कभी बारिश नहीं होती?
1: नहीं होती, बताइए, ये तो ये तुम भी नहीं समझ पा रहे, हमको तो बारिश से प्यार का कोई लेना देना बहुत खास नहीं आता,
0: लेकिन लोग कहते हैं,
1: लोग कहते हैं।
0: हाँ,
1: उन लोगों ने फिल्म देख ली होगी ना बारिश और वो टाइगर श्रॉफ वाली, तब से ये चलन बढ़ गया होगा, जब भी हम मिलेंगे तो बारिश होगी।
0: अच्छा,
1: हाँ, फिल्म है बागी शायद, यहाँ तक क्या गाना है
0: वो छम छम छम वाला गाना जिसमें श्रद्धा कपूर है,
1: एक्ट्रेस का तो नाम नहीं याद है, लेकिन ये है कि जब वो मिलते हैं तो बारिश होती है शायद, हाँ श्रद्धा कपूर ही है, वही होंगे।
0: अच्छा देखिए डॉक्टर लव, देखिए पिछले 2-3 हफ्तों से आपके यहाँ क्लिनिक पे देख रही हूँ कि कुछ कॉमन बीमारी वाले लोग आ रहे हैं, जैसे कोई प्यार में पड़ गया है, उसको अपने प्यार को हैंडल करना नहीं आ रहा है, आए दिन झगड़े हो जा रहे हैं। दूसरा है कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाई में पढ़ के, प्यार में पढ़ कर पढ़ाई भूल गए हैं, घर पे जूते चप्पल बरस रहे हैं, ये वाले मरीज आजकल थोड़े कॉमन हो गए हैं, बहुत ज्यादा आने लगे हैं, क्योंकि आजकल अंडर एज वाला जो प्यार है वो पढ़ाई को थोड़ा सा दूर कर रहा है। ऐसे में क्या करें? पढ़ाई छोड़ दें सीधे, प्यार इज इम्पोर्टेंट, प्यार हरदम नहीं मिलता है, पढ़ाई तो आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट ने जो नई शिक्षा नीति उसके तहत एज बाउंडेशन तो हटा ही दिया है।
1: हाँ।
0: कोई भी बंदा जाके दूसरी कक्षा में एडमिशन ले सकता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में।
0: हाँ। और तीसरी समस्या ये है कि मतलब इंसान रिप्लाई का इंतजार करते करते 2-2 दिन बिता दे रहा है, इंतजार कर रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैसेज कर रहा है, फोन नहीं कर सकता क्योंकि मोबाइल लड़की की मम्मी का है, तो ये समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसके लिए मतलब क्या किया जाए? हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे चैट रूम में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन अपनी बात खुल के कह नहीं पाते, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जान पहचान के कुछ तो रिश्तेदार भी दिख जाते हैं, तो फोन करके अलग से बताते हैं, कहते हैं नाम मत बताइएगा, समस्या जिक्र कर दीजिएगा ऑन एयर।
1: हाँ, दिक्कत यही है कि मतलब मोहब्बत कीजिए, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, मतलब उसकी कोई।
0: और सबसे खतरनाक वाली बीमारी ये है डाउट वाली बीमारी। डाउट मतलब कि आप किसी को पसंद करते हैं, आपको ये जानना है कि वो आपको पसंद करती है कि नहीं, और इस चक्कर में आपने ना तो पढ़ाई की ना तो प्यार ही किया, क्योंकि आप एक के उम्मीद में है कि शायद वो आपसे प्यार करती है।
1: दुविधा में दोनों गए माया मिली न था।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। दीपक लिखते हैं कि दीपक बहुत कुछ आज लिख रहे हैं, क्या बात है। दीपक लिख रहे हैं मेरी गोंडा वाली दोस्त का नाम मुझे सबसे पहले याद आता है क्योंकि मैंने उसको पहली बार बारिश में देखा था उसके घर के सामने से गुजरते समय। क्या बात है, मैं जूनियर था और वो हमारी सीनियर। यही सुनने के लिए बाकी था। क्या बात है, क्या बात है,
1: बिल्कुल क्या बात, बहुत शानदार बात।
0: तो फिर याद ही करिए, क्या कर सकते हैं, अब तो आपकी शादी हो चुकी है आपकी पत्नी से, याद करने के सिवा कोई बात बाकी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। तो डॉक्टर लव बताइए, इनको तो कोई समस्या नहीं, इनकी शादी हो चुकी है, इनको बारिश के समय कोई याद आता है?
1: आपको ही याद आता है, वो लड़की याद आती है।
0: तो ऐसे में क्या करें ये?
1: हम ऐसे में क्या करें, शादी हो चुकी है तो पत्नी के साथ जीवन निर्वाहन करें, क्योंकि वो तो आने से रही,
0: क्योंकि याद तो बस याद रह जाती है।
1: याद
0: चलिए सुन लेते हैं, क्योंकि बहुतों को बहुतों की याद आ रही होगी इस बारिश के मौसम में।

0: डॉक्टर लव, ये गाना तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बेस्ड रहा और लोगों को मुझे लगता है कि उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेडिकेटेड लगा होगा, क्यों?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम निसंदेह।
0: और दीपक जी ने फिर कुछ लिखा है, और क्या लिखा है चलिए पढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे विजय जी भी हैं, जिनको आपने कई बार संतुष्ट किया है, उनके घर के मामलों को, मसलों को सुलझाया है। तो आज हम एक और बात पढ़ेंगे। लिख रहे हैं दीपक जी, आज मैंने माँ के मंदिर में खुद से पूछा कि मैं क्यों रो दिया तुझे खो देने के ख्याल से। मैंने पाया कि ये जो सीने में दिल धड़कता है, उसमें पहले कोई और बसता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ तू ही बसता है। तू कभी छोड़ दे मुझे तो फिर उन धड़कनों में बाकी क्या बचता है। मैंने पाया मेरी आँखों में जो सपने हैं, उनकी वजह है तू। मैंने पाया कि ये जो पूरी दुनिया है, उसमें तू मेरी दुनिया है। तू कभी दूर हो जाए मुझसे, इस ख्याल ने मुझे जाने कितना रुलाया है। मत पूछो कि हमने तुम में ऐसा क्या देखा है तुम्हारे साथ से। ओहो क्या बात है। राकेश जी लिख रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर का मजा लें, ना कजरे की धार ना मोतियों का हार, सुना दीजिए। कैंडल लाइट तो वही करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे जब लाइट नहीं रहेगी। डिबरी भी हो सकती है, हमारे यहाँ तो गाँव में तो डिबरी जल रही होगी। लालटेन लाइट भी डिनर किया जा सकता है, मतलब कैंडल क्यों? आप लोग पता नहीं क्यों बाहरी बातें करने लगते हैं। हमारे यहाँ दिया सलाई का भी प्रयोग किया जाता है। मैं तुम्हें गुलाब नहीं दूंगा, गुलाब एक दिन सूख जाएंगे। ये बात भी सही है,
1: सही बात,
0: किफायती बात करते हैं प्रेमी लोग आजकल। मैं तुम्हें गुलाब नहीं दूंगा, गुलाब एक दिन सूख जाएंगे। गुलाब का पौधा दीजिए और संभवतः सूख जाएगा प्रेम उसके साथ। मैं तुम्हें दूंगा सम्मान और इज्जत जिसकी तुम हकदार हो। मैं तुम्हें दूंगा शब्द जो हमेशा रहेंगे, हरे रहेंगे, और प्रेम जो सदैव जीता रहेगा। और फिर मैं तुम्हें दूंगा एक पौधा मतलब पौधे वाली लाइन है, जो एक दिन पेड़ बनेगा, पेड़ जो जीवित रहेगा आने वाली सदियां। एक इस तरह मैं तुम्हारे हाथों में दूंगा एक पूरा सभ्यता प्रिय। हमारे प्रेम के मर्ता से अधिक मैं और क्या दे सकता हूँ तुम्हें। वाह वाह, क्या बात लिखी, क्या बात लिखी। और देखिए इसी दौरान एक कॉल भी आ गया, जानते हैं कौन है। हेलो हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हेलो, नेटवर्क समस्या की वजह से मुझे लग रहा है हमारे कॉलर की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाई। जेके शाह हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं जेके जी? आपका नाम सुनते ही जेके सीमेंट की याद आ गई, कोई बात नहीं। वैसे घर में सीमेंट बढ़िया लगवाया करें, क्योंकि बारिश के मौसम में सीलन आने का खतरा रहता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। लिखते हैं हमारे दीपक जी, दीपक जी ने आज बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, लिखे हैं कि कुछ प्रेम मिलने के लिए नहीं होते, वे होते हैं साथ चलने के लिए। वे वनवास काटते हुए अनकहे और अनसुने रहने के लिए होते हैं। वे एक दूसरे के पूरक होते हुए भी अधूरे रहने के लिए होते हैं। वे मात्र यही संतोष कर पाते हैं कि वे किसी के हृदय में हैं, वे किसी के मस्तिष्क में हैं, कि कोई उनकी सुधियां बुनता है, कि कोई उनके लिए अनायास मुस्कुराता है या नम आंखें फेर लेता है। कुछ प्रेम उत्सव नहीं मना पाते, पर वह उपवास रखते हैं और दो घुट प्रेम उन्हें जीवित रखता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।

0: शुभकामनाएं और आपका बच्चा आगे चलकर डॉक्टर बने।
1: दो कप चाय भेज दिए गीता जी ने, डॉक्टर लव के लिए भेजिए। मनु जी यहाँ पे नहीं है, वो 10 बजे आएंगे, उनके लिए 10 बजे चाय भेजिएगा। फिलहाल आरजे बीना तो अपनी चाय उठा के पी लेंगी, और डॉक्टर लव के नाम से तो चाय आई नहीं, तो डॉक्टर लव आप चाय मत पीजिए, आपके लिए चाय नहीं आई है। तो चलिए देखते हैं किसका काल है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हेलो, सच में इस बारिश ने हमारे कॉलर्स को एक दूसरी ही पगडंडी पे पहुंचा दिया। हेलो अन्य कॉलर से बात करने का समय।
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
2: दीपक यादव मैम।
1: दीपक जी कैसे हैं?
2: ठीक है मैम।
1: हाल चाल बढ़िया
2: जी मैम।
1: बारिश का मौसम आपके यहाँ कैसा है? बढ़िया की
2: मैम, बहुत बारिश हो रही है मैम।
1: बहुत बारिश हो रही है, परेशान है
2: जी मैम, लाइट भी नहीं आ रही है।
1: हाँ, ये पूरा शहर अंधेरे में है फिलहाल, जनरेटर जहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ पे उजाला है फिलहाल। डॉक्टर जी से क्या सवाल करना चाहेंगे?
2: जी मैम।
0: जी नमस्कार। हेलो,
1: अगली आवाज डॉक्टर लव की, जो आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं, मतलब आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। डॉक्टर लव, हमारे साथ दीपक यादव जी हैं, इनकी समस्या क्या है ये तो खुद ही बताएंगे।
0: जी नमस्कार। हेलो,
1: मुझे लग रहा है नेटवर्क ने इनको भी परेशान कर डाला, और देखिए फोन कट कर डाला। तो आपके असुविधा के लिए हमें खेद है, क्या करें, हम भी चाहते हैं आप लोगों से बहुत सारा बात करना। मैम, मैं अनाउंस कराना चाहता हूँ मेरे बेटे का बर्थडे। दीपू जी देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि कॉल पे बात हो पाएगी क्योंकि नेटवर्क काफ़ी इश्यू चल रहा है। आप नाम बता दीजिए, मैं यहीं से अनाउंस कर देती हूँ, और डेफिनेटली आपके बेटे के लिए मैं बर्थडे सॉन्ग प्ले करके जाऊँगी। डॉक्टर लव वाला आपने गाना सुना है? अरे चलिए कॉल पर पहले बात कर लेते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो
0: हेलो,
3: हाँ मरुआ, सलाम अलैकुम
0: जी। वालेकुम सलाम।
3: आप घर पे बैठा है तो हमका लगाया था, हमका नहीं तो दूसरे में बात हो रहा है, सेंटर वाला डॉक्टर लव वाला बात हो रहा है।
0: डॉक्टर लव
3: और बढ़िया है
0: जी, बढ़िया।
3: आवाज तो कट रहा है।
0: हाँ कट तो रहा है।
3: और अच्छे हैं आप?
0: जी जी बहुत बढ़िया।
3: पानी तो तबाही मचाया है।
0: पानी तबाही मचाया है।
3: लाइट भी नहीं चौबीस घंटा से।
0: लाइट भी नहीं है तो
3: हमारा तो मोबाइल के पूरा रिचार्ज सब लग सब जुदा है, सब चार्जिंग लगाया है हमारे यहाँ।
0: चार्जिंग लगाया है, आपने जनरेटर चला रखा है?
3: हाँ इन्वर्टर है ना मसाला।
0: अच्छा, मतलब इन्वर्टर आप कभी बैठा नहीं?
3: हाँ सब मोहल्ला टोला रिश्तेदार नातेदार से लगाया तो
0: हम भी चले हैं अपना वाला आके क्या चार्ज कर लें।
3: इसको बोर्ड नहीं खाली है।
0: अच्छा, एक भी बोर्ड नहीं खाली है।
1: देखिए डॉक्टर लव, आपको बता दिया गया है बोर्ड नहीं खाली, आप मत लेके
3: सब चार्ज लगा के बोर्ड नहीं खाली मोबाइल से पूरा।
0: तो हम पहुँचेंगे तो एक बोर्ड आप खाली करवा दीजिए।
3: बिल्कुल बिल्कुल आइए, तो आपके लिए बिल्कुल बोर्ड खाली है स्पेशल।
0: हाँ स्पेशल बोर्ड में।
3: और बताइए।
0: जी जी, और सब ऊपर वाले की दुआएं हैं।
3: थोड़ा माँ तबियत गड़बड़ है एक हफ्ता से।
0: जी आपकी तबियत में क्या हुआ बताइए, हम सही करते हैं।
3: बुखार पकड़ ली ना।
0: बुखार ने आपको पकड़ लिया?
3: बुखार को हम पकड़ेंगे अब।
0: हाँ बस यही कहने वाले थे कि बुखार अगर आपको
3: बुखार को पकड़ के डॉक्टर लव को दे देंगे।
0: जी बस आप पकड़ लेकर चले आ जाएंगे कि बुखार है,
3: पकड़ के आपको दे देंगे।
0: उसके बाद हम बुखार को सुखा
3: देंगे। उसको डंडा से मारना।
0: अरे नहीं, मोहब्बत से मारेंगे, डंडे से
3: मारना।
0: मैं डंडे से नहीं मारूंगा, मैं मोहब्बत से मारूंगा।
3: हां लाठी से मारना।
0: मैं आपको बुखार आग लेकर चले आएंगे।
3: दवाई इलाज चल रहा है?
0: हाँ
3: अच्छे हैं, थोड़ा ठीक है।
0: नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल बुखार को पकड़ लेकर मेरे पास
3: दे देंगे पकड़ के आपको दे देंगे
0: बस
3: को कल दे देंगे पकड़ के दे देंगे
0: जी जी शनिवार को

0: शनिवार को भी देखेंगे।
1: कल तो आप रहेंगे तो आ रहे ना?
0: नहीं, हम तो कल शनिवार को रहते हैं।
1: तो अगले शनिवार को आपको देंगे पकड़ के।
0: जी जी, तो पकड़ के हमको दे दीजिएगा, उसको जाल में बंद कर दीजिए।
2: मतलब उसका कुछ कर दीजिए कि किसी के पास वो जाए ना।
1: हाँ, किसी के पास बुखार जाए ना। आप पकड़ के दे दे, किसी को बुखार जाएगा नहीं। ठीक है तो रखे।
0: जी जी,
1: हाल चाल भैया ठीक है?
0: जी जी भैया।
2: तो डॉक्टर लव, आपके जो श्रोता लोग हैं आपको बहुत चाहने लगे हैं, और देखिए मौसम गड़बड़ है, और इसी के साथ हम चाहेंगे कि हमारे लिसनर दीपक जी, दीपू जी हैं, इनके बेटे के लिए बर्थडे सॉन्ग प्ले कर दिया जाए। उन्हें नंबर दीजिए, बेटे जी को खूब सारा आशीर्वाद। 6393-3164-29 ये नंबर है। और देखिए अब समय हो चुका है तो अभी आपके कॉल पे बात नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ आपके मुन्ने के लिए हम गाना प्ले करके जा रहे हैं, और ये गाना आपके बेटे के बर्थडे के लिए स्पेशल सॉन्ग फिल्म है मुसाफिर 1957 की फिल्म से, बहुत प्यारा सा गाना आपके बेटे के लिए। डॉक्टर लव, मैं चाहूँगी कि आप भी दुआएं दे दें
0: बच्चे। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: और इसी के साथ हम लोग भी अपनी वाणी पर लगाते हैं विराम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाले रेडियो स्टेशन 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

तारा। हंसे तो भला लगे, रोए तो भला लगे, हमको उसके बिना कुछ भी अच्छा न लगे। हंसे तो भला लगे, रोए तो भला लगे।

एक दिन वो माँ से बोला क्यों फूंकती है चूल्हा। एक दिन वो माँ से बोला क्यों फूंकती है चूल्हा, क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें। क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: डिलीशियस
3: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
3: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवर नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।

0: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट IPPBonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: अरे सुना?
4: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
6: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें, पानी को गर्म करके पिएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
4: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
2: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
0: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ओ आर एस और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध

0: मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो कनेक्ट 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल। और आज तो भाई शनिवार की शाम है, शनिवार की शाम होती है खास। इसलिए होती है खास क्योंकि इसमें गजलें हमारी होती हैं और गीत आपके होते हैं। तो शनिवार के इस प्यारे से कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है। और जी हाँ, गजल हमने आपको सुना दी है और बात के इंसान बन के आया है और आ भी जाओ कि जिंदगी कम है। भाई चंदन दास की खूबसूरत सी आवाज़ में ये प्यारी सी गजल। जी हमारे साथ बहुत से लोग उपस्थित हैं। महेंद्र दीपेन जी हैं कौने स्टूडियो में, जी हाँ मैं हूँ स्टूडियो में, आप कैसे हैं? और जेके शाह जी हैं, वेलकम सर जी, बहुत बहुत शुभ संध्या। हाँ क्या बात है भाई, हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता श्री के गुप्ता जी जो हमको सुनते हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, वो उपस्थित हैं। और गुरु जी दिल से प्रणाम, आपको भी प्रणाम। के गुप्ता जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और लिखा है नाइस गज़ल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हाँ क्या बात है, क्या बात है भाई के गुप्ता जी, बहुत ही शानदार गज़ल की आपने फरमाइश की है। और आप तो हम चाहेंगे कि भाई ये जो कार्यक्रम है गज़लें हमारी गीत आपके, तो गज़लें तो हमने आपको सुना दी हैं और अब चाहेंगे कि भाई कुछ आपके गीत से, कुछ आपका गीत हमारे गीत से मिले। मैंने आवाज़ आपको दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ आपको दी है बड़े नाज के साथ, आप भी आवाज़ मिला दीजिए मेरी आवाज़ के साथ। तो चलिए भाई चलते हैं गज़लों की अगली श्रृंखला में। और तब तक भाई उम्मीद करेंगे कि आपका दूरभाष क्रमांक वही है 6393 यानी 6393 3164 29। और इस दूरभाष क्रमांक पर हम आपके गीतों की करेंगे प्रतीक्षा। तो जी गज़लें हमारी गीत आपके। फिलहाल चलिए आपको एक प्यारी सी गज़ल और सुनाते हैं और इस गज़ल के बाद फिर हम उम्मीद करेंगे कि आपका कोई गीत हम तक पहुंचेगा। तो चलिए भाई सुनवाते हैं आपको ये प्यारी सी गज़ल और मिलते हैं आपसे संगीत में अंतराल के उस पास। सुनते रहिए और रेडियो कनेक्ट 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी किसी भी मोड़ पे जब भी ये जिंदगी तेरी, किसी भी मोड़ पे जब भी ये जिंदगी तेरी, तेरा मजाक उड़ाए शराब पी लेना। वास्तव में कहीं कहीं देखा जाए ना तो कहीं सुना था मैंने कि दर्द ने जन्म दिया है इन मैकदों को, इन मैखानों को, दर्द ने जन्म दिया है इन मैकदों को, इन मैखानों को, दर्द ने जन्म दिया है इन छलकते पैमानों को। अरे अगर दर्द न होता तो न ये बोतल होती, न होती शराब, न तुम पीते, न हम पीते, न कहलाते खराब। जी हाँ, हमारे साथ भाई जेके शेख जी हैं, जेके शाह जी हैं। वेलकम सर जी, मकदम करते हैं आपका भी जेके शाह जी। और जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिल में मिले। हमारे साथ के कृष्णा भी हैं और काका जी हमारे साथ हैं। भाई शुभ संध्या काका जी, आपको कैसे हैं आप? जी हाँ के गुप्ता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप बताइए आप कैसे हैं? और सर जी आज फ़ोन के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं आ रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आवाज़, इसीलिए जो कार्यक्रम हमारा है गज़लें हमारी गीत आपके, तो शनिवार की ये शाम होती है जिसमें से एक गज़ल हम सुनाते हैं फिर एक गीत आप सुनाते हैं। चूँकि नेटवर्क की थोड़ी समस्या है इसलिए शायद हमको आज गज़लें ही सुनानी पड़ेंगी, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप में से कोई गीत सुनाए हमको। और धर्मेंद्र मोहन जी हैं, मनु सर जी गुड इवनिंग, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जी बिल्कुल केके गुप्ता जी कहते हैं किसी भी मोड़ पे जब भी ये जिंदगी तेरी। जी हमारे साथ दीपू पांडे जी हैं, जी हाँ, और उनके सुपुत्र हैं निष्कर्ष पांडे जी, और आज उनका जन्मदिवस है। भाई रेडियो गणेश 89.6 FM परिवार निष्कर्ष जी को बहुत बहुत शुभकामना देता है उनके उज्ज्वल भविष्य की, और ईश्वर करें वो कामयाब हों और एक नई ताबीर लिखें, एक नया इतिहास लिखें। और मिर्ज़ा गालिब दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। तो भाई चलते हैं, और अब एक गज़ल हो गई है, गज़ल के बाद फिर भाई गीत बजना चाहिए, लेकिन चूँकि नेटवर्क की समस्या हमारे श्रोतागण बता रहे हैं कि ये लगातार बनी हुई है, और फिलहाल तो नेटवर्क छोड़िए यहाँ तो बिजली की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है, और बहुत अच्छा है आप सभी लोग अपने अपने घरों पर बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं भाई गज़लों की ओर, और आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल, और लौटते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। चले भाई जे के शाह जी, आपको ले चलते हैं गज़लों की दुनिया में, बहारों की दुनिया में, इस प्यारी सी गज़ल के साथ। सलमा आगा की ये प्यारी सी आवाज़ है, और उनके साथ देखिए कौन है, ये तो आप गेस कर पाएंगे। फिल्म का नाम अर्जू, और महेंद्र कपूर की प्यारी सी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिला दी है सलमा आगा ने, क्या बात है। किशोर कुमार आशा भोसले जी हाँ, ये वो गीतकार हैं जो आपको यहाँ मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं इस प्यारी सी गज़ल की ओर, और मिलते हैं आपसे इस संगीत में साल के उस पार।

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

थी। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहां हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। वास्तव में जो इंसान का माजी होता है, उसका अतीत होता है, उसका बीता हुआ कल होता है, और वो कहीं ना कहीं उसके सामने आ ही जाता है। मैं साथ भाई बहुत अच्छी बात है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। और जो पल होते हैं जिंदगी के, कुछ पल ऐसे होते हैं जो बहुत खास बन जाएंगे। अगर हम और आप ये सोच कर बैठे होंगे कि वो पल आएगा तब हम खुशी मनाएंगे, तो शायद ये सही नहीं है। आप खुशी मनाना शुरू कर दीजिए, वे पल अपने आप आ जाएंगे। नागेश्वर धाकर जी मेरे साथ उपस्थित है भाई, गुड इवनिंग आरजे मनु सर जी, गुड इवनिंग नागेश्वर जी। आज भाई गज़लें हमारी, गीत आपके हैं, और आपके गले से हमने कभी कंठ से कोई गीत सुना नहीं, तो चाहूँगा एक बार ज़रूर कि आप 63-93-31-34-29 आपका ही दूरभाष क्रमांक कभी इस पर डायल कीजिए, और अपनी मधुर सी आवाज़ में कोई प्यारा सा नगमा सुनाइए हमको। जी हाँ, धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ आवाज़ विकास से, मनुष्य जी नमस्कार। नमस्कार, तन्हा ना अपने आप को पाएंगे जनाब, मेरी गज़लों को साथ ले जाइए जनाब। क्या बात है, क्या बात है भाई। और नागेश्वर जी को बहुत पसंद आया, क्योंकि गुप्ता जी हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स के साथ, बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल, दिल की आरज़ू थी कोई दिल रुबा मिले, क्या बात है। और नागेश्वर धाकर जी को खैर खाना पकाने वाली मिल जाएगी। और इसके पश्चात आइए हमारे साथ अनिल शास्त्री जी, दादा चरण स्पर्श करते हैं, और कैसे हैं आप, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आवाज़ आपकी सुननी है, अभी कुछ समय शेष है हमारे पास, अगर आप नेटवर्क में हैं तो बिल्कुल भाई आइए और अपनी मधुर आवाज़ से। जी हमारे जे के शाह जी हैं, मनु जी की आवाज़ इस प्रोग्राम में जाते नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों कहा जाता है ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर्स, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है शाह साहब। तो वो गज़लकार वो जो गाते हैं, वो आप लोग गाते हैं, हम लोग तो बस गुनगुना लेते हैं और आपकी बात को पूरा कर देते हैं। शानवी तिवारी जी को देख पा रहा हूँ भाई, हो सकता है आसमान वाले ने चाहा तो कल शानवी जी को हम लोग लाइव देखेंगे, 1-2 ओपन माइक, अपना टैलेंट अपना एफएम, बहुत ही प्यारी सी बच्ची हमारी। प्रणाम करते हैं बेटा, आपको कैसी हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। और भाई के गुप्ता जी फिर कहते हैं कि किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, बहुत ही प्यारी सी गज़ल। लिखा है कि आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राहत इंदौरी, आपने जब नाम ले लिया उनका तो मुझे उनकी, मतलब उनका जो व्यक्तिगत जीवन है और जो वो लिखते हैं वो बहुत शानदार लिखते हैं। मतलब उन्होंने जब अपने ज़िंदगी की शायरी की शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि झील अच्छा है, कमल अच्छा है, जाम अच्छा है। झील अच्छा है, कमल अच्छा है, जाम अच्छा है, तू बता तेरी आँखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। और जब 40 साल की ज़िंदगी गुजार दी उन्होंने, तो उन्होंने लिखा कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। एक एक करके मुझसे सब कुछ हो गया रुखसत, एक एक करके मुझसे हो गया सब कुछ रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। जो जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। तो आज का ये तूफान देखकर मुझको राहत इंदौरी साहब की वो गज़ल याद आएगी कि आखिरी वास्तव में जो
तूफान होता है वो इंसान की आंखों में होता है। जी हाँ, हम ऐसा गीता जी हैं, प्रणाम करते हैं आपको, चरण स्पर्श उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगी, आपको भी शुभ संध्या। और सर दो तीन गज़ल लगाकर घर जाइए, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। जी हाँ, क्या बात है, क्या बताएं, चूँकि 10:30 तक हमको यहाँ पर रहना ही रहना होता है, तो फिर आप लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है, तो फिर डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है। जी हाँ, तो जहाँ 10:20 सही वहाँ 10 मिनट और 10:30 सही। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद अगर रहेगा, दुआएं रहेंगी, तो फिर बहुत बड़ी बात कही आपने और इतना ध्यान दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी हाँ, हमारे यहाँ भाई हमारे निष्कर्ष पांडे जी का आज बर्थडे है, हमारे बहुत ही प्यारे मित्र हैं, उनके बेटे भी हैं। और चलिए भाई, इस मौके पर चूँकि आज प्यारा सा मौसम भी है, इस मौसम पर है वो, तो चलिए रेडियो गणस्थली 89.6 FM एक गीत प्रस्तुत करता है उनके लिए, और आइए इस प्यारे से गीत का आनंद उठाते हैं, उसके बाद फिर लौटेंगे गजलों की दुनिया में। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है घोड़ा शहर की धड़कन। फिलहाल निष्कर्ष पांडे जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये प्यारा सा गीत रेडियो गणेश 89.6 FM परिवार उनको प्रस्तुत करता है।

0: तुम्हारे पास कोई कॉल भी आ चुकी है। जी हाँ, आज का कार्यक्रम होता है गजलें हमारी और गीत आपके। तो भाई गजलें भी हो गई, हमारा बर्थडे भी हो गया, अब देखते हैं हमारे साथ कौन है जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और आवाज़ उन्हीं की होगी, मैंने आवाज़ आपको दी है बड़े नाज के साथ, आप भी आवाज़ मिला दें मेरी आवाज़ के साथ, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: ये आवाज़ तो गोरखपुर से दादा चरण स्पर्श।
1: खुश रहिए, कैसे हैं आप?
0: जी आशीर्वाद आपका, बहुत शानदार, बहुत स्वस्थ, जिंदाबाद।
1: तो आज मैं एक छोटा सा दो अंतरे का गाना है
0: जी जी
1: रफी साहब का
0: जी,
1: कोशिश करूंगा। चराग दिल का, चराग दिल का।
0: और ये मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मतलब लाइट
1: नहीं है।
0: तो इसलिए
1: जब यही सुना दूंगा,
0: आर्टिफिशियल लाइट नहीं है तो दिल का चराग जला देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जला देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जी दादा बिल्कुल।
1: तो अगर आप कहें तो मैं शुरू करूं?
0: जी निसंदेह निसंदेह।
1: चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है। चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। कहाँ से लाऊं वो रंगत गए बहारों के, कहाँ से लाऊं वो रंगत गए बहारों के। तुम्हारे साथ गई रोशनी नजारों की।

0: दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है, चराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है। सितारों तुमसे अंधेरे कहाँ संभलते हैं, उनके नक्शे कदम पे चराग जलते हैं, उन्हीं को ढूंढ के लाओ बहुत अंधेरा है, चराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। थैंक यू सर।
1: बात है दादा, क्या बात है। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, तो आपने प्रकाश का बहुत अच्छा सा पैगाम भेजा। इसके लिए रेडियो वन इसलिए 89.6 एफएम परिवार आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद और चरण स्पर्श आपको।
0: थैंक यू सर
1: जी। और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल दोपहर में 1 बजे आपसे मिलेंगे आप ही के कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो 89.6 एफएम, ये गोंडा ही नहीं अब बन चुकी है हमारे और आपके दिल की धड़कन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।
2: रात के 10:30 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम ज्ञानस्थली रेडियो। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और आज की कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आपने कभी किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर आधी रात के बाद अकेले किसी ट्रेन का इंतजार किया है? अगर किया है तो आपने शायद महसूस किया होगा दिन में लोगों से भरा रहने वाला वही स्टेशन रात में कितना अलग लगता है। खाली बेंचेस, बुझती जलती लाइट्स, दूर तक जाती हुई 2 पटरियां और बार बार ये एहसास कि शायद आप वहाँ अकेले नहीं हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन की है जहाँ केवल 5 प्लेटफॉर्म थे, लेकिन आधी रात के बाद कभी कभी 6ठे प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट होती थी। और कहते हैं जिस यात्री ने उस अनाउंसमेंट का जवाब दे दिया वो सुबह की पहली ट्रेन कभी नहीं देख पाया। जुलाई 2011 की बात है, मुंबई शहर, बारिश का मौसम, रात के करीब 1:10। 24 साल की नैना शर्मा एक छोटे रेडियो स्टेशन में रिपोर्टर थी। उस रात वो एक देर की रिकॉर्डिंग करके घर लौट रही थी। बारिश इतनी तेज कि टैक्सी मिलना मुश्किल था। किसी तरह वो पास के रेलवे स्टेशन पहुंची। उसे लगा आखिरी लोकल मिल जाए तो घर पहुंच जाएगी, लेकिन स्टेशन लगभग खाली था। टिकट विंडो बंद, चाय की दुकान बंद, कुछ ट्यूबलाइट्स जल रही थी और कुछ बार बार छपक रही थी। नैना ने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड देखा, अगली ट्रेन 1:25 पर। उसने राहत की सांस ली, चलो एक ट्रेन तो है। प्लेटफॉर्म पर केवल 2-3 लोग थे। एक आदमी बेंच पे सो रहा था, एक सफाई कर्मचारी दूर पोछा लगा रहा था और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक बूढ़ा रेलवे वॉचमैन बैठा था। नैना ने बैग से अपना छोटा रिकॉर्डर निकाला और टाइम पास में बोलने लगी। रात 1:12, मुंबई की बारिश और मैं आखिरी लोकल ट्रेन का इंतजार कर रही हूँ। फिर हंसकर बोली, अगर ट्रेन कैंसिल हुई तो आज की रात तो भाई स्टेशन पर ही कटेगी। उसी समय सारी लाइट्स एक साथ बुझ गई, एकदम अंधेरा। 3 सेकंड के बाद इमरजेंसी लाइट्स जल उठी और फिर स्टेशन से आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। नैना ने ऊपर देखा, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आने वाली आखिरी लोकल ट्रेन। नैना की भौहें सिकुड़ गई, प्लेटफॉर्म 6? उसने सामने लगे साइन बोर्ड्स देखे, प्लेटफॉर्म 1, 2, 3, 4, 5। बस उसने सोचा शायद स्टेशन की दूसरी तरफ कोई नया प्लेटफॉर्म होगा। तभी अनाउंसमेंट पूरी हुई, 2:20 पर प्रस्थान करेगी, और फिर स्पीकर बंद हो गया। नैना ने पास खड़े सफाई कर्मचारी से पूछा, भैया प्लेटफॉर्म 6 किधर है? आदमी ने पोछा रोक दिया, उसने नैना की तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले अपना सामान उठाया और तेजी से वहाँ से चला गया। नैना ने पीछे से आवाज दी, सुनिए तो, मगर वो नहीं रुका। अब नैना बूढ़े वॉचमैन के पास गई, बाबा प्लेटफॉर्म नंबर 6 कहाँ है? बूढ़े ने सिर उठाया, उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्या कहा? प्लेटफॉर्म 6, अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है बाबा। बूढ़ा कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, यहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। नैना बोली, लेकिन मैंने अभी अभी अनाउंसमेंट सुनी है। क्या मतलब? मैंने साफ साफ सुनी है। बूढ़ा खड़ा हो गया, बेटी अपनी ट्रेन का इंतजार करो और अगर फिर अनाउंसमेंट हो तो उसकी तरफ ध्यान मत देना। अब नैना थोड़ी असहज हुई। बूढ़े ने आस पास देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, क्योंकि रात के बाद स्टेशन की हर आवाज रेलवे की नहीं होती। नैना कुछ पूछती उससे पहले बूढ़ा चला गया। 1:25, नैना की लोकल का समय था। 1:24 हो रहे थे, 1:25 भी हो गया, लेकिन ट्रेन नहीं आई। बोर्ड पर अचानक लिखा आया, डिलेड। बारिश और तेज हो गई और फिर नैना ने तुरंत स्पीकर की तरफ देखा, वही आवाज, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आने वाली आखिरी लोकल। इस बार अनाउंसमेंट के पीछे एक बहुत हल्की सी आवाज भी थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। नैना ध्यान से वो अनाउंसमेंट सुनने लगी, 2:20 पर प्रस्थान करेगी, और फिर अनाउंसमेंट बंद। लेकिन स्पीकर से बच्चे के रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। नैना धीरे धीरे स्पीकर के नीचे पहुंची, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई और फिर स्पीकर से किसी ने बहुत धीमे से कहा, नैना। वो पीछे हट गई, उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर स्पीकर से आवाज आई, नैना शर्मा। इस बार उसके हाथ से रिकॉर्डर लगभग छूट गया। रेलवे अनाउंसमेंट को उसका पूरा नाम कैसे पता था? और तभी पूरे स्टेशन पे उसी महिला की आवाज गूंजने लगी, यात्री नैना शर्मा आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर प्रतीक्षा कर रही है। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया और तभी प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर से एक पुराना लोहे का गेट हवा में हिलने लगा। नैना धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, गेट पर जंग लगा हुआ था।

उसने नैना के हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था ना उधर मत जाना, नैना ने पूछा। नीचे क्या है? बूढ़े ने गेट बंद करने की कोशिश की। कुछ नहीं, लेकिन नीचे से ट्रेन की आवाज आ रही है। बूढ़ा चुप रहा। नैना ने फिर पूछा, प्लेटफॉर्म नंबर 6 क्या है? इस बार बूढ़े ने नैना की आंखों में देखा और कहा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे 25 साल पहले बंद कर दिया गया था। नैना ने पूछा, क्यों? बूढ़े के होंठ कांपने लगे, क्योंकि वहां से एक रात एक पूरी ट्रेन चली थी, लेकिन अगले स्टेशन तक कभी नहीं पहुंची। नैना स्तब्ध रह गई। कितने लोग थे? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। तभी नीचे से ट्रेन की सीटी की आवाज आई, बहुत तेज। बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घड़ी देखी, 1:47। फिर नैना की तरफ देखकर बोला, आज ये जल्दी आ गई है। नैना ने पूछा, कौन? बूढ़े ने सिर्फ इतना कहा, आखिरी लोकल ट्रेन। अचानक लोहे का गेट अपने आप खुल गया। नीचे की सीढ़ियों पर एक एक करके लाइट्स जलने लगी, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी, जैसे कोई नीचे से ऊपर आ रहा हो। नैना और वॉचमैन पीछे हट गए। लाउड स्पीकर पर अब भी अनाउंसमेंट हो रहा था, यात्री नैना शर्मा कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचे। और इस बार अनाउंसमेंट के अंत में एक दूसरी आवाज आई, एक आदमी की, बहुत धीमी, नैना। नैना का चेहरा बदल गया। उसने गेट की तरफ देखा। नहीं, वही आवाज फिर आई, बेटा। नैना की आंख से आंसू आ गए। वॉचमैन ने पूछा, क्या हुआ? नैना ने कांपती आवाज में कहा, ये मेरे पापा की आवाज है, उनके मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। वॉचमैन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, नीचे मत जाना। लेकिन फिर सीढ़ियों से वही आवाज आने लगी, नैना एक बार मुझे देख तो लो। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। और तभी नीचे प्लेटफॉर्म 6 पर ट्रेन आके रुकी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इतनी बड़ी ट्रेन आने के बावजूद पटरियों पर जरा भी कंपन नहीं हुई, ना हवा चली, ना कोई आवाज, बस एक पुरानी लोकल ट्रेन अंधेरे प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। उसकी खिड़कियों के अंदर दर्जनों यात्री बैठे थे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल शांत। और उनमें से एक आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा नैना की तरफ घुमाया। नैना की सांस रुक गई। उसके पिता, वही चेहरा, वही चश्मा, वही कपड़े जिनमें नैना ने उन्हें आखिरी बार देखा था। नैना एक कदम नीचे उतरी। उसने कहा, पापा? उस आदमी ने नैना की तरफ देखा, फिर बहुत धीरे से अपने होंठ हिलाए। नैना साफ समझ गई थी कि वो क्या कह रहे थे, मत आना, यहाँ मत आना। नैना वहीं रुक गई। और उसी क्षण उसके ठीक पीछे से उसके पिता की आवाज आई, नैना मैं तो यहाँ हूँ। नैना की आंख फैल गई। उसके सामने ट्रेन में उसके पिता बैठे थे और पीछे उन्हीं की आवाज। वॉचमैन ने फुसफुसा के कहा, पीछे मत देखना। तो श्रोतागण, अगर नैना के पिता उस ट्रेन के अंदर बैठे थे, उसके पीछे उनकी आवाज किसकी थी? एक ऐसा प्लेटफॉर्म नंबर 6 जो स्टेशन के नक्शे में था ही नहीं, एक ऐसी ट्रेन जो 25 साल पहले निकली थी लेकिन अभी अगले स्टेशन तक नहीं पहुंची। और अब वही ट्रेन नैना को उसके नाम से बुला रही थी। आखिर क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, 2:20 पर क्या होने वाला था? मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक श्रोतागण। नैना का पूरा शरीर कांप रहा था। सामने ट्रेन में बैठे उसके पिता लगातार सिर हिलाकर उसे मना कर रहे थे, मत आना। और पीछे से वही परिचित आवाज, बेटा एक बार पीछे तो देखो। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। 8 साल से उसने ये आवाज नहीं सुनी थी, फिर पीछे से आवाज आई, तुम्हें मेरी याद नहीं आती। नैना ने आंख बंद कर ली। वॉचमैन ने उसके कान में कहा, जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें ट्रेन में कभी नहीं बुलाएगा। नैना ने सामने अपने पिता को देखा और ट्रेन में बैठे पिता बार बार उंगली से लिख रहे थे, भागो भागो। नैना के पीछे से आने वाली आवाज भी अब बदल गई थी। वॉचमैन चिल्लाया, ऊपर चलो। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे, तभी ट्रेन के सारे पैसेंजर्स ने एक साथ अपना सिर उनकी तरफ घुमा दिया। दर्जनों आंखें, लेकिन कोई अपनी सीट से नहीं उठा। फिर ट्रेन के दरवाजे एक साथ खुल गए और स्पीकर पर फिर आवाज आई, यात्री नैना शर्मा कृपया ट्रेन पर बैठे। नैना और वॉचमैन गेट पर पहुंचे। वॉचमैन ने गेट बंद किया, मोटा लॉक लगा दिया। नैना हाफ रही थी, क्या था? वॉचमैन चुप था। उसने कहा, नैना ने, आप जानते हैं ना, मुझे घर जाने दीजिए, मुझे घर भेज दीजिए। वॉचमैन ने कहा, अब कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। नैना ने पूछा, तो मैं अब क्या करूं? वॉचमैन ने उसकी तरफ देखा और कहा, सुबह होने तक यहीं रहो। नैना ने रिकॉर्डर देखा, वह अब भी चल रहा था। उसने उसे बंद करना चाहा, लेकिन तभी रिकॉर्डर में एक आवाज आई, नैना। नैना ने रिकॉर्डर उठाया, उसमें अभी कुछ मिनट पहले की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसकी अपनी आवाज, बारिश, अनाउंसमेंट, उसके पिता की आवाज, लेकिन उसके बाद एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड हुई थी जो नैना ने उस समय सुनी ही नहीं थी। एक औरत की फुसफुसाहट, आज इसे जाने मत देना। नैना ने रिकॉर्डिंग रोक दी। किसे? वॉचमैन नैना को स्टेशन के एक पुराने कमरे में ले गया। अंदर धूल, पुरानी फाइल्स, रेलवे के नक्शे और पीले पड़ चुके न्यूज़पेपर थे। वॉचमैन ने एक पुरानी फाइल निकाली, उस पर लिखा था, जुलाई 1976। नैना ने पूछा, उस ट्रेन के साथ क्या हुआ? उसने बताया, उस रात भी ऐसे ही बारिश हो रही थी। आधी रात के बाद एक स्पेशल लोकल यहाँ से निकली। 47 लोग थे। ट्रेन अपने स्टेशन तक नहीं पहुँची। नैना ने पूछा, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था? वॉचमैन ने बताया, वो ट्रेन मिली ही नहीं, एक भी डब्बा नहीं, एक भी पैसेंजर नहीं, कोई नहीं मिला। नैना ने फाइल पलटी, तो रेलवे ने क्या कहा? वॉचमैन बोला, बस कागजों में लिख दिया गया कि ट्रेन चली ही नहीं थी। नैना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन आपने कहा था कि चली थी। वॉचमैन की आंखें झुक गई, क्योंकि मैंने उसे जाते देखा था। नैना चौंक गई, आप वहां थे? बूढ़ा धीरे से बोला, मैं तब 17 साल का था। 1976 में मेरे पिता इसी स्टेशन पे काम करते थे। उस रात मैं उन्हें खाना देने आया था। बारिश बहुत तेज थी। रात करीब 2 बजे पहली बार प्लेटफॉर्म 6 की अनाउंसमेंट हुई। नैना ने पूछा, तब प्लेटफॉर्म 6 था? हाँ, पर फिर बंद क्यों हुआ? वॉचमैन ने कहा, उस रात ट्रेन आने से पहले प्लेटफॉर्म पे खड़े हर यात्री का नाम अनाउंसमेंट में अलग अलग पुकारा जा रहा था। नैना की सांस अटक गई, जैसे आज मेरा। वॉचमैन ने सिर हिलाया और ठीक 2:20 पर ट्रेन चली गई। फिर कभी नहीं मिली। अगले दिन प्लेटफॉर्म 6 बंद कर दिया गया। नैना ने पूछा, लेकिन आज वो वापस कैसे आ गई? वॉचमैन ने कहा, वो प्लेटफॉर्म कभी गया ही नहीं, बस उसका रास्ता बंद कर दिया। नैना फाइल के पन्ने पलट रही थी, अचानक एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ नीचे गिरी। 1976 की वही ट्रेन, खिड़कियों में पैसेंजर्स बैठे थे। नैना फोटोग्राफ को ध्यान से देखने लगी और फिर उसकी नजर एक खिड़की पर रुक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये, नैना ने एक आदमी की तरफ इशारा किया, ये मेरे पिताजी हैं। ये कैसे हो सकता है? नैना की आग भर आई। 1976 में उसके पापा सिर्फ 14 साल के थे, लेकिन फोटोग्राफ के आदमी की उम्र लगभग 40 वर्ष की थी, ठीक उतनी जितनी उनके मृत्यु के समय थी। नैना ने फोटो पलटी, पीछे हाथ से कुछ लिखा था, अगली यात्रा जुलाई 2001 और उसके नीचे 2:20। नैना ने अपनी घड़ी देखी, 2:03 हो रहे थे, यानी कि वो ट्रेन आने में अभी 17 बाकी थे। और फिर आवाजें आने लगी, अनाउंसमेंट होने लगा, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगली लोकल के यात्रियों की सूची तैयार है। नैना और वॉचमैन एक दूसरे को देखने लगे, फिर एक एक करके नाम आए, पुराने नाम, मोहनदास, शांति दास। वॉचमैन फुसफुसाया, ये वही लोग हैं जिन्होंने 1976 में इस लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया था। नाम आते रहे और फिर अचानक नैना शर्मा अनाउंस हुआ, लेकिन अनाउंसमेंट खत्म नहीं हुई, एक और नाम आया, रघुनाथ प्रसाद। वॉचमैन का चेहरा सफेद पड़ गया। नैना ने पूछा, कौन है रघुनाथ प्रसाद? बूढ़े के होंठ कांपे, उसने कहा, मैं, आज वो ट्रेन सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी लेने आई है। दोनों कमरे से बाहर आए, प्लेटफॉर्म 6 का गेट खुला हुआ था, नीचे सारी लाइट्स जल गई थी और सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन वे नीचे नहीं जा रहे थे, वे नीचे से ऊपर आ रहे थे, जैसे ट्रेन के पैसेंजर्स अब प्लेटफॉर्म छोड़कर स्टेशन के अंदर आ रहे हो। वॉचमैन ने नेहा से कहा, चलो, लेकिन सामने कोई कॉरिडोर में खड़ा था, एक आदमी, भीगे कपड़े, सिर नीचे। नैना ने धीरे से कहा, पापा। आदमी ने फिर सिर उठाया, वही चेहरा, उसके पिता, लेकिन इस बार उनकी आंखों से पानी बह रहा था। उन्होंने कहा, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी बेटा? नैना पीछे हट गई, बोली, मैं तो ट्रेन में बैठी ही नहीं। पिता ने कहा, ट्रेन में बैठना जरूरी नहीं है, एक बार वो तुम्हारा नाम पुकार दे तो यात्रा शुरू हो जाती है। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया और अचानक उसके पिता की नजर नैना के पीछे चली गई, उनके चेहरे पर डर उतर आया। उन्होंने कहा, अब बिल्कुल मत हिलना, क्योंकि तुम्हारे पीछे जो खड़ी है वही यात्रियों का नाम चुनती है। नैना की सांस रुक गई, उसे किसी औरत की पायल की आवाज सुनाई दे रही थी और वो उसके कान के पास फुसफुसा के कह रही थी, नैना शर्मा। तो श्रोतागण, अब सवाल ये है कि यात्रियों

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं